सुप्रभात। मीडियम रेप 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 30वीं तिथि, तदनुसार 21 जुलाई सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावोका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
1: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
0: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत माँ की पावन धरती को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करें। वीरों के त्याग, ऋषियों के ज्ञान और संतों की वाणी से प्रेरणा लें। सत्य, सेवा, सद्भाव और अनुशासन का दीप अपने जीवन में जलाएं।

दयामय है विश्व विधाता, सब पर तेरी छाया, तेरी कृपा बिना जग सारा सूना सूना पाया। अहंकार को दूर भगाकर प्रेम का फूल खिलाओ, तेरे चरणों की भक्ति देकर जीवन धन्य बनाओ।

नाम तुम्हारा अमृत धारा मन को शांति दे जाए, जो भी तेरी शरण में आए सच्चा सुख वह पाए। सेवा दया और सत्य की राह हर जन को अपनानी, निर्गुण प्रभु की पावन महिमा युग युग तक है ज्ञानी।

मन मंदिर में ज्योत जला दो, अंतर का तम हर लो, हर प्राणी में तेरा दर्शन ऐसी दृष्टि भर दो। तेरी भक्ति सबसे ऊंची, यही जीवन का सार, निराकार प्रभु चरण में तेरे शत शत बार नमस्कार।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: आकाशवाणी इंदौर से आइए सुनते हैं आज का चिंतन। आलेख हनी हेटविल्ड का और वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का।
1: चरित्र मनुष्य का वह अदृश्य आभूषण है जो उसके व्यक्तित्व को वास्तविक अर्थों में सुंदर और प्रभावशाली बनाता है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं बल्कि भीतर की वह गुणवत्ता है जो हमारे विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहार में झलकती है। धन, पद और प्रसिद्धि समय के साथ बदल सकते हैं, परंतु चरित्र वह स्थायी संपत्ति है जो जीवन भर हमारे साथ रहती है और हमारे अस्तित्व को पहचान देती है। चरित्र का निर्माण एक दिन में नहीं होता, यह निरंतर प्रयास, अनुशासन और आत्मचिंतन का परिणाम होता है। हर छोटा निर्णय, हर छोटी आदत और हर परिस्थिति में लिया गया हमारा व्यवहार धीरे धीरे हमारे चरित्र को आकार देता है। जब हम सत्य, ईमानदारी और न्याय का पालन करते हैं तब हमारा चरित्र मजबूत होता है। वहीं जब हम झूठ, छल और स्वार्थ का सहारा लेते हैं तो हमारा चरित्र कमजोर पड़ने लगता है। चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार है सत्य। सत्य केवल बोलने का विषय नहीं बल्कि जीने का तरीका है। एक सच्चा चरित्र वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ता। जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे तत्काल लाभ भले ही न मिले, लेकिन दीर्घकाल में वही सम्मान और विश्वास प्राप्त करता है। समाज में विश्वसनीयता का निर्माण चरित्र से ही होता है और यह विश्वास किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होता है। ईमानदारी भी चरित्र का एक अनिवार्य अंग है। ईमानदारी केवल दूसरों के प्रति नहीं बल्कि स्वयं के प्रति भी होनी चाहिए। जब हम अपने विचारों और कर्मों के प्रति सच्चे होते हैं तब हम आत्मसम्मान का अनुभव करते हैं। यह आत्मसम्मान हमें अंदर से मजबूत बनाता है और हमें गलत रास्तों पर जाने से रोकता है। ईमानदार व्यक्ति को शायद

0: और संसाधनों का सही उपयोग करता है और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। चरित्र केवल व्यक्तिगत गुण नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। एक अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति समाज में सकारात्मक प्रभाव डालता है, उसके व्यवहार से दूसरों को प्रेरणा मिलती है और वह समाज में नैतिकता और सदाचार को बढ़ावा देता है। यदि समाज के अधिकतर लोग अच्छे चरित्र के होंगे तो वह समाज स्वयं ही उन्नति और शांति की ओर अग्रसर होगा। चरित्र की परीक्षा कठिन समय में होती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तब अच्छा व्यवहार करना आसान होता है, लेकिन जब समय विपरीत हो तब भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना ही सच्चे चरित्र की पहचान है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ता वही वास्तव में चरित्रवान कहलाता है। यह दृढ़ता ही उसे महान बनाती है। चरित्र का संबंध केवल बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि हमारे आंतरिक विचारों से भी है। यदि हमारे विचार शुद्ध और सकारात्मक होंगे तो हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा। इसलिए चरित्र निर्माण के लिए मन और विचारों की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। ध्यान, आत्मचिंतन और सत्संग जैसे उपाय हमारे विचारों को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। आज के आधुनिक युग में जहां भौतिक सफलता को अधिक महत्व दिया जाता है, वहां चरित्र का महत्व कहीं कहीं कम होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बिना चरित्र के कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति केवल बाहरी उपलब्धियों पर ध्यान देता है और अपने चरित्र को नजरअंदाज करता है, वह अंततः असंतोष और अस्थिरता का अनुभव करता है। वहीं एक चरित्रवान व्यक्ति चाहे साधारण जीवन ही क्यों न जी रहा हो, वह भीतर से संतुष्ट और शांत रहता है। चरित्र हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। सहानुभूति, करुणा और सम्मान जैसे गुण एक अच्छे चरित्र की पहचान है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तब हम न केवल अपने चरित्र को मजबूत करते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि चरित्र मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह उसे जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देता है और उसे सही निर्णय लेने में सहायता करता है।
1: आप सुन रहे थे चिंतन, वाचक स्वर मुकाम सिंह चौहान का। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं खेती की बातें। विषय है एग्री वोल्टाइक खेती प्रणाली और वाचक स्वर सुनीता पंडित का। खेती की बात नख सुनने वाला सभी किसान भाई बहन नख कवा उनकी सुनीता बहन की घनी घनी राम राम। किसान बहन होनी आज बात करांगा एग्री वोल्टेक प्रणाली के बारे में, जो कृषि और सौर ऊर्जा को आधुनिक संगम कमाणियों। जहाँ पूरी दुनिया ऊर्जा का संकट में छे, जलवायु परिवर्तन से अपन सब जूझ ही रहा है, ऐसा में खेती का क्षेत्र में एक नई क्रांति कह सकते हैं। एग्री वोल्टेक सरल शब्द न मकवा तो यो हुयो एक जमीन पर एक साथ फसल भी उगाणु आन बिजली बनाने की आधुनिक कला भी छे। अब यह प्रणाली कैसे काम करे तो इनी प्रणाली न यो छे की खेत में अपना जमीन से कुछ फीट की दूरी पर ऊंचाई पर अपन सोलर पैनल लगाड़ी सकन। आन यो पूरा व्यवस्थित तरीका से होनु, बराबर की दूरी न पर आएगा। एक से अपन काई करांगा कि ऊपर की तरफ बिजली को उत्पादन होएगा, सूरज की सीधी रोशनी छे वो सोलर पैनल न पर पड़ेगा। आन अपन का स्वच्छ न हरित बिजली, देख अपन ग्रीन एनर्जी कह सकन, वो लेवांगा। आन नीचे अपन जो खाली जमीन छे अपनी ओकान पर फसल न की वावणी करी सकन। आन जो जो धूप आवेगा व छनी छनी ना आवेगा तो अपनी धूप की जरूरत भी पूरी हुई जाएगा। एग्री वोल्टेक को लाभ यो छे कि यह एक तीर से दो निशाना साधज। कसो, एक तो पर्यावरण का भी बचावज, अपन का बिजली भी दई दे मुफ्त में, आन पानी की भारी बचत करज। क्योंकि सोलर पैनल लगाने से और की छाया में अपन खेती कराएं तो माटी को जो वाष्पीकरण हो वो कम से कम हो। आने एका से फसल नमन 30-40% कम अपन का पानी की जरूरत पड़े और अपनी पानी की कमी पूरी हुई जाए। आने फसल न की सुरक्षा भी हुई जाए। जैसे तेज धूप हुई, अब गर्मी ज्यादा हुई, ओलावृष्टि हुई, पाला पड़ा तो उनका नमन या सोलर पैनल जो छे वह फसल

0: रक्षा करें अने एक तरीका से पण यो कहवांगा कि प्राकृतिक छतरी को काम करे। सोलर पैनल की कार्यक्षमता में सुधार काले न पर नीचे जो फसल उगावान ओकाम जो पानी को वाष्पोत्सर्जन हो की नमी जो छोड़ज ओका से सोलर पैनल ठंडा भी रह अने ओकाम बिजली बनाने की क्षमता छे वह 10% तक बढ़ी जाए। और हम यो कहवांगा कि इन्हीं प्रक्रिया से किसान भाइयों दोहरी कमाई भी करी सकज। एक तो बिजली की बिजली मिली अना बिजली ज्यादा होएगा तो वो अतिरिक्त आय भी हुई गई तुम्हारी, तम बिजली कंपनी ने का सरकार का वह बिजली बेची भी सकोज। कौन कौन सी फसल न उपयुक्त रहेगा तो एक बारे में बतावा कि सबसे पहले तो उन्हीं फसल न का अपन का प्राथमिकता दूज देखा में कम धूप लगा या आंशिक छाया की जरूरत हो। जैसे एक सब्जी नमन बात कर लेवा टमाटर मिर्ची गोभी ब्रोकली अन पत्तेदार सब्जी न जैसे पालक न धनिया वह बड़ी कारगर रहेगा। कंद वाली फसल में बात करा आलू गाजर मूली ये रहेगा। मसाला वाली औषधि फसल ने की बात करा ओका में अदरक हल्दी हुई अपनी एलोवेरा मशरूम असी चारा की कई फसल न छे वो भी तम अन्य फसल न में लाई सको। हाँ एक चुनौती न मई बात न को अपन का ध्यान धरनु कि शुरुआती लागत में ऊंचा ऊंचा अपन का जो बनावट रहेगा वो की सोलर पैनल रहेगा ओको शुरुआती खर्चो जरूर थोड़ो सो रहेगा। यो भी ध्यान धरनु पड़ेगा कि जो ट्रैक्टर छे या कृषि उपकरण छे वो अपन चलावा तो पैनल की ऊंचाई अपन का इना हिसाब से रखनु कि कृषि यंत्र चलावना में अपन का तकलीफ नहीं हो। तो आज अपन योज कवांगा खेती की बात नमन कि नवीनीकरण ऊर्जा को उपयोग करो आन बिजली की खेती करो। खेती की बात नमन किसान भाई बहन से आज एतरोज कहनुज राम राम।
1: आप सुन रहे थे खेती की बातें, विषय था एग्री वोल्टाइक खेती प्रणाली, वाचक स्वर सुनीता पंडित का। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरित मानस कांड का आज का प्रसंग।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ। अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

अभी आप श्री रामचरित मानस का सुन रहे थे। गायक स्वर महेंद्र कपूर का और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

सुबह 7:20 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे विशेष सुनहरे पल प्रोग्राम। 8:30 पर सुनिए विविधा। 9:00 लोक संगीत में कलाकार हैं गीता पराग और साथी। 9:15 पर सुगम संगीत में सुनिए श्रुति साडोलिकर को। 9:30 हम लेकर आएंगे शास्त्रीय संगीत। हम आपको सुनाएंगे कृष्ण मोहन भट्ट का सितार वादन राग है भैरव। 10:00 होगी जिले की चिट्ठी और 10:05 पर सुनिए आप श्रोताओं का पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम। ये सजीव फोन इन कार्यक्रम होता है और नाम है MH हॉटलाइन। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं। 11:00 फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 11:58 पर इस घंटे की खास खबरें। 12:58 पर और 2:58 पर 12:00 सुनिए फिल्म संगीत। संग्रहालय से हम लेकर आएंगे 12:30 पर 1:00 होगा महिला कार्यक्रम। आप सुनेंगे आरंभिक चर्चा में बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना पर जानकारी होगी। रूप लावण में जानिए बारिश में फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए अपनाएं जरूरी टिप्स। मेरी उड़ान क्रम में क्ले मिट्टी से ज्वेलरी बनाने में माहिर नेहा अग्रवाल से सोनल चौरे की बातचीत होगी। फूड जोन में जानिए क्रिस्पी कॉर्न वेजिटेबल फ्रिटर्स। काम की बातें में जानिए बारिश में कपड़ों को लेकर आवश्यक सावधानियां। 1:30 पर सुनिए लोक संगीत और 1:45 पर होगा सुगम संगीत का प्रोग्राम। 2:00 हम आपको सुनाएंगे फिल्म संगीत। शाम 5:00 युवाणी में युवा साथी सुनेंगे आज के क्रम में हमारे शहर रीवा के बारे में। 5:45 पर सुनिए फिल्म संगीत।

0: बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। 6:30 बजे सुगम संगीत में कलाकार हैं श्रुति साडोलीकर। 6:45 पर हम लेकर आएंगे लोक संगीत और कलाकार होंगी गीता पराग और साथी। 7:20 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम होगा। 8:00 बजे संसद समीक्षा हम दिल्ली केंद्र से रैली करेंगे और 8:15 पर सुर्खियों में हम भोपाल केंद्र से रैली करेंगे और 8:30 बजे विधानसभा समीक्षा भी भोपाल केंद्र से रैली की जाएगी। 8:35 पर सुनिए फिल्म संगीत। 9:15 पर हम लेकर आएंगे चित्र गीत और 9:30 बजे उर्दू कार्यक्रम कहकशां हम भोपाल केंद्र से रैली करेंगे। 10:00 बजे होगा श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम मन भावन। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में सुनिए कृष्ण मोहन भट्ट का सितार वादन राघे हेमंत। आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सुबह के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत समाचारों के ठीक बाद हिंदी में समाचार अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्वीय त्रिराष्ट्र आधिकारिक यात्रायाः द्वितीय चरणे उत्तर मैसेडोनिया देशं सम्प्राप्तवती। कस्यश्चित् भारतीय राष्ट्रपतेः उत्तर मैसेडोनिया देशस्य एषा प्रथमा आधिकारिक यात्रा वर्तते। राष्ट्रपतिः स्व समकक्षया गोर्डाना सिल्जानोस्का दावकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। सा उत्तर मैसेडोनिया देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टिजन मिकोस्की तथा संसदः अध्यक्षम अफ्रीम गाशी इत्येताभ्यां सह अपि मेलिष्यति। तदनन्तरं सा उत्तर मैसेडोनिया संसदं तथा भारतोत्तर मैसेडोनिया व्यापार मञ्चमपि संबोधयिष्यति। उभय देशौ कृषि औषधोद्योग विज्ञान प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा क्षेत्रेषु आर्थिक सहयोगं इतोपि सुदृढीकर्तुं रुचिं प्रदर्शितवन्तौ। राष्ट्रपति ही सेंट्स पास चर्च इत्यत्र अपि गमिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां यदा विरोध प्रदर्शनम् हिंसायां परिवर्तितः तदा 18,100+ आरक्षकाः व्रणिताः। व्रणितेषु विशेषारक्षक आयुक्तः संयुक्तारक्षकायुक्तः अपरायुक्तः उपारक्षकायुक्तः अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। एकस्मिन् वक्तव्ये दिल्ल्याः आरक्षकाः अवदन् यत् विरोध प्रदर्शन समये प्रदर्शनकारिभिः आक्रामकं हिंसात्मकञ्च आचरणं प्रदर्शितम्। पुनः पुनः पूर्वसूचनाः विधिसम्मतानि निर्देशानि च प्राप्यापि ते विद्रोहं कृतवन्तः। प्रवर्तमानानां निषेधात्मक आदेशानां च उल्लंघनं कृतवन्तः। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् प्रदर्शनकारिभिः आरक्षकाणाम् उपरि आक्रमणं कृतवन्तः। आरक्षकाणां प्रशासकीय वाहनान् च भंगं कृत्वा हिंसाम् आचरितवन्तः येन सार्वजनिक व्यवस्थायाः कृते गंभीरा विभीषिका समुत्पन्नासीत्। बलेन उक्तं यत् अवशिष्ट व्रणितानां आरक्षक कर्मचारिणां चिकित्सा विधि परीक्षणं प्रचलति। दिल्ल्यारक्षिबलेन उक्तं यत् कलह समये प्रायः 60 आन्दोलनकारिणः अपि व्रणिताः जाताः। ते उक्तवन्तः यत् प्रायः 70 प्रदर्शनकारिणः निगडिताः सन्ति। समुचित विधि प्रक्रिया आरब्धा अस्ति। सहैव भारतीय न्याय संहितायाः प्रासंगिकोपबन्धैः अथ अन्य प्रासंगिक विधिभिः च FIR प्राथमिकी इति पञ्जीकृतमस्ति। युक्रेन देशस्य ओडेसा पत्तनात् प्रस्थानावधौ MV गोल्डन लियो इत्यस्यां नौकायां कृताक्रमणस्य भारतेन निन्दाकृता।

0: विदेश मन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः। एकः गंभीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेनोक्तं यत् उपलब्ध सूचनानुसारं घटनासमये पञ्च भारतीय नागरिकः सह सप्तदश चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामा देशस्य विदेशमंत्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉक्टर जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामा देशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्वं अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः एकोनपञ्चाशल्लक्षाधिक पञ्चपञ्चाशत् कोटि उपयोक्तारः यूपीआई इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारी

0: कर्मचारियों से धरना समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी है। जब उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में विशेष जांच दल की जांच के बारे में जानकारी देगी तो सर्वोच्च न्यायालय इस महीने की 27 तारीख को याचिका पर फिर से सुनवाई करेगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा तेज बारिश का रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। भारत ने डेंगू की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। औषधि महानियंत्रक ने टेकोडा बायोफार्मास्यूटिकल्स इंडिया की क्यूडेंगा वैक्सीन के विपणन की अनुमति दी है। और पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

0: और
1: आकाशवाणी इंदौर, सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात। युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
3: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
4: क्या?
3: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
4: वो कैसे?
3: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
4: पर सुनेंगे कैसे?
3: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
5: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंची, यहां भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को करेंगी संबोधित। मध्य प्रदेश विधानसभा में समान नागरिक संहिता सहित 14 अधिनियम किए गए पेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। और राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश। अब समाचार विस्तार से। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच चुकी हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोडाना सेल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की, विधानसभा अध्यक्ष अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की विधानसभा को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। दोनों पक्ष कृषि, फार्मास्यूटिकल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, आईटीईएस जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आर्थिक संबंधों को गहरा करने में रुचि रखते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू सेंट स्पास चर्च का दौरा भी करेंगी और मैसेडोनिया के प्रख्यात क्रांतिकारी गोसे दिलचेव की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। कल से प्रारंभ हुए राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र में पहले दिन राज्य सरकार ने सदन में समान नागरिक संहिता यूसीसी सहित 14 विधेयक पेश किए। यूसीसी पर चर्चा आज कराई जाएगी। समान नागरिक संहिता के साथ मध्यप्रदेश निरसन विधेयक, मध्यप्रदेश अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं विधेयक, मध्यप्रदेश श्रम शक्ति संहिता और नागरिक सुरक्षा संहिता संशोधन विधेयक सहित कई अन्य विधेयक पेश किए गए हैं। मंत्री गौतम टिटवाल ने मध्यप्रदेश पंचायती राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2026, मध्यप्रदेश उपकर संशोधन अध्यादेश 2026 सदन के पटल पर रखे। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो गया। 25 दिन चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय

0: संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम 1956 में संशोधन करके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर वर्तमान 33 से बढ़ाकर 37 करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि ज्ञान भारतम मिशन के तहत 8 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण किया गया है। लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए डॉ. मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया है। इस कदम से अनुसंधान का कार्य सुगम बनाया गया ताकि उन्हें आम जनता के लिए सुलभ किया जा सके। गुना जिले में अगस्त माह के पहले सप्ताह में निशुल्क थैलेसीमिया जांच और बोन मैरो ट्रांसप्लांट परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। कल पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान का निरंतर क्रियान्वयन होता रहे। हाल ही में अभियान के अंतर्गत नशे से दूरी है जरूरी स्लोगन को लोकप्रियता मिली है और नागरिकों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है। उन्होंने कहा है कि राजधानी से लेकर जिलों तक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पुलिस बल आने वाले त्योहारों और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम की आवश्यक तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में नागरिकों के लिए शांति व्यवस्था और सद्भाव के वातावरण को बनाए रखने के लिए पुलिस बल में पर्याप्त वृद्धि के निरंतर प्रयास कर रही है। सरकार ने बताया है कि इस साल जून तक 55 करोड़ 49 लाख से अधिक उपयोगकर्ता यूपीआई से जुड़ चुके हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में यूपीआई के जरिए 24,162 करोड़ लेनदेन हुए जिनका कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपए रहा। उन्होंने बताया कि यूपीआई लेनदेन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार भारतीय रिजर्व बैंक और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाए हैं। इनमें धोखाधड़ी रोकने के लिए जोखिम आधारित लेनदेन सीमा मोबाइल नंबर में अनाधिकृत बदलाव और एसएमएस आधारित प्रमाणीकरण के दुरुपयोग पर रोक तथा यूपीआई एप्स के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस साल के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ. रोहित तिलक ने इसकी घोषणा की। प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस और नवीनीकरण से संबंधित आवेदनों के त्वरित निराकरण और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और समयबद्ध बनाने के लिए गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह सचिव कृष्ण बेड़ी देसावतु ने बताया कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण अधिनियम 2005 के अंतर्गत नए लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदनों का निराकरण निर्धारित 60 दिन की समय सीमा में और लाइसेंस नवीनीकरण के आवेदनों का निराकरण 30 दिन की समय सीमा में किया जाना है। इसी प्रकार जांच के बाद प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर संबंधित कार्यालय भेजने के भी निर्देश दिए हैं। ओमान के मस्कट में कल एफआईएच यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीमों ने अपने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। भारतीय टीमें पुरुष और महिला वर्ग के लीड पूल में हैं। भारतीय महिला टीम ने प्रतियोगिता के पहले दिन कजाकिस्तान के खिलाफ 8-3 से जीत हासिल की जबकि पुरुष टीम ने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से हराया। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर बारिश का दौर प्रारंभ हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के सभी संभागों के जिलों में बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में 23 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भिंड मुरैना अनूपपुर बालाघाट छतरपुर टीकमगढ़ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है जबकि भोपाल इंदौर सहित नर्मदापुरम उज्जैन ग्वालियर रीवा शहडोल जबलपुर और सागर संभागों के जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।

प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियों के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि गुरुजन सदैव पूजनीय और वंदनीय हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान विज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। मध्यप्रदेश विधानसभा की समिति कक्ष में आगामी गुरु पूर्णिमा महोत्सव के आयोजन की तैयारियों के संबंध में बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए पुरातन भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के आदर्शों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली गुरु पूर्णिमा पर प्रदेशव्यापी महर्षि सांदीपनी श्रद्धा पर्व का आयोजन भी किया जाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉ. कैलाश जाटव आज से 2 दिवसीय अशोकनगर जिले के दौरे पर रहेंगे। मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग की अध्यक्षता में श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में श्रावण माह की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। नर्मदापुरम जिले में आकाशीय बिजली से होने वाली जनहानि रोकने के उद्देश्य से दामिनी ऐप को लेकर विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा में 6 वर्ष तक के बच्चों के समग्र विकास के लिए नींव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र मीडियम 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए आप सुनते हैं प्रोग्राम सुनहरे पल।

लफ्ज तो बहुत हैं लेकिन कलम चलती है आनंद बख्शी साहब की, तो सिर्फ गीत नहीं हमारे दिल की धड़कन बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करती है आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान आप सभी श्रोताओं का। आज हम सफ़र करने वाले हैं उस दौर का जिसे गीतों के जादूगर आनंद बख्शी जी ने अपने अनमोल शब्दों से सजाया। आम इंसान की जुबान को गहरा अर्थ पिरो देना शायद सिर्फ आनंद बख्शी साहब ही जानते थे। तो आइए इस संगीतमय सफर में हमारे साथ खो जाइए और गुनगुनाइए उनके लिखे अमर गीतों को।

0: श्वेता, उनका जन्म 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में हुआ। उन्होंने अपने शानदार करियर में लगभग 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए 6000 से अधिक गाने लिखे। अमर प्रेम, शोले और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्मों में उनके लिखे गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: दर्शकों, खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: RBI कहता है, किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: आनंद बख्शी कहा करते थे कि गीत ऐसा होना चाहिए जिसे आम इंसान पहली बार सुनकर भी गुनगुनाने लगे। यही उनकी पहचान थी। उन्होंने सैकड़ों संगीतकारों और गायकों के साथ काम किया, लेकिन हर बार उनके शब्द नई ताजगी लेकर आए। मोहब्बत की जुबा आसान हो तो बात बनती है, दिलों तक जो पहुंच जाए वही सौगात बनती है।

गीत केवल शब्द और धुन का मेल नहीं होते, वे भावनाओं का आईना भी होते हैं। आनंद बख्शी ने इसी आईने में हर इंसान की कहानी दिखाई। जो दिल की बात कहते वही फसाना अच्छा है, जो हर दिल को छू जाए वही तराना अच्छा है।

क्या खूब कहा है दोस्तों कि संगीत कानों तक पहुंचता है लेकिन अच्छे बोल सीधे दिल तक उतर जाते हैं। आनंद बख्श की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि उन्होंने कठिन उर्दू या साहित्यिक भाषा का सहारा नहीं लिया, उन्होंने वही लिखा जो हर इंसान महसूस करता है। शायद इसी वजह से उनके गीत हर उम्र के लोगों की जुबान पर चढ़ गए। लफ्जों में अगर सच्चाई हो तो असर हो ही जाता है, दिल से निकला हर जज्बा अमर हो ही जाता है।

प्रेम हो, विरह हो, दोस्ती हो या जीवन का दर्शन, आनंद बख्शी ने हर भावना को बड़ी सहजता से शब्द दिए। उनकी लेखनी में बनावट नहीं थी, अपनापन था। सादगी ही सबसे बड़ा हुनर है, जो दिल को छू ले वही असर है।

जिंदगी में कुछ गीत ऐसे होते हैं जो किसी याद से जुड़ जाते हैं। जब भी वे सुनाई देते हैं, बीता हुआ समय आंखों के सामने आ जाता है। आनंद बख्श के गीतों में यही जादू है। यादों की किताबों में कुछ पन्ने सुनहरे होते हैं, जो गीतों में बस जाएं वे चेहरे सुनहरे होते हैं।

कुछ लोग किताबों में नहीं दिलों में लिखे जाते हैं, उनके अल्फाज सदियों तक गुनगुनाए जाते हैं। वक्त बदल जाए चाहे मौसम बदल जाए, सारे गीत कभी पुराने नहीं कहलाए जाते।

श्रोताओं, कला की सबसे बड़ी सफलता यही है कि वो पीढ़ियों के बीच पुल बन जाए। अनंत बख्शी के गीत आज भी घरों, महफिलों और रेडियो की शान बने हुए हैं। आवाज़ें थम जाती हैं, नगमे रुकते नहीं। दोस्तों, आज की इस सफ़र में हमने याद किया उस संगीतकार को, माफ़ कीजिए, उस गीतकार को जिसने साधारण शब्दों में असाधारण भावनाएं पिरोदी। आनंद बख्शी का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा सम्मान और प्रेम के साथ लिया जाता है। उनके गीत आने वाली पीढ़ियों को भी यूं ही गुनगुनाने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वक्त बदलता रहा, दौर बदलते रहे, लेकिन कुछ गीत हर दौर में चलते रहे। और कहते हैं ना, अल्फाज अगर मोहब्बत से लिखे जाएं तो अमर हो जाते हैं, और गीत अगर दिल से निकले हों तो हर सफ़र के हम सफ़र बन जाते हैं। अब अनुमति दीजिए इस प्रोग्राम से। माजिदा खान को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुनहरी पल, ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगी।

0: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरूआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
3: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1000 रूपये से बढ़ाकर 1500 रूपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकने, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में NHPC जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में NHPC प्रोजेक्ट पर घटी। NDRF, SDRF और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। व्हाट्सएप दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएसपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रदीप शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में दो अमरीकी सैनिकों और इराक में एक सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरूआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मुज जलडमरु मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के तीन दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंस करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में एफआईएच यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, एसआईटी के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई एसआईटी करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और सीजेपी प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं चलेगी, चूल्हा भी जलेगा। एलपीजी के अलावा एथेनॉल को रसोई ईंधन का विकल्प बनाने की तैयारी, सितंबर तक नीति का मसौदा तैयार कर सकती है सरकार।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल, भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to address NDA Parliamentary Party meeting at Parliament House this morning. President Draupadi Murmu to hold talks with her North Macedonian counterpart in Skopje today. 4 Indians killed and 1 critically injured in attack on commercial vessel near Odessa port in Ukraine. India condemns attack on the ship. West Bengal government hikes monthly pension for senior citizens, widows and specially abled persons in the state. US launches fresh strikes on Iran as President Donald Trump warns of massive retaliation. And PV Sindhu to lead India's challenge at the China Open Badminton tournament beginning today. The National Democratic Alliance, NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, will be held in the Parliament House this morning. Prime Minister Narendra Modi is scheduled to address the meeting. The meetings are traditionally held on Tuesdays during Parliament sessions with an intent to demonstrate complete alliance unity. NDA Alliance partners will pass a congratulatory motion during the meeting, honouring Mr. Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. President Draupadi Murmu will hold talks with her North Macedonian counterpart Gordana Siljanovska Davkova in Skopje today. President Murmu is also scheduled to meet Prime Minister Hristiyan Miskosti and Speaker of the Assembly Afrim Gashi and address the Parliament. She will also address the India-North Macedonia Business Forum. More from a correspondent.
7: President Murmu arrived in North Macedonia last night on a two-day state visit as part of her three-nation tour to Moldova, North Macedonia and Romania. She is the first Indian president to visit North Macedonia. The visit reflects the importance India attaches to strengthening bilateral ties with the three countries and its engagement with wider Eastern European region. Both sides have shown keen interest in deepening economic ties in priority sectors such as agriculture, pharmaceuticals, science and technology, information technology, and IT-enabled services. North Macedonia is a landlocked country in southeastern Europe. The Indian community in the country is very small, with most members working in the IT sector, teaching at universities, or serving as executives in multinational companies. With Subhashree Mahapatra, this is Yashasvi Kirial for Akashvani News, Delhi.
6: India condemned the attack on the vessel MV Golden Leo while departing the port of Odessa in Ukraine. External Affairs Ministry said 4 Indian nationals have tragically lost their lives while one is hospitalized in a critical condition. The ministry said that at the time of the incident, there were 17 crew members on board, including 5 Indian nationals. The ministry has reiterated that targeting commercial shipping and endangering innocent civilian crew members or otherwise impeding freedom of navigation and commerce is deplorable and should be avoided. The ministry said that the Indian mission in Ukraine is closely monitoring the situation and is making every effort to extend all possible assistance to those affected. The government of India extended deepest condolences to the families of the deceased Indian nationals and wished them speedy and full recovery. External Affairs Minister S. Jaishankar met his Panamanian counterpart Javier Eduardo Martinez Acha Vasquez in New Delhi. With the meeting, Dr. Jaishankar underscored the importance of deepening India's engagement with Panama as a gateway to Latin America and the Caribbean region. Both leaders held wide-ranging discussions, including advancing trade, business development, maritime, health, agriculture, education, and digital cooperation. They also spoke about engagement at the multilateral fora. Earlier, External Affairs Minister expressed confidence that the visit of the Panamanian Foreign Minister, Javier Eduardo Martinez Acha Vasquez, will further strengthen

0: पूरा पेज लिखने के बाद भी अगर अंतिम पंक्ति में कहीं कोई गलती हो गई तो उन्होंने पूरी बेदर्शी से पूरा पन्ना फाड़ दिया और फिर लिखा। ये लिखने के प्रति जो उनका समर्पण है, लिखने के प्रति जो उनकी अपने आस्था है, उसका ये परिचायक है। एक ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ के रूप में पाना हम सबके लिए जीवन की धन्यता है। आज से कुछ वर्ष पहले मैंने उन पर एक कविता लिखी थी। ये भी एक विरोधाभास है कि माँ जो है वो खुद बिना देखे अपनी कहानी बोल सकती थी और उनका बेटा जो है वो बिना देखे एक कविता भी नहीं पढ़ पा रहा है। माँ, माँ यानी सिर्फ एक शब्द नहीं होता, माँ यानी सिर्फ एक शब्द नहीं होता, एक संस्कृति होती है, एक संस्कार होता है, एक पाठशाला और एक पूरी की पूरी कायनात भी। माँ सिर्फ माँ होती है, वो न अच्छी होती है न बुरी होती है, न गोरी होती है न काली होती है, न लंबी होती है न नाटी होती है, वो तो सिर्फ माँ होती है। दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे होशियार, सबसे ममतामयी, सबसे समझदार वो माँ होती है। वो न अमीर होती है न गरीब होती है, न नामचीन होती है न अनजान होती है, माँ तो सिर्फ मेरी पहचान होती है। माँ से बढ़कर कोई शब्द, कोई उपाधि, कोई विशेषण बना ही नहीं इस दुनिया में, इसलिए माँ से मुकम्मल, माँ से मुबारक, माँ से मंगल, माँ से उज्जवल दूसरा कोई नहीं। आपकी, आपकी और हाँ आपकी माँ की तरह सबसे प्यारी, सबसे न्यारी मेरी माँ है, क्योंकि वो मेरी माँ है। पहली बार उन्हें सुनाई थी, आमतौर पर वो बहुत अपने आप को संजीदा रखती थी, भावनाओं का कहीं उद्वेग नहीं था। उनसे बात करते करते बहुत सारे लोग रो देते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे, पर आई हमेशा अपने आप को बहुत अधिक, जिसे अंग्रेजी में कंपोज्ड कहते हैं, वो रहती थी। लेकिन ये कविता सुनकर उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे थे कई वर्ष बाद। तो ये बहुत सारे अनुभवों का भंडार है, जैसा उन्होंने कहा वो घंटों बोल सकती हैं, मैं कई जीवन बोल सकता हूँ। मैं बात अपनी इस आशा के साथ करता हूँ कि महिलाओं को अगले जन्म में वही पति मिले, इसलिए बहुत सारे व्रत करने की सुविधा है।
1: ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, जो मालती जोशी के कथा संसार पर कुछ संस्मरण सुना रहे थे। और आइए अब विविधा में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सतानंद दुबे से उनकी ताजा काव्य रचनाएं।
2: आज की मेरी पहली कविता का शीर्षक है प्रेम गीत। फूल खिलेंगे राहों में तुम आओ तो, आज हमारी बाहों में तुम आओ तो। गीतों में हम ढाल सकेंगे सबको एक दिन, गीतों में हम ढाल सकेंगे सबको एक दिन, चाहों और पनाहों में तुम आओ तो। घनी दोपहरी संग संग बतियाएंगे, घनी दोपहरी संग संग बतियाएंगे, पीपल की उन छाओं में तुम आओ तो। जंगल की खुशबू को सांसों में भर लो, जंगल की खुशबू को सांसों में भर लो, फैली मस्त फजाओं में तुम आओ तो। घुटता है दम इन शहरों की कालिख में, घुटता है दम इन शहरों की कालिख में, हरे हमारे गांवों में तुम आओ तो। कजरारे नैनों में काजल महकेगा, कजरारे नैनों में काजल महकेगा, मेहंदी होगी पाओं में तुम आओ तो। लहराने दो, लहराने दो रेशम जैसे बालों को, चंचल शोक हवाओं में तुम आओ तो। इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूंगा। बनने दो फरहाद कैफ रांझा हमको, बनने दो फरहाद कैफ रांझा हमको, दर्दे दिल की आहों में तुम आओ तो। आशिक सारा दर्द बना लेंगे कविता, आशिक सारा दर्द बना लेंगे कविता, चीखों और कराहों में तुम आओ तो। आखिरी बंद

0: है, जीवन भर की प्यास गले में अटकी है, जीवन भर की प्यास गले में अटकी है, उन पनघट की ठाओं में तुम आओ तो। अगली कविता सुनाने जा रहा हूँ और इसका शीर्षक है अपनी रातें। कभी याद की घनी बदलियाँ और कभी बरसातें होंगी, साथी अपनी रातें होंगी। बीते दिवस निराले कितने, कितने उजले काले कितने, तप्त धरा पर चलता जीवन और पाँव में छाले कितने। कोई साथ नहीं जब तेरे, खुद ही खुद से बातें होंगी, साथी अपनी रातें होंगी। पौ फटते ही उठकर जागा, सारा दिन फिर दौड़ा भागा, अब नव स्वप्नों में खोया है, थक कर सारा जग सोया है। आज यामिनी के आंचल में कुछ मादक सौगातें होंगी, साथी अपनी रातें होंगी। इमली सी कुछ खट्टी यादें, कुछ अनसुलझे हुए कुहासे, संग मेरे भी झोला भरकर अनुभव के रस भरे बताशे, शून्य बिछाकर दूर क्षितिज पर फैली मेरी जमातें होंगी, साथी अपनी रातें होंगी। कल के वास्ते ये नाम है कविता का जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पलकों में आफ्ताब चुने कल के वास्ते, आओ हसीन ख्वाब बुने कल के वास्ते। बेरुत की हवाओं में हवा हो गए सभी, हमने जो देखे जो हमने सब्ज़बाग कल के वास्ते। इन पंक्तियों पर ध्यान चाहूँगा। जिनने तमाम उम्र अंधेरों में काट दी, ले आएंगे वो माहताब कल के वास्ते। जोड़ा घटाया खूब तो पाई नहीं पाई, कर लेंगे गुड़ा भाग कभी कल के वास्ते। पाया क्या जिंदगी से, क्या पाके खो दिया, कर लेना सब हिसाब अभी कल के वास्ते। और ये आखिरी बंद है। हमने उदास उम्र की काली सियाह रात काटी है जाग जाग कभी कल के वास्ते। अब मैं आपको एक छोटी सी गजल सुना रहा हूँ। मेरा भी जिक्र निकलेगा तुम्हारी बात जब होगी, उजाले याद आएंगे अंधेरी रात जब होगी। ये रेगिस्तानी वीरानी नहीं है जिंदगी भर की, खिलेंगे फूल बंजर में घनी बरसात जब होगी। मुसलसल बहते अश्कों ने ठहर कर एक दफ़ा पूछा, करोगे आंसुओं का क्या, हंसी सौगात जब होगी। फना होंगी ये रुसवाई ये जिल्लत और नाकामी, तुम्हारी भी जमाने में कोई औकात जब होगी। करेंगे याद हम फाका कशी और गुर्बतों के दिन, भले दिन आएंगे वापस ये किस्मत साथ जब होगी। कहेगा कश्ती से तूफान क्या गहरा समंदर क्या, तुम्हारे हौसले बोलेंगे मुलाकात जब होगी। मेरा भी जिक्र निकलेगा तुम्हारी बात जब होगी। अगली कविता। जिंदगी की दौड़ में अब कारवां कोई नहीं, सरजमी कोई नहीं और आसमां कोई नहीं। क्यों कहा था दिल जलाओ रोशनी की चाह में, बुझ गई सब हसरतें लेकिन धुआं कोई नहीं। भीड़ में हम मान बैठे सब हमारे हमसफर, आज तन्हाई में लगता है मेरा कोई नहीं। तुमने पाला खून से जिन आंसुओं को हर कदम, उस नमी का दर्द समझे वो हुआ कोई नहीं। हार बैठे जो शहर के एक जुआ खाने में हम, चंद जज्बे थे फकत उनका गिला कोई नहीं। हार बैठे जो शहर के एक जुआ खाने में हम, चंद जज्बे थे फकत उनका गिला कोई नहीं। उलझने हैं, जिल्लतें हैं, बेकसी पुरनूर है, अब सुकूने वक्त की ताज़ी हवा कोई नहीं। आखिरी लाइनें सुने, हम खड़े थे देर तक फिर उस गली के मोड़ पर, हम खड़े थे देर तक फिर उस गली के मोड़ पर, देखकर नाचीज को लेकिन मुड़ा कोई नहीं। कुछ और पंक्तियां सुना रहा हूं। दिलों में धैर्य पर्वत सा, समंदर आंख में होता, अगर होता तो होता, ना हुआ पर क्यों नहीं होता। दिलों में धैर्य पर्वत सा, समंदर आंख में होता, अगर होता तो होता, ना हुआ पर क्यों नहीं होता। उन्हीं की शोहरतें बातें उन्हीं का नाम होता है, उन्हीं की शोहरतें बातें उन्हीं का नाम होता है, जिन्हें बदनाम होने का भी कोई डर नहीं होता। जहां देखो वही कोहरे वही स्याही अंधेरों की, जहां देखो वही कोहरे वही स्याही अंधेरों की, फलक से झांकता सूरज यहां अक्सर नहीं होता। न होते मेघ अमराई वो छप्पर गांव की गलियां, न होते मेघ अमराई वो छप्पर गांव की गलियां, तो उनमें भीगते बच्चों का वो मंजर नहीं होता। दिलाते हैं यकीन वो हमको अपनी बावफाई का, दिलाते हैं यकीन वो हमको अपनी बावफाई का, भरोसा होता अगर ये पीठ में खंजर नहीं होता, भरोसा होता अगर ये पीठ में खंजर नहीं होता। और आखिरी पंक्तियों पर ध्यान चाहूँगा, नसीहत कुछ बुजुर्गों की, नसीहत कुछ बुजुर्गों की, शरारत छोटे बच्चों की, न हो जिस घर में वो घर कुछ भी हो पर घर नहीं होता। नसीहत कुछ बुजुर्गों की, शरारत छोटे बच्चों की, न हो जिस घर में वो घर कुछ भी हो पर घर नहीं होता। और आज की ये आखिरी गजल आपको सुनाने जा रहा हूं। जुनून में वहशत दिल से गुजर गया कोई, जुनून में वहशत दिल से गुजर गया कोई, तुम्हारे इश्क में फिर आज मर गया कोई। गर्दिश वक्त में गुम हो गया सा लगता है, अभी अभी तो यहीं था किधर गया कोई। गर्दिश वक्त में गुम हो गया सा लगता है, अभी अभी तो यहीं था किधर गया कोई। चरागे हुस्न खयामत सा ये शफाक बदन, चरागे हुस्न खयामत सा ये शफाक बदन, संभालो खुद को यूं लग जाए ना नजर कोई। दिले मरीज के सारे इलाज कर डाले, दिले मरीज के सारे इलाज कर डाले, न दवा का न दुआ का हुआ असर कोई। रात गहरी है थका चांद, हम भी लौट चलें, रात गहरी है थका चांद, हम भी लौट चलें, कहीं तो होगा जमाने में अपना घर कोई। भुला दे जो सभी यादें, मिटा दे रंज नाकामी, तेरे शहर में क्या होती है यूं सहर कोई। भुला दे जो सभी यादें, मिटा दे रंज नाकामी, तेरे शहर में क्या होती है यूं सहर कोई। आखिरी पंक्तियां हैं, खरीद लेते नए ख्वाब, खरीद लेते नए ख्वाब, कुछ उम्मीद कुछ नई सांसें, दुकान होती कहीं ऐसी भी अगर कोई।
1: अभी आपने सतानंद दुबे से उनकी ताजा रचनाएं सुनी। और अब विविधा के अगले रंग में हम आपको रंगने वाले हैं। सुनते हैं पहले एक लघु कथा रमा टेमले से, इसके बाद आप सुनाएंगी कुछ छंद और सवैये।
2: एक लघु कथा प्रस्तुत करने जा रही हूं जिसका शीर्षक है धर्म कर्म। अरे वाह चौधरी जी, नमस्कार। नमस्कार मंडलोई जी, और क्या हाल चाल है जी? हाँ, यहाँ यात्रा पर जाने की सोच रहे हैं जी। कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने। अब सेवानिवृत्त होने के बाद थोड़ा धर्म कर्म कर लें। अच्छा चौधरी जी, आप वहाँ

जा तो रहे हैं, बड़ी कठिन यात्रा है, बहुत चढ़ाई है। अरे वहाँ घोड़े पर या टट्टू पर बैठकर यात्रा करनी पड़ती है, मंडलोई जी ने चौधरी जी से कहा। अरे क्या बताएं चौधरी जी, केदारनाथ बद्रीनाथ हमारे परिचित भी गए थे, उन्होंने मुझे बताया वे घोड़े पर बैठकर यात्रा कर रहे थे, तो बीच राह में ही उस घोड़े ने जवाब दे दिया। वहाँ पशु को इतना चलना पड़ता है, पशु थक जाते हैं, उन्हें उनके मालिक नहीं चलने पर मारते भी हैं। उस बेजुबान प्राणी को चारा पानी भी देते हैं या नहीं पता नहीं, हमारे परिचित ने बताया। उस दिन उस बेजुबान पशु ने राह में ही दम तोड़ दिया। ऐसा धर्म कर्म किस काम का? पशु पर अत्याचार करके क्या पशुपतिनाथ कभी खुश होते हैं क्या चौधरी जी? मंडलोई जी की कहानी सुनकर चौधरी जी अवाक रह गए। मैं सुनाने जा रही हूँ, मैं छंदयुक्त लिखती हूँ तो दुर्मिल सवैया सुना रही हूँ, अपनी मन की चाह बता रही हूँ। प्रभु चाहत है उर कंचन हो, तज के कटुता मति पावन सी। प्रभु चाहत है उर कंचन हो, तज के कटुता मति पावन सी। शुचिता बढ़ती नित ही हमें, तरुसी लतिका समझा जनसी। शुचिता

अखिलेश मुझे वर दो जग में पन के सरिता मन भावन सी। अब आगे मैं प्रभु की ही स्तुति गा रही हूं। अरमान लिए प्रभु है ही हमें बस दर्शन की हम आस करें। अरमान लिए प्रभु है ही हमें बस दर्शन की हम आस करें। अभी प्रीति रखें उर धीरज भी अनुवाद अदम्यक श्रोत झरे। अभी प्रीति रखे उर धीरज भी सुख धाम सनातन भाव भरे।

शिष्य पंडित भी नित ध्यान धरे, इस जीवन का निष्कर्ष यही, युग को प्रभु सार्थक आप करें। इस जीवन का निष्कर्ष यही,

मार्ग भक्तिमय धार बहे, उपकार करे प्रभु साक्ष बने। सदमार्ग भक्तिमय धार बहे, नव क्रांति करे प्रभु भक्ति करे। बुद्धि से

शिव है मर्म है चेतन ध्यान करे परमार्थ करे जग में तथ्य है। शिव है मर्म चेतन ध्यान करे। आगे मैं एक दुर्मिल सवैया और सुनाने जा रही हूँ। स्वर गीत लिए मन प्रीत लिए स्वर गीत लिए मन प्रीत लिए बस भारत गौरव गान करे। दृढ़ता रखना हर हाल सभी

भी फंसते जब भंवर प्राण कभी नव क्रांति करे परमार्थ करे बुद्धि से गति के अनुसार तभी नव क्रांति करें परमार्थ करें बुद्धि से।

0: जीत लिए बस भारत गौरव गान करे। स्वर गीत लिए मन प्रीत लिए बस गौ भारत गौरव गान करे।
1: रमा टेमली रचित ये छंद और सवैये अभी आपने सुने और इसी के साथ आज के विविधा का ये अंक अब हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।

आप सुन रहे थे विविधा। इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत। आज कलाकार हैं गीता पराग और साथी।

0: लोक संगीत आपकी सेवा में आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित किया जा रहा है। कलाकार हैं गीता पराग और साथी।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: इस समय आप हैं हमारे साथ।
4: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।

0: आप सुन रहे थे गीता पराग और साथियों के स्वर में ये लोकगीत।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: और सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

लोक संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। आज कलाकार हैं श्रुति साडोलिकर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुना रहे हैं कृष्णमोहन भट्ट का सितार वादन, राग है भैरव। तबले पर संगत कर रहे हैं भारत तिवारी।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे कृष्ण मोहन भट्ट का सितार वादन राग था भैरव। तबले पर संगत कर रहे थे भारत तिवारी। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। श्रोताओं, आपको याद दिला दें 10:05 से आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन, जिसके लिए हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो फ़ोन लगाइए 10:05 से और इस कार्यक्रम को सुनिए। साथ ही आप अपने पसंद के गीत सुन सकेंगे और हमसे बातचीत कर सकेंगे इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में। तो हमें आपके फ़ोन कॉल्स का इंतज़ार रहेगा 10:05 से। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।
1: इस समय आप हैं हमारे साथ।
2: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरालाल लोंगरे, वाचन स्वर दीपा सिंह। लंबे इंतजार के बाद मॉनसून एक बार फिर खंडवा जिले में सक्रिय हो गया है। कल सोमवार शाम से हुई अच्छी बारिश से किसानों को राहत मिली है। जिले में अब तक 285.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। सभी प्रमुख जलाशयों के गेट फिलहाल बंद हैं और किसी भी परियोजना से बाढ़ नियंत्रण के लिए पानी नहीं छोड़ा जा रहा है। जिले के ओमकारेश्वर में गत दिनों अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति मुर्मू ने सिकलसेल उन्मूलन को देश की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य चुनौती बताते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें मिशन मोड में कार्य कर रही हैं। उन्होंने इसे आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भविष्य देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया। कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश द्वारा सिकलसेल स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान में हासिल की गई उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिकलसेल उन्मूलन केवल स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों को सुरक्षित बनाने का जन आंदोलन है। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने कतिनो खंडवा जिले के फिफरी सरकार में नवनिर्मित हाई स्कूल भवन और छैगांव माखन में जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास भवन का लोकार्पण किया। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य 8,682 रुपये प्रति क्विंटल पर की जा रही है। कृषि विभाग के अनुसार जिले के 12 उपार्जन केंद्रों पर 7 जुलाई से 8 अगस्त तक मूंग की खरीदी की जाएगी। किसानों से निर्धारित केंद्रों पर अपनी उपज विक्रय करने की अपील की गई है। जिले में 15 से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी अभियान चलाया जा रहा है। रैलियों, मानव श्रृंखला, शपथ प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्त समाज का संदेश दिया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के शिविरों में 437 दिव्यांगजनों को विभिन्न सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित किया गया है। वहीं पीएम विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग विषय पर कार्यशाला आयोजित कर ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। विशेष लोक अदालत में 55 प्रकरणों के समझौते से निराकरण हुआ और 83 लाख रुपए से अधिक की राशि का सेटलमेंट कराया गया। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड और सत्यापन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिरों के दान पत्रों से कुल 27,58,000 रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के लिए किया जाएगा। खंडवा के शतरंज खिलाड़ी आशुतोष सिंह का कजाकिस्तान में होने वाले शतरंज ओलंपियाड के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ है। वही ट्राइफेड ने जिले के 90 जनजातीय शिल्पकारों का पंजीयन कर उन्हें विपणन और रोजगार से जोड़ने की पहल की है। उधर परिवहन विभाग के विशेष अभियान में 19 स्कूल बसों पर कार्रवाई करते हुए 1,05,000 रुपए का शमन शुल्क वसूला गया। स्कूल संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पिछले दिनों खंडवा में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना निर्माण योजना के तहत 8,43,00,000 रुपए की लागत से 11 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्पेशल मॉनिटर डॉ. पूर्वा मित्तल 22 जुलाई को खंडवा पहुंचेंगी। वे कलेक्टर से भेंट करने के साथ स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, महिला थाना और सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण करेंगी। खंडवा के प्रसिद्ध धूनी वाले दादाजी आश्रम में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजित होगा। मुख्य कार्यक्रम 29 जुलाई को होगा। पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने प्रकाश, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं शुरू कर दी हैं। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाते हुए खंडवा में 30 जुलाई को जिला स्तरीय बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किया जाएगा। महोत्सव में किसानों को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, कृषि यंत्रीकरण, प्राकृतिक और जैविक खेती, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। खंडवा जिले में 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा का गौरव दिवस आयोजित किया जाएगा। गौरव दिवस के दौरान खंडवा रन, चित्रकला प्रतियोगिता, स्कूली विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, बैंड प्रस्तुति सहित विभिन्न तरह के आयोजन होंगे। वहीं 4 अगस्त महान पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती पर उनके स्मारक पर पुष्पांजलि और गीतांजलि का कार्यक्रम तथा शाम को किशोर नाइट का आयोजन किया जाएगा। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: अभी आप सुन रहे थे खंडवा जिले की चिट्ठी। आलेख हीरालाल लोंगरे का था और वाचक थी दीपा सिंह।
2: इस समय आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। मीडियम बीप 462.96 मीटर अर्थात 648 किलोहर्ट्ज़ पर। और ये वक्त है एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम का, जो होता है हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम। सजीव फोन इन कार्यक्रम की शुरुआत करें इससे पहले हमारे नए श्रोताओं को हमारे फोन नंबर्स बता दें। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर का सिटी कोड है 0731। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।
3: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी श्रोताओं को माजिदा खान का नमस्कार। श्रोताओं, आइए देखते हैं हमारे पहले कॉलर आज के कौन हैं। हेलो हेलो,
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं जी?
1: वीरेंद्र से बात कर रहा हूँ।
0: वीरेंद्र जी बात कर रहे हैं,
1: गांव गोमर जिला रतलाम मध्य प्रदेश।
0: जी जी, गांव गोमर से। आप थोड़ा सा रेडियो सेट अपना दूर कर लीजिए, आपकी आवाज़ बहुत इको में आ रही है।
1: जी जी
0: जी, अब बताएं।
1: हाँ, मेरे को गाना सुना था मैडम।
0: जी जी, कौन सा गीत?
1: वो निगाहें का सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
0: निगाहें फिल्म का सावन के झूलों ने, बिल्कुल हम आपको गीत सुनवाएंगे। और आप कहाँ रह रहे हैं इस समय?
1: हम अपने गाँव में रहते हैं, बमोरी गाँव में, रतलाम जिले।
0: बमोरी गाँव में। कैसा मौसम है, बारिश वाला है कि धूप वाला?
1: अभी तो बारिश रुकी हुई है, अभी धीरे धीरे शुरुआत होने वाली है ऐसा लग रहा है आजकल में।
0: अच्छा अच्छा, देखिए इंदौर में तो थोड़ी रिमझिम बारिश शुरू हो गई है आज सुबह से।
1: हाँ, ये उज्जैन में भी चल रही है दो एक दिन से बारिश, सब दूर होगा धीरे धीरे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बारिश की शुरुआत होगी। और बारिश की शुरुआत में आपने ये प्यारा सा गीत सुनने की फरमाइश हमें की है, सावन के झूलों ने।
1: जी आपको?
0: जी जी बिल्कुल, बताएं।
1: नशे से दूरी का जो 2 पॉइंट अभियान चल रहा है।
0: जी जी जी,
1: उसमें हमें समस्त नागरिकों एवं युवाओं को विशेषकर सहयोग करना चाहिए। नशा निश्चित मौत आज समाज के कल राष्ट्र की, मतलब।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और इसे हमें फॉलो भी करना चाहिए, विशेषकर युवा श्रोताओं को भी इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
1: और अपना ये प्रोग्राम है ना, वो जो वो उधर से विविध भारती से आता है ना, हेलो फरमाइश।
0: जी,
1: उसके बराबर बन गया है, मतलब 2-3 दिन पहले मैं ट्राई करता रहा, घंटा निकल गया, मेरा नंबर ही नहीं आया गया।
0: हाँ देखिए, सभी श्रोता लगातार फोन पर लगे रहते हैं और किसी का फोन लग जाता है, किसी का नहीं लग पाता है। हाँ, है ना, लगातार कोशिश करते हैं।
1: हाँ, और दूर दूर से कॉल आए थे, असम से ना, उधर यूपी से ना, मतलब।
0: जी जी जी बिल्कुल, हमारे श्रोता पूरे इंडिया में अपना ये कार्यक्रम सुन रहे होते हैं और ये कार्यक्रम बहुत सारे श्रोताओं द्वारा पसंद भी किया जाता है। तो लगातार सभी श्रोता प्रयास करते हैं कि उनसे बातचीत हमारी हो जाए। जी
1: ठीक है मैडम
0: जी। जी जी, लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत। नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं दुबे के बगीचे से महेश गायकवाड़।
0: महेश गायकवाड़ जी, दुबे के बगीचे इंदौर से। आपके पत्र हमें बहुत संख्या में प्राप्त होते रहते हैं और फरमाइशी पत्र आपके प्राप्त होते हैं मन भावन चॉइस टाइम प्रोग्राम के लिए। बताइए, आज आपकी क्या पसंद है, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं? हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी।

0: देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो।
1: जय माता दी
0: जी, बताएं कौन बात कर रहे हैं।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा
0: जी,
1: आपसे बात कर रहा हूँ जयपुर राजस्थान गांव।
0: जयपुर राजस्थान से बात कर रहे हैं
1: जी मैडम
0: जी, बहुत अच्छी बात है। गुलाबी नगरी से आप बात कर रहे हैं।
1: थैंक यू मैडम। आपका वहाँ मौसम कैसा हो रहा है मैडम?
0: हमारे यहाँ सुबह से थोड़ी थोड़ी बारिश आज हो रही है, थोड़ा सा ठंडा मौसम हुआ है
1: जी मैडम। यहाँ भी बहुत बारिश थोड़ी बहुत आ रही है, बादल ज्यादा छा रहे हैं मैडम, इंतजार है बरसात। और आपका कार्यक्रम है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है ये कार्यक्रम, फोन इन वाला।
0: धन्यवाद धन्यवाद आपको जी
1: जी। फिल्म का नाम है साधन का घर
0: जी,
1: उसमें गाने जो बोले सावन आया बहुत अच्छा है
0: जी। बिल्कुल, हम आपको सुना रहे हैं ये गीत।
1: थैंक यू मैडम।
0: आपने रेडियो सेट पर सुनिए।
1: हाँ जी मैडम।

0: श्रोताओं, प्रोग्राम में हम छोटा सा अंतराल लेकर फिर हाजिर होते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, आपका पुनः स्वागत है एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में। और अब देखते हैं हमारे कौन से श्रोता लाइन पर हैं। हेलो हेलो
4: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते,
4: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: जी जी जी, रतलाम से शेख जी बात कर रहे हैं, और बताएं।
4: बस बढ़िया है, खैरियत में है मैडम। अभी तो मतलब रिमझिम थोड़ी बारिश हो रही है आज तो सुबह से।
0: जी जी जी बिल्कुल, इंदौर में भी यही स्थिति है।
4: हाँ,
0: और बताएं आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
4: मैडम। ये अभी 31 जुलाई को रफी साहब की पुण्यतिथि है
0: जी,
4: तो बस उन्हीं की याद में ये बचपन फिल्म का गाना सुना दीजिए, खेल खिलौने वाला आया रे।
0: जी जी जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे ये गीत। हाँ, ये फेमस गीत रहा है।
4: और मेरे परिवार के लोग है, शकीला बानो है, सम्मीम बानो है, मुस्कान है, और हमारे एक दोस्त है छोटे लाल सेन।
0: जी जी जी, छोटे लाल सेन जी, आपके दोस्त सुनते हैं रेडियो?
4: सुनते हैं ना, वो तो दुकान पे रेडियो चलते रहता है उनके। तो
0: अच्छा अच्छा जी।
4: हाँ
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी मिलकर सुनिए आपकी पसंद का ये गीत फिल्म बचपन से।
4: ओके ओके, थैंक यू, है ना।
0: नमस्ते जी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, नमस्ते। कौन बात कर रहे हैं? स्वागत है आपका एमएच
1: नमस्कार
0: हॉटलाइन
1: मैडम
0: में। जी
1: जी, मैं ग्राम पोस्ट संधारा तहसील बानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से मनोहर लाल मेहर बोल रहा हूँ मैडम।
0: मनोहर लाल जी बात कर रहे हैं।
1: जी जी जी मैडम।
0: जी, और बताएं कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है मैडम, अभी पानी भी नहीं आ रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
0: अच्छा, जी क्या करते हैं?
1: मैं तो सोसाइटी में काम करता हूँ, वो प्रधानमंत्री जी गेहूँ मिलते हैं ना 5 किलो
0: जी। अच्छा, आप
1: जी।
0: रेडियो कैसे सुनते हैं, मोबाइल पर या रेडियो सेट पर?
1: नहीं, रेडियो तो मैंने 2008 का ही ला रखा था,
0: जी
1: पर वो क्या है, वो खराब हो गया, जो फिर रेडियो तो मिलता भी नहीं है, फिर वो मोबाइल ऐप से ही चालू कर रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, मोबाइल ऐप पर भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है और बहुत अच्छी
1: जी जी
0: बात है।
1: बिल्कुल स्पष्ट आता है मैडम।
0: जी।
1: हाँ
0: हाँ, हमें टेक्नोलॉजी के साथ और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अच्छी बात है, आप रेडियो सेट पर ना सुन करके मोबाइल पर सुन रहे हैं, जिसको जो उपलब्ध हो जाता है। चलिए, आप अपनी पसंद का गीत बताएंगे हमें?
1: हाँ पसंद का जी, जो फिल्म का नाम है दोस्ताना
0: जी
1: और गाने के बोल है सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छा गीत है, किशोर कुमार मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में है। फिल्म दोस्ताना से गीत हम आपको सुना रहे हैं, लीजिए सुनिए।
1: जी मैडम, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: भगवान सिंह परमार जी बात कर रहे हैं सीहोर से। जी, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम
1: दीदी,
0: में।
1: दीदी मैं आपका हमेशा डेली कार्यक्रम सुनता हूँ 10 से 11, दीदी कभी भी मिस नहीं करता।
0: जी
1: फोन लगाने का प्रयास करता हूँ दीदी, मिलता नहीं, कभी मिल जाता है दीदी।
0: हाँ देखिए, हमारे बहुत सारे श्रोता ये शिकायत करते हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि लगातार श्रोता लाइन पर होते हैं तो वो लगातार प्रयास करते हैं, किसी किसी का प्रयास सफल हो जाता है, किसी का असफल।
1: हाँ दीदी, मेरा कल मिल गया था दीदी, लेकिन रिसीव होने के बाद 6 सेकंड बाद अपने आप कट गया था, क्या मालूम क्या हुआ दीदी।
0: हाँ जी, कुछ प्रॉब्लम रही होगी, हो सकता है नेटवर्क की। और देखिए, आज आपका फोन तो लग गया।
1: जी हाँ दीदी, प्रयास करते हैं रोजाना दीदी, पर लगता नहीं है, तो फिर कभी लग जाता है, 15 दिन में एक दिन लग जाए दीदी, बहुत है।
0: तो मतलब इस बात से आप एग्री करते हैं ना कि कभी लग जाता है, कभी नहीं लग पाता, यानी आपका फोन लगा भी है।
1: जी दीदी लगा है ना, मैं तो हमेशा जुड़ता हूँ आपके कार्यक्रम में दीदी, ज्यादा अंतराल नहीं होता, बस 15 दिन का अंतराल होता है दीदी।
0: जी जी जी, बताएं कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: दीदी। फिल्म का नाम है तुमसा नहीं देखा, गाने के बोल है भीड़ में तन्हाई में, ये वाला गीत सुनना है दीदी। केसे सिंह राजपूत जी आपको लाइव सुन रहे हैं, उनको डेलीकेट रहेगा दीदी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे ये गीत, लीजिए सुनिए। तुमसा नहीं देखा फिल्म का गीत। नमस्ते
1: जी, धन्यवाद।
0: नमस्ते नमस्ते जी।

0: हेलो हेलो।
1: हेलो ड्राइवर,
0: हाँ जी, हम आकाशवाणी इंदौर से बात कर रहे हैं। MH हॉटलाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं हरगोविंद सागर से बोल रहा हूँ मैडम जी।
0: जी जी जी, हरगोविंद जी सागर से बात कर रहे हैं।
1: जी
0: जी नमस्ते, और बताएं।
1: पानी गिर गया
0: पानी गिर गया
1: जी।
0: हाँ जी, अच्छी बात है, थोड़ी ठंडक हो गई ना
1: जी, गाना भी गाते मैडम जी।
0: बहुत अच्छी बात है। और आज कौन सा गाना सुनना चाह रहे हैं?
1: वो धर्मवीर फिल्म का गाना है, हम बंजारों की बात मुझसे पूछोगी।
0: जी जी जी बिल्कुल, हम आपको यही गीत सुनवाएंगे। और
1: जी
0: गाने क्या, फिल्मी गाने गाते हैं आपकी, लोकगीत?
1: फिल्मी गाना भी गाते हैं, लोकगीत भी गाते हैं।
0: अच्छा,
1: ये एक गाना कौन कौन आते बता रहे मैडम जी?
0: बिल्कुल बताइए।
1: हाय हाय ये मजबूरी, मौसम ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए, तेरी हाय हाय ये मजबूरी, मौसम ये दूरी।
0: चलिए लीजिए सुनिए आपकी पसंद का गीत धर्मवीर फिल्म से। धन्यवाद।

0: श्रोताओं, एक छोटे से अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का पुनः स्वागत करती हूं आपकी रेडियो दोस्त माजिदा खान। आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन हैं। हेलो हेलो
3: हेलो जी, गुड मॉर्निंग माजिदा जी को।
0: गुड मॉर्निंग, बताएं कौन बात कर रहे हैं, अपना शुभ नाम बताएं।
3: जी मैं अरविंद अग्रवाल।
0: अरविंद अग्रवाल जी, कौन जी। सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
3: जी फिल्म का नाम रहेगा कसम
0: जी,
3: इसी का टाइटल सॉन्ग है कसम क्या होती है।
0: जी जी जी बिल्कुल, हम आपको सुनवाएंगे ये गीत। अभी आप कहाँ से बात कर रहे हैं, अपनी जगह का नाम नहीं बताया।
3: जी आपके पड़ोस में श्रीनगर से, जिला महोबा।
0: जी बिल्कुल, श्रीनगर महोबा से। वहाँ क्या ठंडक है या धूप वाली स्थिति?
3: ठंडक तो है थोड़ी, आस पास पानी गिर गया लेकिन हमारे यहाँ नहीं गिरा अभी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी। और चलिए आप अपने मनोरंजन कीजिए अपनी दुकानदारी के साथ, लीजिए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म कसम का गीत।
3: हाउ आर यू, आप कैसी हैं मैम?
0: जी जी बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक हैं। और अभी आप जल्दी से अपना गीत सुन लीजिए क्योंकि हमारे पास समय कम है। नमस्ते जी।

0: आइए देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी नमस्ते। जी जी बिल्कुल, एमएस हॉटलाइन में ही आपने फोन लगाया है और स्वागत है आपका। जी
1: मोहतरमा माजिदा खान साहिबा, आदाब नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बहुत बहुत नमस्ते, और आपको भी बहुत आदाब और नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आपके?
1: अच्छा बढ़िया हूँ मैम, आप सुनाइए आपके क्या हाल
0: है? हम भी बहुत अच्छे हैं। और
1: धर्मपुरी जिला दार मध्य प्रदेश मोहम्मद तस्लीम से बोल रहा हूँ माजिद।
0: जी जी बिल्कुल तस्लीम शेख जी, बिल्कुल आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, और आज आपने फोन लगाया है तो आपकी फरमाइश बताएं।
1: लव इन टोक्यो फिल्म में गीत है लता मंगेशकर जी की आवाज में, कोई मत वाला आए मेरे द्वारे।
0: बिल्कुल हम आपको सुनवाएंगे ये गीत, और बताएं कैसा चल रहा है आपका कामकाज, आप कैसे हैं? वैसे आप मुझे जहाँ तक याद है स्कूल टीचर है ना शायद?
1: नहीं फहीम भाई हैं, बड़े भाई हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए आप क्या काम करते हैं?
1: मेरी फ्लोर मिल आटा चक्की बाईपास चौराहे पे।
0: ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। और अभी आप काम में लगे, दुकान पहुंच गए अपनी कि नहीं?
1: हाँ मैं दुकान तो हूँ, बड़ा भाई को बिठा दिया।
0: अच्छा अच्छा,
1: चक्की पे और मैं बात करने के लिए इधर आ गया शांत जगह पे।
0: अच्छा अच्छा हाँ, तो दुकान में आप रह करके भी अपने मनोरंजन करते रहते हैं है ना?
1: जी जी जी, सुना करते रेडियो दिन भर।
0: जी जी जी,
1: और मेरी फ्लोर मिल एफएम के नाम से फेमस हो गई है माजी।
0: जी जी अच्छा,
1: एफएम वाली चक्की बजाना था कहते।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके माध्यम से हमारे बहुत सारे श्रोता जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी हम आपको सुनवाते हैं लव इन टोक्यो फिल्म का गीत जो आपने पसंद किया है। जी धन्यवाद फोन करने के लिए।

0: हेलो
1: जी, नमस्ते
0: नमस्ते।
1: मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: नागदा जिला उज्जैन से बात कर रहे हैं
1: जी।
0: जी प्रेम सिंह जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छी बात है जी।
1: हाँ, आकाशवाणी केंद्र पे जुड़ना एक बड़ी ही सौभाग्य की बात होती है।
0: जी जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हमारी भी सौभाग्य की बात है कि हम आप जैसे श्रोताओं से जुड़ पा रहे हैं
1: जी। इसमें बताऊं आपको कि जब आकाशवाणी में कॉल लग जाता है, कभी कभी कट भी जाता है
0: जी,
1: और टाइम भी निकाल के कॉल लगाना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से कॉल लगता है
0: जी।
1: इसके लिए आकाशवाणी सुनने के लिए धैर्य होना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप सभी श्रोता इस बात को अगर स्वीकार कर लें तो बहुत अच्छा हो जाए जी। बताएं
1: जी, धैर्य और समय रहेगा उस तक कॉल आकाशवाणी पर लगेगा।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल
1: जी।
0: क्योंकि बहुत सारे श्रोता लगातार फोन पर होते हैं, तो हमें तो धैर्य बनाए रखना होगा कि हमारी बारी आएगी।
1: हाँ बिल्कुल आएगी, और
0: जी
1: जरूर आएगी,
0: जी
1: क्योंकि आपको बताऊँ 1 घंटे का प्रोग्राम होता है
0: जी।

0: तो कम से कम 12 से 15 कॉल लगेंगे, तो उनका तो कॉल जरूर लगेगा ना।
1: जी जी बिल्कुल, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं वो सफल तो होंगे ही।
0: हाँ, अब जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि दो बार ट्राई किया और हमारा कॉल हमने 2 महीने से लगाया नहीं लगा, तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
0: क्योंकि 1 घंटे का टाइम दीजिएगा आप तो बिल्कुल आपका कॉल लगेगा।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हमें भी नहीं मालूम होता कौन से श्रोता लाइन पर हैं। जी
0: मैं बातें करते हुए वेलकम फिल्म का गाना सुनवा दीजिएगा।
1: जी
0: किया जा,
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं वेलकम फिल्म का गीत।
0: जी थैंक यू सो मच,
1: नमस्ते जी।

0: हेलो हेलो
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जी, बताएं आपका शुभ नाम बताएं। नमस्ते
1: मैम, से बालोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ मैम। नमस्कार
0: जी, विदिशा से बात कर रहे हैं। नमस्ते नमस्ते जी
1: जी मैम,
0: बताएं आज कौन सी पसंद है आपकी।
1: मैम देखिए, हमारे विदिशा में और लगभग पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं तो बारिश नहीं हो रही है
0: जी,
1: तो किसान लोग काफी हैरान और परेशान हैं। तो उनकी दुविधा को देखते हुए आज मेरी फरमाइश रहेगी
0: जी।
1: मूवी का नाम रहेगा लगान और गाने के बोल रहेंगे ओ पाला नहारे।
0: जी बहुत ही खूबसूरत गीत है, लता मंगेशकर की आवाज में है। और बताएं आपके बारे में।
1: बस मैम, मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ, समाज सेवा के कार्यों में लगा रहता हूँ मैम। जैसे कि हर 3 महीने में रक्तदान करना हो गया
0: जी,
1: और वर्षा ऋतु में पेड़ पौधे, पर अभी बारिश हो नहीं रही है
0: जी।
1: और जैसे कि गो सेवा हो गई, चारा रखना, पानी रखना, पक्षियों को दाना देना और गरीब लोगों को समय समय पे भोजन कराना मैम।
0: बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं आप, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जिस तरह की लोगों को ज़रूरतें हैं और वो आप पूरी कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतना कुछ कर रहे हैं,
1: जी
0: है
1: मैम,
0: ना। पक्षियों को, इंसानों का, सभी का ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
1: जी मैम,
0: जी, और आप ये प्रे भी कर रहे हैं, हम आपकी प्रे के माध्यम से गीत सुनवा रहे हैं ओ पालनहारे। लीजिए, सुनिए
1: जी,
0: अपने रेडियो सेट पर।
1: थैंक यू मैम।
0: धन्यवाद जी।

0: इस गीत के साथ ही एमएच हॉटलाइन प्रोग्राम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। माजिदा खान को नमस्कार।
1: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
2: श्रोताओं नमस्कार, हमारे आज के फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आप सभी का हार्दिक स्वागत। स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं आज हम बात करेंगे कि बीते समय में जो बातें हो जाती हैं वो लौटती नहीं, तो हम ऐसा क्या करें कि अपने जीवन को अंडू कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए किसी खास दिन, नया साल, जन्मदिन या किसी खास मौके की राह ना तकें और अपने जीवन में जो वर्तमान में अच्छी बातें हो रही हैं उनका सुख प्राप्त कर सकें, तो जल्दी से डायल कीजिए 2160902 पर और कीजिए हमसे ढेर सारी बातें और सुनिए हमारी पसंद।

0: के गीत। हेलो
1: हेलो, फोन करे गीत सुने।
0: जी। ही कौन साहब बोल रहे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद मैडम। मैं शिलेश कुमार साहू, रानी गांव नगरी, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से।
0: हाँ जी, धमतरी से आप दिलीप जी बोल रहे हैं?
1: नहीं, शिलेश कुमार साहू।
0: अच्छा जी, और क्या हाल है आपके?
1: हाँ, हाल चाल बढ़िया है
0: मौसम कैसा
1: और
0: है?
1: मौसम बहुत अच्छा है। और अभी कल बारिश हुआ है तो इससे हम किसान लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद हुआ। खेतों में पानी हो गया,
0: जी जी जी
1: अब धान के रोपाई कार्य प्रगति में है।
0: और परिवार में कौन कौन है?
1: सब है, संयुक्त परिवार है।
0: हाँ,
1: जी
0: तो छिलीप जी, आज हम जो बात करेंगे ना, वो ये है कि जिंदगी हमें हर समय किसी ना किसी मोड़ पर उलझाती है। ये हम सभी ने देखा है, हम अपने कई बार रास्ते से भटक जाते हैं, और ऐसे में हम सोचते हैं कि बीते समय में काश कोई ऐसा होता जो हमें समझा पाता, हम अपने जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर पाते, है ना? जैसा मोबाइल और कंप्यूटर में होता है ना, तो ऐसा कि कभी, है ना, हमें पुरानी चीजें निकालनी होती है तो हम निकाल लेते हैं, तो क्या ऐसा अपने जीवन में संभव हो पाता है?
1: अब कई बार तो जैसे हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, करके करते हैं, और उसमें कुछ उलझने आ जाता है,
0: हाँ
1: और उस उलझन की वजह से अपने कार्य में बाद में पता चलता है, रुकावट होता है। वो
0: हाँ
1: जैसे हमको कोई समझाते हैं कि ये काम इधर से नहीं करना, इधर, तो हम लोग क्या है, वो अच्छा ही रास्ता को ना अपना के गलत मार्ग से चलते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: और बाद में पछतावा होता है। तो
0: हाँ
1: फिर बाद में वही दिमाग में आ जाता है कि काश हम लोग ये करे होते, तो
0: हाँ
1: हम लोग इस प्रकार के नहीं होते। तो इस प्रकार के अपने जिंदगी से हम लोग कुछ नया सीखने को मिल जाता है।
0: हाँ लेकिन क्या बीते वक्त की बातें हमें याद करना चाहिए, या हमें वर्तमान में जो खुशियां मिल रही हैं उनमें खुशियां ढूंढनी चाहिए?
1: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और जो लोग बुजुर्ग लोग का मार्गदर्शन
0: हाँ जी
1: है ना, उनका जो अनुभव है जीवन का,
0: जी जी
1: और हमको भले ही वो गलत लगता है उस टाइम में कि
0: हाँ
1: ये क्या बोल रहे हैं, इसे कैसे, ऐसा
0: हाँ
1: कैसे
0: हाँ
1: होगा, लेकिन जब हम जिंदगी के राह में आगे बढ़ते हैं और जब उलझने होती है, तो
0: जी जी
1: उस टाइम को हम फिर याद करते हैं, वाकई में वो जो बुजुर्ग है
0: बिल्कुल
1: जो अपना
0: बिल्कुल,
1: अनुभव
0: ये
1: बताए।
0: बात तो बिल्कुल सही है कि वो बीते हुए पल में जो बुजुर्गों ने हमें नसीहतें दी थी वो याद करके हम अपने वर्तमान को सुधारे, तो इससे बेहतर तो
1: हाँ
0: कुछ हो ही नहीं सकता,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: है ना?
1: और जिस प्रकार के हम लोग भी क्या है, अब जैसे मैं अब 45 40 45 साल का हो गया, और अपना भी कुछ अनुभव है। अब उस अनुभव को हम लोग बच्चे को बताते हैं कि इस प्रकार की ये राह हमें चलना है, क्योंकि हमको भी अनुभव हो गया है कुछ कुछ। हाँ, इस प्रकार के अपन सकारात्मक राह में ही चलना चाहिए।
0: बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात करी आपने, धन्यवाद। बहुत लंबी बात हो गई आपसे, और कल के प्रोग्राम में आप अपनी बातचीत सुन सकेंगे, ठीक है
1: जी बिल्कुल,
0: जी?
1: ठीक है,
0: नमस्ते।
1: नमस्ते।

0: हेलो हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्ते। आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी।
1: ये बहुत दिनों बाद फोन लगाया है। आवाज मिल रही है? कभी
0: आवाज़ मिल रही है लेकिन बहुत कम आ रही है।
1: कभी आपकी कम आती है तो कभी कभी हमारी कम पहुंचती है।
0: हाँ, ये क्या बात है।
1: ये तकनीकी कुछ कारण होगा।
0: हाँ हाँ बोलिए।
1: कार्यक्रम मैं आज बहुत दिनों बाद हमने फोन लगाया है। कम से कम 2 या 3 महीने के लगभग अंतराल हो गया है।
0: अच्छा, आपका शुभ नाम जी?
1: मैं दशरथ सेन।
0: दशरथ सेन। आपसे पहले भी बात हो चुकी है।
1: जी, हुई थी ना बात।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: यही सीतामऊ रोड, नाटाराम, जिला मंदसौर। जी,
0: अच्छा जी, और क्या हाल है आपके?
1: बढ़िया है। अभी हम सब किसान भाई पानी को लेकर बहुत परेशान हैं।
0: हाँ
1: बड़ी गैस लगने
0: हाँ
1: से किसान की जो फसल, हमारी जो फसल है
0: हाँ
1: वो पानी के लिए बेताब है। और सभी किसान भाई इंद्र राजा से यही कामना करते हैं कि जल्दी से पानी बरसाओ।
0: बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि पानी ने तो वाकई अभी ऐसा बना के रखा है माहौल। उमस, गर्मी, बेचैनी, बीमारी, सब है ना।
1: जी बिल्कुल। और
0: पानी
1: पानी
0: की
1: की भी
0: बहुत
1: कहाँ
0: ज़रूरत
1: बरसी
0: है।
1: है।
0: आधे से ज़्यादा जुलाई ख़त्म होने को आ गया है और पानी अभी गायब है।
1: पानी के सिवा हर कोई अधूरा है। पानी के बिना ही हमारा जीवन चल रहा है। पानी नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? पानी होगा तो किसान भाई खेत में अन्न उगाएगा। अगर पानी नहीं होगा तो अन्न नहीं उगाएगा। अगर
0: हाँ
1: नहीं होगा तो फिर हम सबका पेट कैसे भरा जाएगा?
0: बिल्कुल सही। चलिए, तो आज हम जो बात कर रहे हैं, पहले उस विषय पर आए कि जिंदगी में जो भी पहले बीत चुका होता है ना, तो कभी कभी हम सोचते हैं ना कि वो पहले जो हमारा समय था वो कितना अच्छा था, काश वैसा समय फिर आ जाता। तो ऐसी कोई टाइम मशीन आप भी सोचते हैं कि होना चाहिए कि बीते हुए समय में एक बार पुनः चले जाओ?
1: जी बिल्कुल सही बात है। अभी थोड़ी देर पहले ही बीते दिनों की बातें कर रहे थे लोग
0: हाँ
1: कि हमारे जमाने में क्या था। कई भोजन कार्यक्रम का होता था तो सभी हिल मिल के एकजुटता दिखाते हुए भोजन को करवाते थे, साथ में शामिल होते थे। ऐसा
0: हाँ
1: नहीं कि इनका कार्यक्रम बिगड़ जाए
0: हाँ
1: या फिर कोई हंसी हो जाए, ऐसा कुछ होता था। फिर पुरानी बात, बचपन की बातें हैं तो बातें बहुत ही वो यादें हैं,
0: हाँ
1: तो वो यादें ही रह चुकी हैं। अब तो क्या है कि पहले वाली बात अब जमाने में है नहीं।
0: हाँ
1: जो पहले एक भाईचारा था,
0: सही बात है।
1: एक भाईचारा था, एक स्नेह था, प्रेम
0: हाँ
1: था, वो अब शायद कहीं गुम हो गया है।
0: बिल्कुल सही।
1: सभी अपने अपने ध्यान में हैं। पहले जितना लोगों के पास काम था, फ्री
0: हाँ
1: थे, दूसरे के लिए
0: हाँ
1: समय था
0: बिल्कुल
1: देने के लिए कि आपके लिए हम पूरा दिन आपके साथ में रहेंगे निस्वार्थ,
0: हाँ
1: है ना। और आज के जमाने में स्वार्थ के बिना कोई बात ही नहीं कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। तो
1: सच्चाई और
0: चलिए
1: भागो
0: दशरथ
1: भाग हो
0: जी।
1: गया है।
0: हाँ
1: इतने इतने काम, इतने साधन होने के बाद भी लोगों के पास टाइम नहीं है बात करने का।
0: बिल्कुल
1: इतनी भागम
0: इस
1: भाग चल रही है और सब मिलावट खोरी हो गए हैं। मिलावट का खाना खा रहे हैं। पहले हमारे घर में घट्टी थी, घट्टी से
0: हाँ
1: गेहूं के दानों को पीसा जाता था, उससे लापसी बनाई जाती थी, वो कितना स्वादिष्ट था भोजन। आज के जमाने में चक्की चल रही है, सब आटा फेंक जाता है, सबका एक
0: बिल्कुल
1: बार
0: सही
1: खाना
0: कह
1: खाना
0: रहा है।
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आपसे दशरथ जी बात
1: जी
0: करके बहुत अच्छा लगा। दूसरे कॉलर्स भी लाइन में हैं, इसलिए आपसे हम इतनी ही बात कर पाएंगे आज। ठीक
1: बिल्कुल।
0: है,
1: और पुराने दौर से आज दिन तक आकाशवाणी बदली नहीं है, उसकी आवाज आज भी दुनिया में जा रही है।
0: बिल्कुल, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: जीवन से भरी तेरी

0: हेलो हेलो। हाँ
1: जी बोले जी।
0: जी नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
1: जी मैं हूँ
0: कौन बोल रहे हैं आप?
1: नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ मैम। जी
0: जी नीरज जी, कहाँ से?
1: अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश। जी
0: जी
1: ठीक
0: क्या हाल है आपके?
1: है मैम, बढ़िया है।
0: नीरज जी, आज हम बात कर रहे हैं कि बीते समय में जो वक्त बीत चुका होता है उसे हम याद करते हैं और सोचते हैं कि काश कोई ऐसी टाइम मशीन होती जिससे हम अपने बीते समय में दोबारा जा सकते। तो
1: जी
0: आपका क्या मत है इस मामले में?
1: बिल्कुल, मैं पर सहमत हूँ कि बीते कुछ ऐसे पल हैं जो
0: हाँ
1: लगता है एक बार दोबारा आ जाए तो एक बार फिर वो याद ताजा हो जाए। जी
0: बिल्कुल, तो क्या करते हैं उसके लिए, हमें क्या करना चाहिए?
1: मैम, क्या है, बीता हुआ चीज तो दोबारा आता नहीं है, तो
0: हाँ
1: वो ही है कि जो तो याद मतलब ताजा है करने के लिए थोड़ा सा याद कर लेते हैं कि हाँ वो वक्त वही है मैम।
0: बिल्कुल, तो हम तो इसलिए यही कर सकते हैं कि है ना, अपने दिल को खोल कर जिए, है ना, सोचे कम करे ज्यादा, तो शायद हम अपने बीते वक्त को उतना याद करके घबराएंगे नहीं, बल्कि उसमें जो कुछ अच्छी चीजें हो चुकी होंगी उनसे अनुभव लेकर अपने वर्तमान को अच्छा बनाएंगे,
1: बिल्कुल
0: है ना? तो
1: जी,
0: चलिए नीरज जी, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो। नमस्ते
1: हाँ जी, नमस्ते जी।
0: जी।
1: योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी योगेश जी, क्या हाल है?
1: बढ़िया है यार।
0: मौसम कैसा है छत्तीसगढ़ का?
1: अभी तो 2-3 दिनों में बारिश हुआ है। हाँ
0: हुआ है बारिश?
1: जी, ठीक ठाक हुआ है। हाँ,
0: अच्छा। और क्या काम करते हैं योगेश जी?
1: हमारा मूल काम खेती बाड़ी का है।
0: अच्छा। योगेश जी, आज हमने जो विषय रखा है ना, हमारा कार्यक्रम है आज, आपकी बात आपकी गीत हमारे,
1: जी
0: तो हमने विषय रखा है कि बीते समय में जाने के लिए हम कई बार सोचते हैं कोई टाइम मशीन होनी चाहिए,
1: जी
0: वो वक्त हमारा बहुत अच्छा था। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं?
1: अब देखिए, जब पुराने चीजों को या बचपने को याद करते हैं तो
0: हाँ
1: काफी वो तो सुकून देता ही है, क्योंकि
0: हाँ
1: बचपन कहा भी गया है ना, बचपन हर गम से बेगाना होता है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो बचपन वही है जहाँ पे ना तो ज्यादा किसी तरह का दबाव होता है, ना
0: हाँ
1: किसी तरह का विशेष कोई जिम्मेदारी होता है, केवल अपने धुन में मगन रहना।
0: बिल्कुल सही बात है। और हम बस यही कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि बीते समय में जाने के लिए तो कोई भी टाइम मशीन ना तो है ना होगी, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि जो हम अपनी पुरानी यादें कई बार सहेज के रखते हैं ना, कि अरे ये तो हमारा उस समय की चीज है, इसे हमें किसी को नहीं देना है, तो ये वैसा है तो ये ऐसा है, उसके हम अगर 3 ढेरियां बनाएं, जिसका हम ये कर सकते हैं कि है ना, कौन सी हमें रिसाइकिल करनी है, कौन सी हमें दान करनी है और कौन सी हमें उपयोग करनी है, तो शायद हम अपने बीते वक्त को बहुत अच्छा कर सकते हैं वर्तमान में, है ना
1: जी।
0: जी। तो चलिए
1: और
0: ऐसा ही कुछ
1: हमारे
0: हम
1: यहाँ
0: करें, ये सोचते हैं हम, इसलिए हमने इस कार्यक्रम में इस विषय को रखा
1: जी,
0: जी।
1: हमारे यहाँ एक जो बहुत पुरानी है, एक दीपक है चिड़िया के रूप में, वो
0: हाँ
1: लगभग 100 साल पुराना है।
0: हाँ अच्छा।
1: जी
0: तो उसका तो आप उपयोग करते होंगे?
1: हाँ जी, जैसे लाइन वाइन गोल हो जाता है ना तो उसका
0: हाँ
1: उपयोग अभी भी होता
0: बस,
1: है।
0: तो कितना अच्छा, कितनी खुशी मिलती होगी आपको कि ये जो चीजें हम बचपन में इस्तेमाल करते थे वो आज भी हमने सहेज के रखी है और उसका उपयोग कर रहे हैं,
1: जी
0: है ना। चलिए
1: हाँ जी
0: चलिए नीरज जी, आपसे, योगेश जी क्षमा कीजिए,
1: योगेश
0: आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आवाज आ रही है?
1: हाँ, आ रही हूँ।
0: कौन बोल रही हैं आप?
1: जानकी गुप्ता बोला है, ग्राम भवन धनगा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश।
0: जानकी गुप्ता जी, टीकमगढ़ से।
1: हाँ, जिला टीकमगढ़ से।
0: अच्छा, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। मैं फोन लग जाता तो और अच्छी हो
0: सच
1: जाती।
0: में? फोन लगने के बाद अगर आप सच में बहुत अच्छी हो जाती है तो फिर तो
1: नहीं,
0: पक्का हर हफ्ते लगाया करिए।
1: आटा लगा रहे थे। हाँ,
0: हाँ, चलिए बढ़िया है। तो जानकी जी, बताइए कि है ना, जो आपका पुराना सामान है, बीते समय में पुरानी यादें हैं, उनको आप वर्तमान में किस प्रकार उपयोग में लाती हैं?
1: पुराना घर का पुराना
0: हाँ,
1: सामान है कि सुने का है।
0: आवाज आपकी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, कहीं आप है ना अंदर हो? हेलो,
1: आ रही है आवाज? अच्छा,
0: आ तो रही है लेकिन बहुत कट कट के आ रही है।
1: आप भी?
0: हाँ, ठीक आ रही है।
1: अच्छा, अब बताइए मैम, कहा क्या
0: मैंने
1: है?
0: कहा बीते समय में जाने के लिए आपको भी लगता है क्या कि कभी काश पुराना वक्त मिल जाए दोबारा, हम उसे फिर से जी सकें?
1: लगता तो हेल्प मिलता थोड़ी है, पुराना वक्त दिन निकल गया।
0: बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कभी कि जो आज हम जी रहे हैं, भविष्य में इस वक्त को भी इसी तरीके से याद करेंगे?
1: हाँ, कर लेती यार, जो अपना समय बीत गया उसको याद कर लेती यार। एक काया सा था समय।
0: हाँ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जो वर्तमान में हम जी रहे हैं उसे बहुत अच्छे से जीना चाहिए?
1: हाँ, जिया थे अच्छे से, सोचते हैं कि हाँ चलो जो निकल
0: बिल्कुल, जो
1: गया।
0: पहले नहीं कर पाए वो करें, खूब खुशियां बांटे और खूब खुद खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, ऐसा हो सकता है ना? क्योंकि
1: हाँ, हो
0: बीते समय
1: सकता
0: में जाने के लिए तो कोई मशीन नहीं है।
1: है। जो निकल गया समझ ना, कोई बात नहीं, तो निकल ही गया। जो अपना
0: वही,
1: समय चला उसको भी अच्छे से जी गया, अच्छे से
0: बिल्कुल
1: चला।
0: बिल्कुल। हाँ, चलिए।

0: हेलो।
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान सिंह जी, आप तो हमारे नियमित श्रोता है,
1: और सबसे पुराना श्रोता भी हूँ मैं।
0: पुराने श्रोता है, और आपके बहुत सारे लेटर्स आज भी आकाशवाणी में पढ़े जाते हैं।
1: जी मैडम,
0: और
1: और
0: सुनाइए, क्या हाल है आपके?
1: ठीक है मैडम, मैं ड्यूटी पीरियड में हूँ और वहीं जंगली नर्सरी के बीच में आया हूँ मैडम। यहाँ नेटवर्क बढ़िया मिलता है, मौसम एकदम बादल किया हुआ है, लाइटिंग बादल है, उमस टाइप की गर्मी है, हवा भी बंद है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चलता है तो हवा ठंडा लगता है। और यहाँ मतलब कि यही पानी गिरने के कगार में तो अभी नहीं है, लेकिन कल पानी खूब गिरा था मैडम। कल हमारे घर पर भी गिरा है और परसों भी ड्यूटी ड्यूटी में खूब गिरा था, शनिवार को ड्यूटी पानी।
0: तो
1: तो
0: इंद्रभान सिंह जी, आज हमने जो विषय रखा है वो ये रखा है कि बीते समय में जाने के लिए कोई टाइम मशीन होनी चाहिए, ऐसा आप भी सोचते हैं क्या?
1: बीते में इसमें अब मैडम क्या वैज्ञानिक, क्योंकि युग क्या है और इसमें वैज्ञानिक लोग जो न बना दे।

0: मैडम, क्योंकि वो उनके ऊपर है मैडम, और वही लोग तो बनाते हैं मैडम।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं मेरा मतलब है उसको आप अलग उसमें ले रहे हैं कि क्या आप भी सोचते हैं कि बीता वक्त जो बीत चुका है वो ज्यादा बेहतर था?
0: बीता वो चीज वो पहले अच्छा था मैडम, अभी जो अभी हमारे जो टेक्निकल में हुआ है इसमें परिवर्तन हुआ, तो उसमें भी कुछ फायदा भी हुआ है।
1: हाँ, तो आप ये सोचते हैं कि पहले जो हम जीवन जी चुके हैं वो ज्यादा अच्छा था, ये वर्तमान में हम जो जी रहे हैं उसमें ही आप बहुत खुश हैं?
0: पहले वाला ठीक था मैडम।
1: ऐसा हमेशा सबको लगता है ना।
0: जी,
1: लेकिन है ना, हमारा कहना ये है कि वर्तमान में जो हम जी रहे हैं ना उसे बहुत खुशहाल बनाए, क्योंकि भविष्य में जाके आप इस वक्त को कहेंगे कि वो बीता वक्त ज्यादा अच्छा था, है ना। जो बीत चुका उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना, लेकिन जो अब हमारे हाथ में है उसे तो हम बेहतर बना सकते हैं। चलिए, बस इसी बात पे हमको आप लोगों की भी राय लेनी थी। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये तो मैडम, ये तो बात आपकी गीत हमारी के ये है ना,
1: बिल्कुल बिल्कुल, बात आपकी गीत हमारे।
0: तो इसमें गीत जो बजता है मैडम वो 11 बजे बजता है ना?
1: 11 बजे से कल प्रोग्राम आएगा और गीत हमारी पसंद के होंगे इसमें।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
1: कौन बोल रहे हैं?
0: नेत्राम खोजर बोल रहे जी, कोठिया।
1: नेत्राम जी,
0: हाँ जी,
1: कब कॉल किया था आपने?
0: अब नहीं कर रहे जी कॉल, आज इतना आ रहा है।
1: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: नेत्राम खोजर बोल रहे जी, कोठिया से। हाँ
1: कोठिया।
0: जी,
1: अच्छा, क्या हाल है आपके?
0: सब ठीक है जी।
1: अच्छा, और
0: और सुना
1: नेत्राम जी,
0: समाचार
1: आप
0: क्या?
1: ये बताइए कि आप है ना, जो बीता हुआ समय बीत चुका है उसमें ज्यादा खुश थे कि आज खुश हैं?
0: जी
1: जो समय बीत चुका है उसमें ज्यादा खुश थे, या जो अभी जी रहे हैं जिंदगी उसमें ज्यादा खुश हैं?
0: नहीं, जिंदगी जी रहा है अच्छे खुश है।
1: अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। मतलब वर्तमान में जो आपके पास है आप उससे संतुष्ट हैं?
0: हाँ जी,
1: चलिए, बहुत अच्छी बात है।
0: हाँ पहला
1: हर
0: टाइम
1: कोई
0: दोस्त
1: ये कह रहा है
0: लगा।
1: कि जो समय बीत चुका है वो ज्यादा अच्छा था, लेकिन हकीकत ये है कि जो बीत गया सो बीत गया, जो आज है
0: हाँ जी,
1: वही सच
0: हाँ जी,
1: है ना? चलिए
0: बोला
1: नेत्राम जी,
0: बोला जी
1: आपसे
0: बात है।
1: बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कल 11 बजे से आप अपना प्रोग्राम सुन सकेंगे, ठीक है
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: जी?

0: हेलो।
1: ओ, हम कटनी से बोल रहे हैं, प्राची वर्मा जी।
0: प्राची वर्मा।
1: जी
0: हाँ प्राची जी, बोलिए, कैसी हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। तो आपने क्या बात, आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में फोन नहीं लगाया था क्या?
1: नहीं, हम लगाए थे लेकिन कोई जेंट्स के अनाउंसर था ना, इसलिए हम बोले ये तो किसी और को लगता लग रहा था, हम काट दिए इसे बिल्कुल।
0: अच्छा, ऐसा है, कहीं
1: जी
0: और लग गया होगा।
1: हाँ, तो हमने डर के काट दिया, हम बोले पता नहीं किनको लग गया, हम तो आकाशवाणी को लगा रहे थे।
0: अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और प्राची जी, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ है कि कुछ काम करती हैं
1: नहीं नहीं
0: बाहर?
1: नहीं हमारी शादी नहीं हुई है जी।
0: शादी नहीं हुई?
1: नहीं जी,
0: अच्छा, तो क्या करती हैं आप?
1: हम जॉब करते थे पर छोड़ दिए, बीमार
0: क्यों?
1: हो गए थे बहुत ज्यादा
0: अच्छा, आपकी सरकारी नौकरी थी?
1: जी। नहीं,
0: अच्छा,
1: आंगनवाड़ी में थे।
0: चलो कोई बात नहीं। अभी कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ कैसी चल रही है?
1: अच्छी चल रही है जैसे चलनी चाहिए,
0: अच्छा,
1: आहिस्ता आहिस्ता, हौले हौले जिंदगी।
0: अरे वाह। तो प्राची जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि बीते समय में जो बातें बीत चुकी हैं वो ज़्यादा अच्छी थी, और काश कोई टाइम मशीन होती जो हमें बीते वक्त में ले जाती, ऐसा क्या लगता है आपको?
1: ले जाती है ना, मुझे लिखने का शौक है तो
0: अरे वाह,
1: हम तो चले जाते हैं, जो बीता हुआ कल है उसमें लगता है
0: अरे
1: कि सामने खड़ा है।
0: वाह, सही बात है। आपसे बेहतर तो कुछ इन बातों को समझ ही नहीं सकता कोई।
1: सोचिए हमने, हमारे 5,000 हो गए हैं, हमने इतना लिख लिए हैं।
0: अच्छा, चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत हुनर है आपके अंदर और आप लिखती
1: मेहनत
0: हैं।
1: तो पर किस काम का जो काम ना सके।
0: बिल्कुल, ऐसा कैसे कह रही हैं आप? अपने हुनर के जरिए बीते वक्त में पहुंच जाती हैं, इससे बेहतर कुछ हो सकता है? हम तो सबसे यही बोल रहे हैं कि जो वर्तमान है, जो आज है, वो सच है, उसमें जियो और उसमें खूब खुश
1: आज
0: रहो।
1: में ही तो जी रहे हैं, पर गुजरा हुआ कल सामने तो आ ही जाता है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही है ये। लेकिन गुजरे हुए वक्त को हम भुला तो नहीं सकते, लेकिन उससे कुछ नसीहतें ले सकते हैं, कुछ किसी को
1: चलिए हम
0: गिफ्ट
1: आपके लिए अपना लिखा कुछ सुनाते हैं।
0: सुनाइए।
1: खुशियों का मेला हो ना कोई झमेला हो,
0: हाँ,
1: रिमझिम करती बारिश हो, हम हो तुम हो और कुल्हड़ वाली चाय का ठेला हो।
0: वाओ,
1: जी
0: बहुत अच्छा। चाय याद दिला दी आपने मुझे, सच में चाय पीने का मन होने लगा, क्योंकि सर्दी हो रही है मुझे भी। है ना?
1: चाय के तो हम भी बहुत शौकीन है,
0: बिल्कुल
1: हमको
0: बिल्कुल,
1: कोई खाने को ना पूछे चाय को पूछे।
0: चलिए कभी होगा तो बिल्कुल चाय पे मिलेंगे। चलिए, अभी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे यहीं संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अनुमति दीजिए इस कार्यक्रम से अपनी रेडियो सखी कविता रावत को नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और आपसे करेंगे ढेर सारी बातें।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:58 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज बड़वानी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली सहभागिता करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित युग प्रवर्तक डॉक्टर हेडगेवार महानाट्य में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के 5वें दिन 1300 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 9 लाख से अधिक नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। नगरीय विकास और आवास विभाग ने भोपाल, मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास और रतलाम नगर निगम के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति सूची जारी कर दी है। और प्रदेश भर में आज बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कल देर रात से बारिश शुरू हुई जो लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, मुरैना, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभिन्न जिलों में भी बारिश का दौर जारी रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12 बजने वाले हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गीत जिसको लिया है हमने फिल्म वारिस से। राजेंद्र कृष्ण ने इस गाने को लिखा है, आर डी बर्मन का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है। सपना संगीता रोड इंदौर से लिखने वाले हैं लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है अम्बेडकर चौक खुरई से लिखने वाले हैं राम सखी, परमानंद सौरव, गौरव, किशोरी बोस, एल पी मोहित, लल्लू राम, पूरन रोहित, छोटू टुनटुन और समस्त परिवार ने इस गाने को पसंद किया है। सुनते हैं।

अगला गाना लिया है हमने मुकेश की आवाज़ में, और इसको फिल्म जो है वो है तीसरी कसम। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, घिसू दिलवारे लक्ष्मी माधुरी सोनाली भगवान पुष्पा नेहा एकता अस्मिता सौरभ कुणाल दिलवारे, और राजपुर से इन्होंने ये पत्र लिखा है। राजपुर मध्य प्रदेश है या क्या है इसके आगे इन्होंने नहीं लिखा। इसी गाने के लिए फरमाइश आई है, कंवर कॉलोनी बड़वाह से लिखने वाले हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म गाइड से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शैलेंद्र ने इस गाने को लिखा है, एस डी बर्मन का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है, लिखा है इन्होंने गौरी नगर इंदौर से, आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। और इसी गाने को पसंद किया है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। और गाने के लिए फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास से, मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनते हैं ये गीत।

अगला गाना लिया है हमने फिल्म बेटी बेटे से। आवाज़ें हैं सुमन कल्याणपुर मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत है, सुनिए ये गीत।

0: अगला गाना लिया है हमने फिल्म वचन से, और बेटी बेटे के बाद में ये अगला गाना है, और आवाज़ इसमें मोहम्मद रफ़ी की है। हसरत जयपुरी ने इस गाने को लिखा है, शंकर जी किशन का संगीत है, और उस गाने की और इस गाने की दोनों की मिली जुली फरमाइश इस तरह है। औरंगाबाद से लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से लिखने वाले हैं कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शोएब, मुश्तबा खान, रऊफ शाहिद और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और अगला इसी गाने के लिए जो फरमाइश है यह है बेरड़ी, बेरड़ी से लिखने वाले हैं हुकुम करम कर, सुनीता करम राकर, हार्दिक करमरकर और प्राची करमरकर, तनु करमरकर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य।
1: संभल कर चलो जाना वरना गिर जाओगी, जवान मस्त है डगर।

0: आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दिल जले का एक गाना, आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर ने इस गाने को लिखा है, अनु मलिक का संगीत है और इस गाने को पसंद किया है गांव भड़भूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं रघुनाथ मालवीय, भंवर बाई, सुषमा, पुष्पा, कमला, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम बाबू, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, आयुष और ओम प्रकाश ने। सुनते हैं ये गाना।
1: एक बात मैं अपने दिल में लिए न जाने कब से फिरता हूँ।
2: क्या?
1: कि वो सारे प्रेम पत्र उस मोटी की बजाय अगर तुम मुझे लिखती तो कैसा होता।
2: मैं क्यों लिखूंगी? तो ये सारे कार्ड्स।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
6: CERT का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
4: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
5: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
4: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
7: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
8: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान
9: आकाशवाणी इंदौर।
8: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
10: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे, तयार रहा बरं का?
11: मी नाही येऊ शकणार।
10: अरे आपल्याला सकाळी चलायचं आहे, काय त्रास आहे त्यात?
11: रविवारी सकाळी रेडिओवर मराठी कार्यक्रम येतो 10:30 वाजता, तो मी नक्की ऐकते, तो कधी सोडत नाही।
10: असं का? अरे पण आता आपल्याकडे मोबाईल आहे आणि रेडिओ आता मोबाईलवर सुद्धा ऐकता येतो।
11: अरे वा, हे तर खूपच छान, मग मी नक्की येणार।
10: तर मोबाईलवर ऐप न्यूज ऑन AIR डाउनलोड करा आणि त्यावर ऐका
11: मराठी कार्यक्रम।
10: तर नक्की ऐका प्रत्येक रविवारी सकाळी 10:30 वाजता
11: मराठी कार्यक्रम।
12: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
13: क्या?
12: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
13: वो कैसे?
12: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
13: पर सुनेंगे कैसे?
12: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय के अंतर्गत कामनी का एकांतारे का छठा एपिसोड।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे के लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। लीजिए सुनिए कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का छठा भाग। अभी तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महल छोड़कर चले जाते हैं भयानक जंगल के हिंसक भेड़ियों से बचने के लिए। एक अजनबी राजा को बबूल के पेड़ पर चढ़ जाने को कहता है और उनके प्रिय अश्व नीलमणि को लेकर चला जाता है। आचार्य नागदत्त के आश्रम में नीलमणि घायल अवस्था में बंधा हुआ मिलता है। नीलमणि की अच्छी तरह से परिचर्या और शुश्रूषा से वो ठीक हो जाता है। आचार्य नागदत्त उसे अवंती पहुंचाने का निर्णय करते हैं। इस काम के लिए वो चंद्रसेन को चुनते हैं और साथ के लिए एक कृषक गोप को भेजते हैं। चंद्रसेन और गोप अश्व नीलमणि को लेकर अवंती चलते हैं।

चंद्रसेन ने अश्व की बहुत सेवा की थी, उसे नीलमणि से लगाव भी हो गया था। फिर आचार्य चाहते थे कि आश्रम की आवश्यकता पूर्ति के लिए वो राजधानी से कुछ औषधियां और वस्त्रादि भी लेता आए। चंद्रसेन के मार्गदर्शन के लिए दैनिक भृति पर एक गोप उसके साथ किया गया। आचार्य नागदत्त ने दो पत्र भी चंद्रसेन को दिए थे, एक अपने मित्र महामात्य पूर्ण रथ के प्रति संबोधित था, जिसमें राजा भर्तहरि के अश्व के भटक कर सेवाश्रम पहुंचने का विवरण था, और दूसरा अपनी पत्नी देवी वसुंधरा के लिए, जिसे 6 वर्ष पहले वो अवंती में छोड़ आए थे।

0: बंधु गोप
1: जी,
0: अभी तुमने बताया था कि अवंती यहाँ से एक योजन दूर है।
1: जी ब्रह्मचारी जी।
0: और कल से अब तक हम कितना चलकर आए हैं?
1: ये भी तो बताया था, चलिए पुनः बताता हूँ। हाँ। कि लगभग 6 योजन चले होंगे।
0: अच्छा
1: ब्रह्मचारी जी, आप बार बार ये सब क्यों पूछते हैं? थक गए हैं क्या?
0: नहीं नहीं, थका नहीं हूँ।
1: विचित्र हैं आप। कसी हुई काठी वाला इतना पुष्ट चपल सबल अश्व होते हुए भी पैदल चलने की हट कर रहे हैं। ग्रामवास के लोग हमें देखकर आश्चर्य करते हैं, आपसे हंसते हैं, पूछते हैं और व्यंग करते हैं।
0: अरे
1: अरे, किस किस को बताएं भाई कि राजा का अश्व है, साधारण जन इस पर नहीं बैठते। अब चलो मान लिया कि ये बंधन युक्त अकुलीन के लिए है। आप तो ब्रह्मचारी हैं, बैठ लेते तो थकते नहीं और बार बार प्रश्न भी नहीं पूछते। कितना चलाए और कितना अभी चलना है।
0: अरे अरे, तुम तो रुष्ट हो गए बंधु।
1: कठिनाई यही है ब्रह्मचारी जी कि आप पर रुष्ट भी तो नहीं हुआ जा सकता, इतने सरल हैं आप, सरल और भोले।
0: बंधु, अश्व पर न बैठने का एक कारण है मेरे पास। पशु भी जीव है और यदि मैं इस पर अपना भार ला दूंगा तो हिंसा होगी।
1: हिंसा? हिंसा क्या होती है भोले बाबा?
0: देखो, किसी जीवात्मा को मन वचन या कर्म से कष्ट पहुंचाना हिंसा होती है बंधु।
1: यही हिंसा है तो महाराज, फिर तो जीवन ही असंभव हो जाएगा।
0: कैसे?
1: अरे हिंसक पशु आएंगे और हमारी खेती को उजाड़ देंगे, बिना अन्न के हम कैसे जिएंगे? अब हिंसक चोर डाकू लुटेरे हमारा सब कुछ छीन लेंगे, हमारे प्राण भी, और हम नतमस्तक अत्याचार को सहकर कहते रहेंगे अहिंसा परम धर्म है बंधु।
0: उनसे बचने के उपाय करना चाहिए। उत्तर में प्रतिहिंसा आवश्यक नहीं है। अरे, अवंती की अट्टालिकाओं के शिखर कलश दिखने लगे हैं, क्या आ पहुंचे बंधु?
1: नहीं, अभी भी हमें 2 कोस और चलना है।
0: अरे
1: 3 घड़ी का समय अभी और लगेगा।
0: अच्छा,
1: पहुंचते पहुंचते तो समझ लीजिए गोधूली का समय हो जाएगा। चलिए चलिए।
0: हाँ, अवंती मेरे लिए एक स्वप्न जैसा है बंधु, स्वर्ग के होने या ना होने का प्रमाण भी नहीं है, स्यात एक कल्पना भर है जो लुभाती है, किंतु इस नगर में सुख सुविधा विलास की सारी सामग्री उपलब्ध है जो इस कल्पना की रचना करती है, किंतु मनुष्य को इनके भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। सुख सुविधाएं सभी को समान रूप से मिलना चाहिए, जियो और जीने दो, ठीक है ना बंधु?
2: परिचित पथ पर आ पहुंचने के कारण नीलमणि उत्तेजित हो जाता है और हिनहिनाता है।
0: अरे अरे अरे नीलमणि, तुम भी जान गए कि अवंती आ पहुंची? उत्तेजित मत हो, हमें भी साथ साथ चलना है।
1: अरे ये क्या कर रहे हैं ब्रह्मचारी जी, वल्गा को मत खींचिए।
0: क्यों?
1: अरे अश्व को पीड़ा होगी, ये तो हिंसा होगी ना ब्रह्मचारी जी, क्यों, ठीक है ना?
0: तो क्या करूं? अरे बलगा ढीली होगी तो भाग जाएगा।
1: तो भाग जाने।

0: इन दोनों को बंदी बना लो।
1: लेकिन लेकिन हमारा अपराध क्या है नायक?
0: यह अश्व तुम्हें कहां से मिला?
1: कोई अज्ञात व्यक्ति इसे हमारे सेवाश्रम के द्वार पर बांध गया था। घायल था, हमने इसकी परिचर्या की। हमें ज्ञात हुआ कि यह महाराज भर्तृहरि का प्रिय अश्व है, सो इसे पहुंचाने जा रहे हैं। महामात के नाम आचार्य श्री का पत्र है मेरे पास।
2: अब चोरी की हुई वस्तु इस तरह दिन दहाड़े नहीं लाई जाती नायक।
1: हाँ?
2: और वो भी उस स्थान पर जहां उसे सब चीनते हों। हम आचार्य नागदत्त के सेवाश्रम से आए हैं, उनका पत्र है हमारे पास। और ये ब्रह्मचारी जी है, इनकी वेशभूषा से नहीं जाना आपने?
0: क्षमा करें, चलिए नीलमणि को हम ले चलते हैं।
3: लेकिन यह तो अड़ रहा है, लगता है ब्रह्मचारी जी आपके बिना नहीं जाएगा यह आगे।
1: चलो भाई चलो नीलमणि चलो, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं।
0: सैनिक तुम वहां ले जाकर सूचना दो कि हम नीलमणि के साथ वहां पहुंच रहे हैं।
2: हाँ, और हम भी जो सेवाश्रम से नीलमणि को यहां तक लाए हैं।

0: नीलमणि को लाने के लिए स्वयं महामात्य वहां उपस्थित होते हैं।
1: अपने घर आ गए हो नीलमणि तुम। राजा भर्तृहरि का आवास है ये, और तुम्हारा भी। ये सब तुम्हारा अपना ही है। मैं बहुत प्रसन्न हूं।
2: अश्वहार, नीलमणि को संभालो। आप कहां से आए ब्रह्मचारी जी? नीलमणि आपको कहां मिला?
1: हम आर्य नागदत्त के सेवाश्रम से आए हैं महाराज। वहीं कोई एक दिवस नीलमणि को छोड़ गया था घायल अवस्था में। आचार्य श्री ने महामात के लिए एक पत्र भी दिया है।
2: अच्छा,
1: जो उन्हें सौंपना है। क्या आप बताएंगे कि महामात से कहां भेंट हो सकती है? और मान्यवर, मैं ब्रह्मचारी नहीं, सेवाश्रम का एक अकिंचन सेवक मात्र हूं। चंद्रसेन नाम है मेरा। यह वेशभूषा मुझे अच्छी लगती है।
2: महामात्य आपके सामने है
1: क्या?
2: मैं ही महामात्य पूर्ण रथ हूं। आर्य नागदत्त का पत्र आप मुझे दे सकते हैं। हाँ, और अब आप राजकीय अतिथि हैं। महास्पद, अतिथिशाला में इनकी व्यवस्था करवाएं।
1: आप महामात्य, प्रणाम निवेदन करता हूं। ये मेरे साथ आए हैं गोप, कृषक हैं। मान्यवर, पत्र ये रहा।
2: आप थके हुए होंगे, अतिथिशाला में जाकर विश्राम करें। प्रातः भेंट होगी।
1: जैसी आज्ञा।
2: तभी आर्य नागदत्त का उत्तर भेज दूंगा मैं।
1: हम दो एक दिन रुकना चाहेंगे। आचार्य श्री के लिए कुछ औषधियां ले जानी है। अभी तो हमने भगवान महाकाल के दर्शन भी नहीं किए। क्षिप्रा तट, रुद्र सागर देखना है।
2: हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, जब तक जी चाहे जब तक रहिए आप।
1: धन्यवाद।
2: सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। महास्पद ध्यान रखेंगे।

0: उज्जैनी का प्रथम दर्शन इतना मनोरम है तो भ्रमण कितना सुखदायी होगा। बंधु, हमें अवंतिका का भ्रमण करना है, कितना समय लगेगा?
1: ब्रह्मचारी महाशय, नगर का अंतर्विस्तार एक योजन है और वह चार योजन। भ्रमण 1 से 3 दिवस में भी संभव है और महीने वर्ष भी लग सकते हैं।
0: क्या?
1: हाँ, आप पर निर्भर है, आपके मंतव्य और आपकी प्रेरणा पर। अतिथिशाला आ गई।
0: अच्छा,
1: रथ से उतरिए। निरंजन।
2: आज्ञा श्रीमान।

0: ये महामात्य के अतिथि हैं।
1: श्रीमान,
0: इनका ध्यान रखना, किसी तरह की असुविधा ना हो।
1: श्रीमान,
0: रथ शिविका जो भी कहें उपलब्ध करवाना।
1: श्रीमान,
2: हमें 3 दिन रहना है।
0: जब तक चाहें आप रुक सकते हैं।

0: कहाँ से पधारे हैं आप दोनों?
1: सेवाश्रम से, दशपुर के मार्ग पर 5 योजन उत्तर में है।
0: पधारिए, आइए।
2: ब्रह्मचारी जी, हाँ? स्नान ध्यान तो सकुशल संपन्न हो गया।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
2: राजभवन से कोई आया है?
1: राजभवन से कौन है?
2: महामात्य महोदय ने कहला भेजा है, उन्होंने आपका स्मरण किया है।
1: कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने स्मरण किया, मेरा उन्हें धन्यवाद निवेदन करें।
2: संभवतया आपके सम्मुख आशय स्पष्ट नहीं हुआ।
1: क्या?
2: महामात्य ने स्मरण किया है।
1: हाँ?
2: इसका अर्थ है वो आपसे भेंट करना चाहते हैं।
1: अच्छा?
2: उन्होंने आपको अभी बुलाया है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा। सीधे कही गई बात ही समझ में आती है सरलता से बंधु। मित्र गोप
2: जी,
1: मैं अभी लौट कर आता हूँ, तब दर्शन और नगर भ्रमण के लिए चलेंगे, ठीक है?
2: हाँ ठीक है।

0: आइए ब्रह्मचारी जी, आप इस विशिष्ट कक्ष में विश्राम करें। महामात्य को आपके आगमन की सूचना है, वो पधार रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: जय जनेशार्य।
3: जैन हो ब्रह्मचारी?
2: जन्म से तो नहीं आर्य, किंतु इस कठिन साधना मार्ग की ओर आकर्षण है। सेवा कार्य में जिस ऐन्द्रिक निग्रह और आत्मतप की आवश्यकता होती है, उसका अभ्यास इसी मार्ग से संभव प्रतीत होता है। मैं तो सेवक हूं आर्य।
3: बैठो।
2: धन्यवाद।
3: चंद्रसेन नाम है तुम्हारा
2: महाराज।
3: श्रेष्ठ नागदत्त ने अपने पत्र में बताया है, नीलमणि की चिकित्सा करके तुमने अवंती राज्य और हम सब पर उपकार किया है। भाई हम सब तो आभारी हैं तुम्हारे।
2: आपकी अनुकंपा है आर्य।
3: कुछ बता सकते हो नीलमणि किस दिशा से भटकता हुआ आश्रम तक पहुंचा होगा?
2: आर्य, ये जानने का प्रयत्न हम में से किसी ने भी नहीं किया। अश्व नीलमणि को हमने आश्रम के द्वार पर बंधा हुआ पाया था।
3: अच्छा।
2: वो नितांत अकेला था और शरीर पर घावों की पीड़ा से विचलित हो रहा था।
3: ओ।
2: हमें लगा कि तत्काल ही उसका उपचार आवश्यक है, खोजबीन का तो अवसर ही नहीं था। मैंने भेषज्ञ को कहा, आश्रम अध्यक्ष को सूचित किया, फिर सभी उपचार में लग गए। यदि वर्षा का व्यवधान ना हुआ होता तो हम कुछ पहले ही उसे यहां ले आते।
3: अच्छा, नीलमणि के आश्रम में पाए जाने की तिथि स्मरण है तुमको ब्रह्मचारी?
2: खूब स्मरण है आर्य। आश्रम के देवज्ञ से मैंने जानकारी ली थी। रोग के उपचार में ऋतु, नक्षत्र और स्थान का ध्यान रखा जाता है। उस दिन पुनर्वसु नक्षत्र था और श्रावण का महीना।
3: अच्छा अच्छा अच्छा। अर्थात एक ही रात्रि में नीलमणि आश्रम जा पहुंचा था। वो एक रात्रि में 50 कोस तक चलने में सक्षम है, किंतु ऊबड़ खाबड़ अरण्यों राहों पर इतना चल पाना तो संभव नहीं। हो सकता है कि उसने 30-40 कोस की यात्रा की हो। सेवाश्रम पश्चिम में है, नरेश ने दक्षिण द्वार से प्रस्थान किया था, अर्थात चंद्रसेन
2: महाराज।
3: एक बार फिर आपको धन्यवाद
2: महाराज।
3: महारानी पिंगला ने भी तुमसे भेंट का आग्रह किया है।
2: अच्छा।
3: कुमारस्पद तुम्हें उन तक ले जाएंगे।
2: आर्य, मुझे केवल 3 दिन रुकना है, भेंट और भ्रमण के लिए केवल 3 दिन।
3: अरे भाई, तुम्हारे लिए रथ और शिविका की व्यवस्था है, अतिथिशाला में भी पूरी व्यवस्थाएं हैं राज्य की ओर से, फिर संकोच कैसा। हाँ, अगर कुछ क्रय करना हो तो इन्हें रखो।
2: अरे किंतु
3: इसमें कुछ स्वर्ण और कुछ रौप्यक मुद्राएं हैं। अरे भाई, बच जाए तो आश्रम को दे देना।
2: अरे मुझे मुद्राओं की आवश्यकता नहीं, धन होगा तो चोर और तस्कर पीछे लग जाएंगे, इस भार की चिंता बनी रहेगी।
3: ब्रह्मचारी तुम महानगर में हो, यहां कार्य व्यापार का आधार मुद्राएं ही नियमित निर्धारित करती हैं। फिर तुम्हारे साथ तो वो गोप भी है ना, उसकी आवश्यकताएं भी तो हो सकती हैं।
2: उचित है, वो तो ग्रस्त है, रख लेता हूं महाराज।
3: कुमारस्पद, ब्रह्मचारी को राजमहालय पहुंचा दें।
0: जी श्रीमान।

0: रथ पुनः राजपथ पर दौड़ने लगता है। चंद्रसेन की दृष्टि फिर से मार्ग की मनोरम्यता पर घूमने लगी। बीच बीच में महामात्य द्वार से प्रवेश के उपरांत दृश्य और भी मनोहर होने लगते हैं। स्थान स्थान पर रंगीन पिंजरों में बैठे शुक सारिका स्वागतम स्वागतम की ध्वनि निकालने लगते हैं।
1: यहाँ तक सब नहीं पहुँचते, विशिष्ट जन ही यहाँ आ पाते हैं ब्रह्मचारी।
2: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: यहाँ कोई अपरिचित प्रवेश नहीं कर सकता।
2: अच्छा,
1: आप अतिथि गृह में प्रतीक्षा करें, महादेवी को सूचित कर दिया गया है।
2: हाँ,
1: रथ बाहर द्वार पर खड़ा रहेगा।
2: ठीक है।
0: चंद्रसेन अतिथि कक्ष में बैठ जाते हैं। महारानी पिंगला की परिचारिका वयसिका उनके सामने मधुरव्य एवं खाद्य पदार्थ रख देती है। तभी महादेवी पिंगला का आगमन होता है।

0: प्रणाम, बारंबार प्रणाम महादेवी। मैं सेवाश्रम का सेवक चंद्रसेन आपको प्रणाम निवेदन करता हूँ।
1: बैठे ब्रह्मचारी, अवंती में आपको कोई असुविधा तो नहीं है?
0: आपकी कृपा से सब ठीक है, लेकिन मैं आपकी उपस्थिति में बैठ कैसे सकता हूँ? शास्त्रों का कथन है कि राजा देवतुल्य होता है।
1: अच्छा, फिर कुछ रानी के विषय में भी तो कहा गया होगा?
0: सादृश्य न्याय के अनुसार रानी भी समतुल्य न्याय की अधिकारिणी है।
1: तो देवी की आज्ञा स्वीकार करो ब्रह्मचारी और बैठ जाओ।
0: जो आदेश।
1: ब्रह्मचारी।
0: महारानी।
1: राजा भर्तृहरि का अश्व लेकर तुम ही आए हो?
0: बिल्कुल।
1: नरेश के विषय में तुम्हें कुछ ज्ञात है?
0: क्यों नहीं महादेवी, उनकी योग्यता, सिद्धता, न्यायप्रियता, प्रजावत्सलता जगत विख्यात है।
1: कुछ और?
0: आप ही बताएं।
1: महाराज का अश्व तो तुम राजधानी ले आए, किंतु स्वयं महाराज नहीं लौटे हैं।
0: क्या?
1: अब तक किसी को भी ज्ञात नहीं है कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं। हम उनके समाचार के लिए उत्सुक हैं। तुम्हें कुछ ज्ञात है?

0: आहत अश्व, कई दिनों से नरेश का न लौटना, किसी सूचना का न होना, विषाद में डूबी महादेवी, अवश, आकुलता, चिंतित महामात्य, कुछ तो ऐसा अवश्य है जो शुभ नहीं है।
1: इसे कोई सूचना मिले तो हमें तुरंत अवगत कराना ब्रह्मचारी।
2: जो आदेश।
1: और हाँ, श्रेष्ठीवर नागदत्त को हमारा अभिवादन कहना।
2: महादेवी।
1: वैसिका, ब्रह्मचारी का सत्कार करो।
3: कहाँ गए होंगे राजा भर्तृहरि?
4: अवश्य सकुशल होंगे, हम सबका मन भी यही कहता है।
1: तुम्हारी वाणी सत्य हो ब्रह्मचारी।

अभी आप महेश कटारे के उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का छठा भाग सुन रहे थे।

रूपांतरकार प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। वाचक अनुराधा चतुर्वेदी, पिंगला कंचन राजानी, चंद्रसेन बद्रवास्ती, गोप विवेक मृदुल, महामात्य अरशद इकबाल, महस्पद नजीर कुरैशी, नायक विक्रांत निम्बोरे, संयोजक राकेश ढोंडियाल, परिकल्पना पंडित रामस्वरूप रतौनिया और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन।

आपको ज्ञात ही है कि चंद्रसेन इन दिनों अवंती में है। चंद्रसेन की बातों से महारानी पिंगला की अनुचरी वैसिका अत्यंत प्रभावित होती है। चंद्रसेन देवी वसुंधरा के नाम आचार्य नागदत्त का पत्र देने उनके आवास जाते हैं। अगले भाग में हम देवी वसुंधरा के व्यक्तित्व से परिचय प्राप्त करेंगे।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 6वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मैसेडोनिया में हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कार्य होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इस वर्ष के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार लोकमान्य तिलक की 106वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 1 अगस्त को पुणे में प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव का आज बड़वानी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली सहभागिता करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री डॉ यादव भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित युग प्रवर्तक डॉ हेडगेवार महानाट्य में भी शामिल होंगे। प्रदेश भर में 15 से 30 जुलाई तक चलाए जा रहे नशे से दूरी है जरूरी 2.2 अभियान के पांचवें दिन 1300 से अधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है और 9,00,000 से अधिक नागरिकों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया गया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भोपाल, मुरैना, सागर, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा, खंडवा, बुरहानपुर, उज्जैन, देवास और रतलाम नगर निगम के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति सूची जारी कर दी है। और प्रदेश भर में आज बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल में 10 दिनों के लंबे इंतजार के बाद कल देर रात से शुरू हुई बारिश लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज भिंड, मुरैना, दमोह और कटनी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभिन्न जिलों में भी बारिश का दौर रहेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

कार्यक्रम महिला सभा लेकर हाजिर हूँ आपकी सखी सोनल चौरे। स्वीकार करें मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, आज मैं आपसे ढेर सारी बातें करूंगी और साथ ही सुनाऊंगी आपके पसंदीदा गीत भी। सखियों, आज मैं आपसे बात करूंगी किताबों के महत्व को लेकर, क्योंकि किताबें ही हैं जो हमारी सबसे सच्ची दोस्त होती हैं, है ना। कितनी बातें हैं जो इन किताबों में हमें पढ़ने को मिलती है, लेकिन सच कहूँ तो किताबों से ज़्यादा समय तो हम मोबाइल में बिता देते हैं, लेकिन जो मज़ा किताबों को पढ़कर आता है ना, वो मज़ा कहीं और नहीं मिलता। किताबों से कई ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती है और कई प्रेरणादायक कहानियों से हमें अपनी ज़िंदगी में कई सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। हालांकि हमने तो किताबें खूब पढ़ी है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे बच्चे किताबें पढ़ने में कितनी रुचि रखते हैं। तो अधिकतर लोगों का जवाब होगा नहीं, बहुत कम, क्योंकि कई बच्चे तो मोबाइल में ही अपनी पढ़ाई करते हैं और मोबाइल में ही उनका अधिकांश समय निकल जाता है। इसका कारण है कि हम खुद किताबें नहीं पढ़ते और पूरा दिन मोबाइल में वीडियो देखना, मैसेज पढ़ना और भेजना, इन सब में लगा देते हैं। तो बच्चे हमें देखकर क्या सीखेंगे? तो बच्चों में यदि किताब पढ़ने की आदत विकसित करनी है ना सखियो, तो सबसे पहले हमें किताबें पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात कि बच्चों के साथ आप रोज 15 से 20 मिनट बैठें और उनके साथ किताबें पढ़ें और कुछ प्रेरणादायक कहानियां उन्हें सुनाएं और उनसे भी पढ़वाएं किताबें। और यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए चित्र वाली किताबें खरीदें, जिससे उन्हें चित्र देखकर किताब पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। बस देखना, बच्चों में पढ़ने की आदत धीरे धीरे विकसित होने लगेगी। लेकिन आप उनके लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी प्रेरणादायक किताबें जरूर लाएं, इससे उन्हें पढ़ने में रुचि भी आएगी और मजा भी आएगा।

अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। यह योजना भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है। इसे 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुसार मुफ्त प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना है। इसमें 12वीं पास, 10वीं पास और ड्रॉप आउट युवा भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण के बाद परीक्षा पास करने पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट और स्किल कार्ड दिया जाता है। साथ ही 8,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता भी मिलती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए pmkvyofficial.org पर जा सकते हैं और यहां से आप आवेदन भी कर सकते हैं। आप इसमें कोर्स की लिस्ट देख सकते हैं और सर्टिफिकेट्स की जानकारी भी ले सकते हैं। और सखियो, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब चलते हैं हमारे अगले क्रम मेरी उड़ान की ओर, जिसमें आज हम सुनेंगे क्ले मिट्टी से ज्वेलरी बनाने में माहिर नेहा अग्रवाल को। तो आइए सुनते हैं क्रम मेरी उड़ान।

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सखियों, हम सभी में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है और हम इस हुनर का उपयोग कर बहुत कुछ कर सकती हैं। हम अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और आत्मनिर्भर बन सकती हैं। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है नेहा अग्रवाल जी ने, जो कि हुनर रखती हैं क्ले मिट्टी से बनाई गई ज्वेलरी का, और भी बहुत कुछ बनाती हैं वो। तो आइए बात करते हैं आज उन्हीं से हमारे मेरी उड़ान कार्यक्रम में। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मेरी उड़ान कार्यक्रम में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नेहा जी, ये बताइए कि आपने कब सोचा, कब आपके दिमाग में ये बात आई कि आप क्ले मिट्टी से ज्वेलरी भी बना सकती हैं और कई चीजें बना सकती हैं?
3: सबसे पहला थॉट तो तब आया जब मुझे फाइनली लगा कि मैं अपनी फैमिली और बिजनेस में दोनों में एक बैलेंस बना सकती हूँ। तब मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं अपना बिजनेस सेटअप करूं। उसके बाद जब मैंने क्ले की ज्वेलरी का एक इंटरनेट पे वीडियो देखा था, तब मुझे लगा कि ये कुछ नया है और मुझे स्टार्ट करना चाहिए।
2: क्या बात है नेहा जी, और क्या क्या चीजें बना लेती हैं आप क्ले से?
3: क्ले से ज्वेलरी के अलावा फ्लावर पॉट हो गया, वॉल हैंगिंग्स हो गया, ट्रेज हो गया। और क्ले से सिर्फ इनोवेशन की जरूरत है, क्रिएटिविटी की जरूरत है, इससे आप कुछ भी बना सकती हैं। क्ले इतनी बड़ी चीज है कि आप सिर्फ क्रिएटिविटी दिखाएं ना, आप बहुत कुछ बना सकती हैं उससे।
2: क्ले से हम ज्वेलरी मेकिंग पहली बार सुन रहे हैं, तो आपने ये चीज देखकर सीखी या आपने खुद से बनाया?
3: मैंने सबसे पहले पेपर क्विलिंग की ज्वेलरी देखी थी, उससे मुझे आइडिया आया कि हम क्ले की भी बना सकते हैं। और अभी रिसेंटली मैंने एक फैब्रिक ज्वेलरी का भी देखा है, तो मुझे लगता है सिर्फ क्ले से ही नहीं, हम पेपर क्विलिंग, हम फैब्रिक ज्वेलरी, बस क्रिएटिविटी की एक चीज होती है कि हम में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। क्ले का हमने जब देखा था फर्स्ट वीडियो, तब मुझे लगा कि बहुत सुंदर ज्वेलरी हम बना सकते हैं क्ले से। तब एक थॉट आया कि नहीं क्ले से। उसके बाद मैंने फिर फैब्रिक ज्वेलरी और पेपर कुलिंग ज्वेलरी भी बनाई है, तो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है और बहुत ही अच्छा पसंद कर रहे हैं सब।
2: वाह, क्या बात है नेहा जी, मैं भी अभी देख रही हूँ आपकी ज्वेलरीज वगैरह और ये जो चीजें आपने बनाई है, वाकई मुझे भी मजा आ गया देखकर। और कब से कर रही हैं आप ये काम?
3: मुझे ये काम करते हुए दो साल हो गए हैं करीबन। पर सबसे पहला थॉट मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया कि आपको ये स्टार्ट करना चाहिए, और तब से आज तक मेरी गाड़ी कभी पीछे नहीं गई है। सो सबसे स्ट्रांगेस्ट सपोर्ट जो बोल सकते हैं वो मेरे हस्बैंड का है इसे चालू करवाने के लिए। एंड इट्स नाउ 2 इयर्स जब मेरा बिजनेस सेटअप हो चुका है।
2: मतलब कि आपके जो हस्बैंड है उन्होंने ही आपको प्रेरित किया है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए?
3: मेरे हस्बैंड सबसे स्ट्रांगेस्ट पिलर है मेरी लाइफ में। मेरी गलतियां, मेरी अच्छाइयां, जो भी है वो हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं एंड इतने मोटिवेट करते हैं मुझे। मेरे बिजनेस के लिए भी सबसे पहला वही इंसान था जिसने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए इसे जरूर चालू करना चाहिए।
2: बहुत ही अच्छी बात है कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं, और सबसे जरूरी भी है कि हमारे हस्बैंड अगर हमें सपोर्ट करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या किसी और ने भी आपको इस कार्य को करने के प्रेरित किया है?
3: पूरी फैमिली का सपोर्ट एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मेरी मदर इन लॉ, मेरे स्पेशली बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी, दे आर द सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि मैं जब कोई काम करती हूँ, दे आर लाइक मम्मा ठीक है, मतलब आप करिए, हम इसमें आपका सपोर्ट करेंगे, हम अपनी पढ़ाई। सो ईच एंड एवरीबॉडी इन द फैमिली, सब इम्पोर्टेंट होते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने में, एक फैमिली का बैलेंस बनाने में। सो मैं बोलूंगी मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, जिन्होंने मुझे इनकरेज किया।
2: अच्छा नेहा जी, ये बताएं कि जो क्ले से बनाई हुई चीजें, जैसे आप ज्वेलरी बनाती हैं और भी कई चीजें जो आपने हमें बताई हैं, तो क्या लोग पसंद करते हैं और कितनी मांग है इन चीजों की?
3: क्ले की ज्वेलरी एंड स्पेशली जो पेपर क्विलिंग क्ले ज्वेलरी है, लोग बहुत ज्यादा, स्पेशली जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, मैंने अभी एक एग्जीबिशन किया था, मतलब पीपल आर लाइक क्रेजी। आप सिर्फ एक इनोवेशन डाली है उसमें, और सिंपल ज्वेलरी भी लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। मतलब इसकी इतनी डिमांड है कि सिर्फ आपको बनाना और आपको सही जगह उसे प्लेस करके और सेल करना आना चाहिए।
2: अपने काम की शुरुआत करने में आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत का सामना तो करना पड़ा होगा?
3: शुरू में जरूर थोड़ा हेजिटेशन होता है, क्योंकि मार्केट में जाना, हम लोग क्योंकि कहीं गए हुए नहीं होते हैं, तो शुरू में हमें कहीं जाना और स्टार्ट करना थोड़ा सा जरूर लगता है। लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए तो सारी मुश्किलें पार होती जाती है। मुझे भी पहली बार जब मैं मार्केट में निकली मुझे लगा अरे मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे 2 सालों में मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि नाउ आई कैन डू एनी। और इसीलिए मैंने अपना ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया इसी के साथ, और इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते ही मैंने आज अपने 5 ग्रुप्स में कंडक्ट कर रही हूँ, एंड मैंने इस क्ले ज्वेलरी के साथ साथ मेरा ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी हूँ और वो बहुत अच्छा चल रहा है। सो मैं सबसे कहना चाहूंगी प्लीज आप स्टार्ट करिए, शुरू में जरूर कुछ दिक्कतें आएगी लेकिन आपका खुद का उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो प्लीज कुछ ना कुछ जरूर कीजिए लाइफ में।
2: सखियों, मन की अभिव्यक्ति को उभार कर उसे सुंदर रूप में दिखाना ही कला है, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो नाटक, चाहे वो गायकी या चाहे वो चित्रकला हो, और इसके अलावा भी कई प्रकार की कलाएं हैं जो हमारे अंदर छिपी हुई हैं। तो बस सखियों, उन्हें हमें उभारना है और बाहर लाना है। अपने अंदर की कला को कभी दबने ना दें, उसे बाहर लाएं और उस कला का उपयोग करें, देखना आपको खुशी जरूर मिलेगी। नेहा जी, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की और विषय से संबंधित इतनी बढ़िया जानकारी दी हमारी सखियों को, आशा कर दें कि हमारी सखियां भी बहुत कुछ सीखेंगी आपसे, और अगर वो घरेलू महिलाएं हैं घर पर बैठकर ही वो बहुत कुछ सीखेंगी। धन्यवाद आपका हमारी मेरी उड़ान कार्यक्रम में।

0: उड़ान खुशियों की,
1: उड़ान सपनों की,
0: उड़ान हौसलों की,
1: मेरी उड़ान।
2: सखियो, अभी आप सुन रहे थे क्रम मेरी उड़ान में क्ले मिट्टी से ज्वेलरी बनाने में माहिर नेहा अग्रवाल को, और अब सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

और बढ़ते हैं अगले क्रम रूपलावण्य की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कि बारिश में फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो बारिश का मौसम होता तो बहुत खूबसूरत है, पर इसके साथ साथ बहुत सारी परेशानियां भी हैं, जैसे कि इस नमी के मौसम में फंगल इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन घबराना नहीं है सखियों, कुछ जरूरी टिप्स आप अपना कर सेफ रह सकती हैं। जैसे कि इस दौरान यदि आप गीले हो जाएं बारिश में तो तुरंत कपड़े बदलें और बॉडी को टॉवल से अच्छी तरह से पोंछ लें, और खास तौर से पैरों की जो उंगलियां होती हैं वहां इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा होता है, तो वहां अच्छे से पोंछें। इस दौरान ढीले और कॉटन के कपड़े पहने, टाइट जींस या सिंथेटिक कपड़े ये पसीने को रोकते हैं जिससे फंगस बढ़ता है, तो रोज साफ कपड़े बदलें और ढीले कपड़े पहने। पैरों में हम जूता मोजा जो भी पहनते हैं तो उसके कारण क्या होता है, पसीने के कारण फंगल इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो यदि आप बाहर से आ रहे हैं मोजे निकाल कर पैरों पर हवा लगने दें। इस दौरान एंटी फंगल पाउडर का इस्तेमाल करें और नहाने के बाद बॉडी ड्राई जरूर रखें। तो याद रखिए सखियों, सफाई ही बचाव है। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और सखियो, अब बात कर लेते हैं फूड जोन की, जिसमें आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिस्पी कॉर्न वेजिटेबल फ्रिटर्स की रेसिपी। तो बारिश की चाय के साथ ये परफेक्ट कुरकुरा नाश्ता आपको बहुत पसंद आने वाला है, तो जल्दी से सामग्री नोट कर लीजिए। स्वीट कॉर्न 1.5 कप, कटी सब्जियाँ 1 कप, प्याज 1/2 कप, हरी मिर्च 2, अदरक लहसुन पेस्ट 1 छोटा चम्मच, बेसन 1/2 कप, चावल आटा 3 बड़ा चम्मच, कॉर्नफ्लोर 2 बड़ा चम्मच, मसाले आप ले लें जैसे लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, हरा धनिया और तेल तलने के लिए। अब मैं आपको विधि बता देती हूँ। विधि बड़ी आसान है। कॉर्न 2 से 3 मिनट उबालकर दरदरा क्रश करें और बाउल में कॉर्न सब्जियाँ, प्याज, सारे मसाले और सारे आटे अच्छी तरह से मिला लें और पानी कम डालें। गरम तेल में छोटे पकोड़े बनाकर मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। चाट मसाला इन पर छिड़क कर हरी चटनी के साथ परोसे गर्मा गर्म। तो देखिए कितना पसंद आने वाला है आपको, है ना? तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा सखियों। फिलहाल सुन लेते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे, तयार रहा बरं का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: अरे रेवती ताई, या रविवारी आपल्याला उज्जैनला चलायचं आहे।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: ये धरती ये नदिया ये
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे प्रीति भार्गव और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

प्रीति भार्गव और साथियों के गाए इस मालवी लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। एक सूचना है आपके लिए, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना है। ये प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों की सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस, निर्माता, अधिकार स्वामी, एग्रीगेटर, कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग, राजस्व साझाकरण या रेवेन्यू शेयरिंग, प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड एवं निःशुल्क या ग्रेटेस्ट आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेशों के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने से पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों एवं आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ये सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पलाशी शर्मा की गई चंद गजलें। आगाज कर रहे हैं डॉक्टर बशीर बद्र के इस कलाम के साथ। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की है।

0: बहादुर शाह जफर के इस कलाम के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज आप सुन रहे थे पलाशी शर्मा की गई चंद गजलें, प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है एक अंतराल का।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर
3: ऐप और साथी वेव्स ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यही है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

आनंद बख्शी का लिखा यह गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है, एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने गाया है। फिल्म है एक दूजे के लिए।

0: आनंद बख्शी का लिखा यह गीत था, एसपी बाला सुब्रमण्यम और लता मंगेशकर ने गाया था। फिल्म थी एक दूजे के लिए। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश की चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एनडीए की बैठक के बाद ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ वकीलों से अपील की कि वे आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखना है। प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र को लेकर एनडीए सांसदों से सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। इस बारे में केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने बताया,
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने यूसीसी विधेयक पर चर्चा कराई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये जनता के सुझावों पर आधारित विधेयक है जिस पर करीब 10 लाख लोगों ने अपनी राय दी है। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होकर रहेगा। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी कांग्रेस ने यूसीसी के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया था। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि श्री टंडन का जीवन सादगी, सेवा और संगठन के मूल्यों से भरा हुआ था, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र और समाज के प्रति श्री टंडन का समर्पण हमेशा जनसेवा के मार्ग पर मार्गदर्शन करता रहेगा। उज्जैन में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में IIT इंदौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय भविष्य की तकनीक और उन्नत पदार्थ विज्ञान है, जिसमें देश विदेश के कई वैज्ञानिक और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल विज्ञान पर विशेषज्ञ व्याख्यान होंगे। प्रतिभागियों को IIT इंदौर की प्रयोगशालाओं का भ्रमण भी कराया जाएगा। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक बड़ा आयोजन हुआ है। यहां 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले इंदौर पुलिस के नाम ही 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड दर्ज था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने यह प्रमाण पत्र पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को सौंपा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने नशे से दूर रहने की शपथ भी ली। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज मुरैना, भिंड, दमोह और कटनी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, सीहोर और रायसेन में कल रात से लगातार बारिश हो रही है। नीमच, मंदसौर और रतलाम में फिलहाल मौसम साफ रहने का अनुमान है। भोपाल में आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। कार्यशाला में नीति आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर राजेश चंद्र सहित कई विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। भोपाल में जल्द ही इलेक्ट्रिक ई बस सेवा शुरू होने जा रही है। कल से PM ई बस सेवा के तहत बसों का ट्रायल रन शुरू हुआ, जो 5 दिनों तक चलेगा। इस दौरान बसों में आम यात्रियों को सफर की अनुमति नहीं होगी। ट्रायल सफल रहने पर अगस्त से इनका नियमित संचालन शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी के शासकीय श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल से 24 जुलाई तक 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। आगरमालवा कलेक्टर ने सभी विभागों के कर्मचारियों को कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे व्यापक जनजागरूकता अभियान नशे से दूरी है जरूरी 2.0 को इंदौर में ऐतिहासिक जनसहभागिता मिली है। और सावन माह के दौरान मंदसौर का पशुपतिनाथ मंदिर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहेगा। वहीं सोमवार, हरियाली अमावस्या और नागपंचमी पर गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। बैठक के बाद एनडीए सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।
3: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई लोग पकड़े गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
1: एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहली बार शामिल हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के साथ मजबूती से खड़ी है।
4: हर एक ने अपने तरीके से बात करनी है पर भारत एक इतना बड़ा विशाल देश है तो भारत के युवा समझदार युवा उनमें पूरा पोटेंशियल है, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो राष्ट्रहित में ना हो।
1: भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया।
5: हम अपने आप में मंगल भावना के साथ हम आगे बढ़ें, यह प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए संकल्पित होने का सभी अपने माननीय सांसदों को यह आग्रह और निर्देश दिया है। 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है तो हमें मंगल कामनाओं के साथ ही काम करना पड़ेगा।
1: संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई है। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर हंगामे के बीच संसद की अलग अलग समितियों के चुनाव के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदस्यों से अपनी सीटों पर लौटने और सदन को सुचारू रूप से चलने देने का आग्रह किया। इसके बावजूद विपक्षी सदस्य नीट तथा विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर नारेबाजी करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
6: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे आर सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
7: बारिश और खराब मौसम के बावजूद रेस्क्यू टीम फंसे हुए मजदूरों को सुरक्षित निकलने की पूरी कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि समरदंग में 7 किलोमीटर लंबी टनल के अंदर कम से कम 25 लोग फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगुले से बात की और हालात से निपटने के लिए हर तरह की मदद का भरोसा दिया। इस बीच जिला प्रशासन ने अब तक 7 शवों की पहचान कर ली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रखने के लिए जिला के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू जिलों में 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है।
8: किन्नौर जिला के करछम बांध और सिरमौर जिला में गिरी जटोन बांध से अतिरिक्त पानी छोड़ा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा इन नदियों के साथ लगते इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने व समय समय पर जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उधर किन्नौर जिला के शलखर और समदों में भूस्खलन और चट्टाने गिरने से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात बाधित हो गया है। वहीं लाहौल स्पीति जिला में भी जहालमा नाले में आई बाढ़ के कारण संपर्क सड़क बह जाने से यातायात बंद है। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में 16 सड़क संपर्क मार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हैं और चंबा जिला के लाहडू नूरपुर मुख्य सड़क में भी टिक्कर गलाधार में भारी भूस्खलन से मार्ग अवरुद्ध हुआ है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उत्तराखंड में बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका के कारण कल स्थगित की गई चार धाम यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
9: चारधाम यात्रा का संचालन जिला प्रशासन, पुलिस, एसटीआरएफ और संबंधित विभागों के समन्वय से किया जा रहा है। यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी की जा रही है और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रूपये से बढ़ाकर 1,500 रूपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय mshpcaravali@gmail.com पर ईमेल के माध्यम से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 231 अंक गिरकर 77,478 पर और निफ्टी 52 अंक गिरकर 24,186 पर आ गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया और वहां डॉक्टरों के साथ बैठक की। उन्होंने नीट UG 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए लोगों की स्थिति का भी जायजा लिया। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी दौरा किया और वहां भर्ती घायल प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 11 लोगों की मौत, कई लोग फंसे, बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और भारत ने एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में रूस के दूत को तलब किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। पहली फरमाइश शामिल कर रहे हैं तालुका बुरहानपुर ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, मुकाम पोस्ट भोकरी महाराष्ट्र से अरसद तड़वी, आरिस अरसलान यूनुस तड़वी की, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ मोहद जिला बुरहानपुर से मुशर्रफ खां तड़वी, जरीना तड़वी, मुबारक तड़वी, परवेज बिटिया रोजमीन और तैमूर तड़वी की, और साथ ही तड़वी परिवार के सदस्य विजय चौक इंद्राना से आजाद प्रसाद सोनी, अनमोल सोनी, अभिषेक चिनी, अमन सोनी, अक्षित सोनी, पार्थ सोनी और अंकिता, ज्योति और छाया सोनी की। जवाहरगंज जबलपुर से जिनेंद्र जैन, महेंद्र जैन, सत्येंद्र जैन और अरुण चौरसिया की। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना और निवान शर्मा की। आए दिन बहार के फिल्म का गीत आशा भोसले ने गाया है। आनंद बख्शी ने गीत लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

कार्यक्रम में ये अगला गीत सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ भाता पारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और समस्त

संगीता भावना और प्राची नेमा ने, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बीबी आरजू जाजोरिया ने।

बरसात की एक रात फिल्म का यह गीत था, लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने गाया था। आनंद बख्शी की शब्द रचना थी और संगीत रचना आर डी बर्मन की। सुनना पसंद किया था छत्तीसगढ़ बेमित्रा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा सारथी ने। मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। बीड़ शहर से प्रकाश पगारिया, पराग पगारिया, प्रदीप केशव पटेल, राम निवास अग्रवाल ने। रामचंद्र माखीजा काफिर, श्रीमती साविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, माही, पूजा छुटकी, शरद डोडवानी और पूरा माखीजा परिवार ये हमें भेजते हैं बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से। ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम ने। ये मिली जुली फरमाइशकर्ताओं के नाम है अगले गीत के साथ वालों के लिए भी। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर की। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर राही, सरिता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहाणकर, वैशाली गवहाणकर, श्वेता, सुमित गवहाणकर और कुमाली ध्वनि गवहाणकर परी की। बिलहरी बड़खेड़ा से संतोष ठाकुर, अवधेश दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बढ़ई, प्रश्न यादव, शेरब मुनीर, ग्राम पहरुआ से राम कुमार लोधी ने। अग्निपथ फिल्म का गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक ने गाया है। आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है।

0: फिल्म अग्निपथ के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। एक सूचना है आपके लिए, पुलिस आयुक्त नगरीय पुलिस भोपाल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जन सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग पूरी जिम्मेदारी और सावधानी के साथ करें। किसी भी प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलने वाली धार्मिक, सामाजिक, जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली पोस्ट, फोटो, वीडियो, ऑडियो या संदेश का प्रसारण, साझा, लाइक या कमेंट फॉरवर्ड ना करें। किसी भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी को बिना सत्यापन के प्रसारित करना कानूनन व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। सोशल मीडिया पर ऐसी किसी भी सामग्री का प्रचार प्रसार जिससे समाज में वैमनस्य, तनाव, भय या अशांति फैलने की संभावना हो, पूर्णतः प्रतिबंधित है। यदि किसी ग्रुप के एडमिन को इस प्रकार की सामग्री प्राप्त होती है तो उसे तत्काल हटाने एवं संबंधित सदस्य को ऐसा करने से रोकने की जिम्मेदारी भी होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति या समुदाय के विरुद्ध घृणा, हिंसा या भेदभाव फैलाने वाले संदेशों का भी प्रसारण नहीं किया जाएगा। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी है आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा अन्य प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक का मुद्दा पूरे देश की चिंता का विषय है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एनडीए के बैठक के बाद ये जानकारी दी। विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने यूसीसी विधेयक पर चर्चा कराई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, जिसे लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि श्री टंडन का जीवन सादगी, सेवा और संगठन के मूल्यों से भरा हुआ था, जो सभी के लिए प्रेरणादायक है। उज्जैन में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में IIT इंदौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय भविष्य की तकनीकी और उन्नत पदार्थ विज्ञान है। भोपाल में आज से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग और राज्य नीति आयोग के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक बड़ा आयोजन हुआ है। यहां 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले इंदौर पुलिस के नाम ही 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड दर्ज था। और प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने आज मुरैना, भिंड, दमोह और कटनी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर सभा समापन के पूर्व बता दें आपको सांध्यकालीन सभा के मुख्य आकर्षण। शाम 5:02 पर युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा। प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल केंद्र की होगी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:00। दिल्ली से विधानसभा समीक्षा का प्रसारण रात्रि 8:00 करेंगे। नहीं, इसे पुनः सुन ले। संसद समीक्षा रात्रि 8:00 दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। विधानसभा समीक्षा का प्रसारण रात्रि 8:30 पर करेंगे। कार्यक्रम सुर्खियों में रात्रि 8:15 पर। उर्दू प्रोग्राम कहकशा में महफिले समा का प्रसारण रात्रि 9:30 पर करेंगे। श्रोताओं, आपको पुनः याद दिला दें, रात्रि 8:00 संसद समीक्षा का प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम सुर्खियों में का प्रसारण होगा और विधानसभा समीक्षा का प्रसारण रात्रि 8:30 पर करेंगे। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर कार्यक्रम ग्राम सभा में संतरे की उन्नत उत्पादन तकनीक एवं बाहर नियंत्रण विषय पर डॉक्टर लाल सिंह से ली गई भेंटवार्ता हम प्रसारित करेंगे। ये थे मुख्य आकर्षण सांध्यकालीन सभा के प्रसारण के। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप और साथ ही वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। इस समय दोपहर के 3:02 होने को है। हमारा ये प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। शाम 5:00 अपने कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस बीच हमारा प्रसारण DTH पर जारी है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। तो दोस्तों, जैसा आप जानते ही हैं कि आज है मंगलवार का दिन, और मंगलवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं आज का खास सेगमेंट हमारे शहर। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मार्गेशा, और आज हम करेंगे कई अलग अलग विषयों पर चर्चा, सुनेंगे कुछ बड़े ही अच्छे अच्छे गीत। और जैसा आप जानते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे पूछते हैं दो प्रश्न, और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कार्यक्रम के अंत में बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज का पहला प्रश्न है कि किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। मैं एक बार फिर से प्रश्न दोहरा देती हूं। पहला प्रश्न है कि किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, और दूसरा प्रश्न है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आपने सभी ने नाम सुना ही होगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, इसमें सबसे ज्यादा मुख्य रूप से कौन सा जीव जो है यहाँ पर संरक्षित रखा गया, और सबसे ज्यादा लोग इसी जीव को देखने के लिए वहां पहुंचते भी हैं। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ी सी मौसम की बातचीत करें तो मौसम इंदौर में अब काफी बारिश होने लग गई है, मौसम ठंडक भी आ गई है, और ऐसे मौसम में अगर शाम हो रही हो तो और भी ज्यादा ये मौसम सुहाना लगने लगता है। साथ ही इसके साथ हमारे हमारा कोई अपना हो, साथ ही गरम गरम चाय हो और पकौड़ी हो, ओहो तो उसकी बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी हम इसी बड़े ही सुहाने से मूड के साथ करते हैं, और सुनते हैं ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: तो दोस्तों, जैसा मंगलवार के दिन हम बात करते हैं एक खास शहर की, तो आज के हमारे शहर सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के शहर रीवा की। रीवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। ये इलाहाबाद से दक्षिण में स्थित प्रमुख नगर है। ये शहर मध्य प्रदेश के विंध्य पठार के एक हिस्से में बसा हुआ है और इसके आसपास टोंस और उसकी सहायक नदियां भी काफी देखने को मिलती हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये 6,240 वर्ग किलोमीटर है। रीवा पहले एक बहुत बड़ी रियासत

हुआ करती थी दोस्तों। यहाँ के निवासियों में गोंड एवं कोल जाति के लोग भी शामिल हैं, जो पहाड़ी भागों में रहते हैं। जिले में जंगलों की अधिकता है, जिनसे लाख लकड़ी और जो पशु पाए जाते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा। और आपको जानकर बहुत हैरानी होगी दोस्तों कि रीवा के जंगलों में ही सफेद बाघ की नस्ल पाई जाती है, और इसीलिए इसे सफेद बाघों की धरती भी कहा जाता है। और जैसे मैंने कहा कि इसके आसपास नदियां और जलप्रपात काफी सारे हैं, इसीलिए इसे जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम इसके इतिहास की बात करें तो रीवा रियासत की स्थापना लगभग 1400 ईस्वी में हुई थी, और इसे स्थापित किया था बघेल राजपूतों द्वारा। और मुगल सम्राट अकबर द्वारा बांधवगढ़ नगर को जब ध्वस्त किया गया, उसके बाद रीवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक शहर के रूप में इसे देखा जाने लग गया। और रीवा रियासत जो है, इसे राजधानी के रूप में भी बनाया गया था। और जब ब्रिटिश राज्य यहाँ पर आया तो ब्रिटिशों के राज्य में भी रीवा राजधानी बना, एक ब्रिटिश एजेंसी की एक राजधानी बना, और मध्य प्रदेश के एक बड़े शहरों में भी इसका नाम जानने के लिए आने लगा। और आज की तारीख में बात करें तो रीवा मध्य प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, और ये उत्तर प्रदेश और इसके आसपास होने के कारण यहाँ से कई बड़े बड़े हाईवेज भी निकलते हैं, और कई बार आपको ये उत्तर प्रदेश में जब आप ट्रेवल करेंगे तो आपको रीवा से होते हुए गुजरना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये था रीवा का इतिहास और ज्योग्राफी के बारे में हमने थोड़ी सी इसकी बात की। अब रीवा में कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट हैं, यहाँ पर कैसा खान पान होता है, ये हम जानेंगे गीत के उस पार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: दोस्तों, हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के शहर रीवा की। रीवा अपने गौरवशाली इतिहास, शानदार किलों और प्राकृतिक जलप्रपातों के लिए काफी प्रसिद्ध है, तो हम इसके अब टूरिस्ट स्पॉट की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है रीवा का किला यानी रीवा फोर्ट। शहर के बीचों बीच स्थित ये किला बीहड़ और टोंस नदी के संगम पर बना है। इसके अंदर दोस्तों कई प्राचीन मंदिर भी मौजूद है और इसी मंदिर के अंदर हमें दिखने को मिलता है बघेल संग्रहालय। किले के अंदर ही स्थित इस संग्रहालय में रीवा राजघरानों की प्राचीन वस्तुएं, हथियार और दुनिया के सबसे पहले सफेद बाघ जिसका नाम मोहन था उसकी खाल को भी सुरक्षित रखा गया है। इसके बाद आता है रानी तालाब। ये रीवा के सबसे पुराने और पवित्र तालाबों में से एक माना जाता है, जिसके किनारे एक प्राचीन मंदिर भी स्थित है। फिर आता है गोविंदगढ़ पैलेस। रीवा के महाराजाओं की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था, जो ऐतिहासिक महलों और एक बड़ी झील के लिए भी जाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि रीवा का जो शहर है ये जलप्रपातों का भी शहर माना जाता है, तो मॉनसून में बहुटी और चचई जलप्रपात की खूबसूरती दोस्तों यहाँ देखने लायक होती है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि मॉनसून का ये जो सीजन अभी चल रहा है ये रीवा जाने के लिए एकदम परफेक्ट होगा। आपको बड़े ही खूबसूरत से वाटरफॉल्स और लेक्स यहाँ देखने को मिल सकती हैं। फिर दोस्तों, जैसे हमने कहा कि रीवा जो है इसके जंगलों में व्हाइट टाइगर्स काफी पाए जाते हैं, तो रीवा से कुछ 15 किलोमीटर दूर स्थित है व्हाइट टाइगर सफारी। मुकुंदपुर में ये जो सफारी स्थित है ये दुनिया की पहली ऐसी सफारी है दोस्तों जहां सफेद बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है ना मजे की बात। और अगर हम रीवा के खान पान की बात करें तो यहाँ की पारंपरिक थाली में रसाज की कड़ी यानी चने की दाल के पकौड़ों से बनी कड़ी और रिकमच की सब्जी यहाँ पर जरूर खाने लायक मानी जाती है। तो अगर हम आप कोई भी रीवा जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये जो सीजन है ये एकदम परफेक्ट होगा, क्योंकि इसमें आप जलप्रपात देख सकते हैं यानी वॉटरफॉल्स देख सकते हैं, लेक्स देख सकते हैं जो इसकी हिस्टोरिक प्लेसेस है जैसे फोर्ट्स हो गए, म्यूजियम्स हो गए और पैलेसेस हो गए, ये देख सकते हैं और खाने का मजा तो उठा ही सकते हैं। और हाँ, अगर आप रीवा जा रहे हैं तो आप व्हाइट टाइगर सफारी देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आप भी रीवा को अपने मध्य प्रदेश की टूरिस्ट लिस्ट में ऐड कर लीजिए और यहाँ पर आप बिल्कुल जाइएगा और हमें बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चलिए फिर हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, क्या आपने आजकल एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की है? हमारे आसपास इतने सारे दोस्त, क्लासमेट्स, यहाँ तक कि अगर कोई नया कोई जिससे हम मिल रहे हैं उससे भी सबको ना एक दिक्कत बहुत आ रही है, और वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। मतलब कल ही हमने जो बात की थी आज उसे भूल जाना, एक हफ्ते पहले किसी का बर्थडे था, किसी की एनिवर्सरी थी, वो याद नहीं रहना। या ये सिर्फ भूलने की आदत नहीं है दोस्तों, ये हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए ना एक वार्निंग साइन है। और मजे की बात ये है कि लोग इसे मजाक में ले लेते हैं, जैसे अरे मैं तो वैसे ही भुलक्कड़ हूँ, या मुझे बचपन से ही याददाश्त कमजोर है। लेकिन असल में ये हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई एक बड़ी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा कि देर रात तक फोन पर स्क्रोलिंग, गेम्स खेलना, OTT बिंज वॉच करना, या ये सब करने से ना हम सुबह एकदम थकान में उठते हैं, इसलिए हमारा क्लासेस मीटिंग में मन नहीं लगता। और ये सारी चीजें मिलकर हमारे दिमाग पर असर डालती हैं, जिसके कारण हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी इसके नुकसान भी हमें होने लगते हैं। और इससे दोस्तों मल्टीटास्किंग भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह हम उसे देख ही नहीं पाते। देखा जाए तो हमारे दिमाग को एक समय में एक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन हम एक साथ तीन चार काम करने की कोशिश करते रहते हैं, फोन पर चैट, लैपटॉप पर मेल और TV पर सीरीज। इससे दिमाग के न्यूरॉन्स ओवरलोड हो जाते हैं और छोटी छोटी बातें भी याद रहती नहीं है और दिमाग से निकल जाती है। और दोस्तों, इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है हमारी स्लीप साइकिल। शॉर्ट टर्म मेमोरी का सीधा कनेक्शन हमारी स्लीप क्वालिटी से है। जब हम प्रॉपर डीप स्लीप नहीं ले पाते हैं तो दिन में जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर हुई है वो कंसोलिडेट हो जाती है, और नतीजा अगले दिन जब हम उठते हैं तो जो हमने एक दिन पहले सीखा था वो हम भूल जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों, डाइट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बना हुआ है। आजकल हम फास्ट फूड खाते हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और न्यूट्रिएंट्स

ना होने के कारण इसका सीधा असर हमारे दिमाग की हेल्थ पे पड़ता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी दोस्तों, पानी कम पीना। हमारी जनरेशन में ना पानी कम पीने की आदत डल चुकी है, वो बहुत गलत है। पानी पीना हमारे दिमाग को रिफ्रेश करके रखता है और इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें भूलते रहते हैं, या आपको जो बताया गया वो आप एक दिन के अंदर ही भूल जाते हैं, आपको सीखने में दिक्कत आ रही है, तो आपको भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसी समस्या है। और इसके लिए बड़े ही आसानी से आप इसे ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आप छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो आप उसे लिख करके रख लें। इससे ये होगा कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फिट हो जाएगा कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो एटलीस्ट लिखी हुई है। इसी के साथ दोस्तों, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। डिजिटल डिटॉक्स और प्रॉपर स्लीप को प्रमोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपना स्लीप स्केड्यूल तय कर लीजिए कि मुझे 8 घंटे की नींद लेनी है, मतलब लेनी है। उसमें आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और अगर आप ऐसे छोटे छोटे हैबिट्स अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे, जैसे कि डाइट हो गया, मेडिटेशन हो गया, या फिर डिजिटल डिटॉक्स करना, ये छोटी छोटी हैबिट्स कहीं ना कहीं इस बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन है। तो अपनी ज़िंदगी में इन हैबिट्स को अपनाइए। और अगर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे अच्छी चीज़ बात दोस्तों ये होगी कि आप जल्द से जल्द किसी साइकेट्रिस्ट से मिल लीजिए या साइकोलॉजिस्ट से मिल लीजिए, क्योंकि ये आदत हमें ऐसा लगता है कि बहुत छोटी है, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं बड़ा होता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको काम आएगी और आप भी अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की जो दिक्कत है इस पर काम करना शुरू करेंगे। तो हम भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, आज का यूथ सिर्फ अपने ड्रीम्स, गोल्स और एम्बिशन से नहीं बन रहा, बल्कि सोसाइटी की सोच, एक्सपेक्टेशंस और रिएक्शन से भी डीपली शेप हो रहा है, और यही इन्फ्लुएंस उसके माइंडसेट को सीधे सीधे मोल्ड करता है। घर का माहौल, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, रिलेटिव्स की बातें, फ्रेंड्स का सर्कल और सोशल नॉर्म्स, ये सब मिलकर यूथ के सोचने के तरीके को डायरेक्ट करते हैं। कई बार सोसाइटी सक्सेस को एक फिक्स डेफिनेशन में बांध देती है, जैसे कि अच्छे नंबर्स, हाई पेइंग जॉब्स और सोशल स्टेटस, जिससे यूथ पर अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड होने लगता है, और इसी प्रेशर में यूथ अपनी क्रिएटिविटी, अपने पैशंस और अपनी इंडिविजुअलिटी को साइड में रख देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो अलग सोचेगा तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सोसाइटी रोल मॉडल्स भी तय करती है दोस्तों, कि कौन सक्सेसफुल है, किस तरह की लाइफ आइडियल मानी जानी चाहिए और किस प्रोफेशन को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और यूथ अननोइंगली खुद को तुलना इसी के कारण अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है, जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर हो जाता है और सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है। सोशल मीडिया और इस सोशल इन्फ्लुएंस को भी अगर हम ध्यान में देखा जाए तो ये हमारी जिंदगी में इतना इंटेंस हो चुका है, जहां पर परफेक्ट लाइव्स, फिल्टर सक्सेस और कॉन्स्टेंट कंपेरिजन हमें हर जगह देखने को मिलता है। इस वर्चुअल वर्ल्ड और रियल लाइफ के डिफरेंस को समझ पाना यूथ के लिए मुश्किल सा हो गया है दोस्तों, और कई बार इसी कारण से मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण भी यही बन रहा है। लेकिन इस सब में यूथ ने भी एक नई चीज ढूंढ निकाली है दोस्तों, वो है कि अपने आसपास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना। ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट्स दोस्त हो सकते हैं, हमारे खुद के माँ बाप भी हो सकते हैं, या हमारे कोई मेंटर्स भी हो सकते हैं, और यही सर्कल हमारी माइंडसेट को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने में हमें हेल्प करता है। दोस्तों, आज का यूथ जो है वो जेंडर नॉर्म्स, करियर के स्टीरियोटाइप्स, इन सब को क्वेश्चन करता है, हर किसी की चॉइस को डिफाइन करता है, और जितने भी नॉर्म सोसाइटी ने सालों से बना रखे हैं उसे तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर हम इसे समराइज करें तो यूथ की सोच अब पूरी तरह से ओपन हो चुकी है, उनका माइंडसेट आगे को लेकर सोचता है और वो किसी भी बंधन में नहीं बनना चाहता। यूथ ने अपनी सक्सेस को एक सिर्फ एक डेफिनेशन में नहीं रखा हुआ है दोस्तों, यूथ के लिए सक्सेस का मतलब है मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ, और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट अपनी खुद की खुशी। वो अपनी खुशी के लिए अब काम करता है, और दोस्तों ये जो रिएक्शन है, ये जो बदलाव है, ये बहुत जरूरी भी था और पॉजिटिव भी है, क्योंकि इसी के कारण हमारी पूरी सोसाइटी में क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी को इम्पोर्टेंस मिलेगी, और जो स्टीरियोटाइप्स इतने सालों से चलते हुए आ रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों ने सफर भी किया है, वो कहीं ना कहीं टूटते जा रहे हैं दोस्तों। तो आपको क्या लगता है कि यूथ ने ये जो सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज किया है और सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ा है, ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना जरूरी है, और आप अपनी जिंदगी में ऐसे कुछ लोगों को देख रहे होंगे जिन्होंने इन स्टीरियोटाइप्स को तोड़कर अपनी जिंदगी की एक नई राह बनाई है। तो दोस्तों, आप भी जरा सोचिए इस विषय पर। तब तक हम सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, अब एक ऐसे पहलू की बात करते हैं जो हम सबकी लाइफ में, खासकर युवा और जो वर्किंग है और कॉलेज में है, उनकी ज़िंदगी में तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखता है, और वो है प्रेजेंटेशन देना। हाँ, प्रेजेंटेशन देना मतलब कई लोगों को लगता है कि सिर्फ स्लाइड्स पढ़ना होता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कम्युनिकेशन का आर्ट है, और इसमें आई कॉन्टैक्ट सबसे पावरफुल टूल है। जब स्पीकर ऑडियंस की आंखों में देखकर

में सिर्फ स्क्रीन या नोट्स देखते रहते हैं, जिससे आपका जो मैसेज है वो वीक होने लगता है, और इसी कारण से आई कांटेक्ट बनाए रखना और बार बार कुछ ना कुछ हैंड जेस्टर्स या अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे रखना ताकि सेशन जो है वो इंटरैक्टिव बने और एक मोनोलॉग जैसा फील बिल्कुल भी ना हो। जब आप ऑडियंस को देखते हैं दोस्तों, तो आपको उनके रिएक्शंस भी समझ आते हैं कि उनको इंटरेस्ट आ रहा है या उन्हें बोर लग रहा है। मतलब आप ये भी जान सकेंगे कि जो आप बातें कर रहे हैं उसके लिए ये ऑडियंस अच्छी है भी या नहीं है, और इसी के हिसाब से आप अपनी टोन, स्पीड और एग्जांपल्स को चेंज भी कर सकते हैं। बीच बीच में आप कुछ ऐसे इंटरैक्शंस भी कर सकते हैं जिससे सबका ध्यान फिर से टॉपिक की ओर आ जाए, और इसे ही स्मार्ट प्रेजेंटिंग भी कहते हैं। और आई कॉन्टैक्ट से दोस्तों एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है, और वो है ट्रस्ट बिल्ड होना, खास करके बिजनेसेस में और अकेडमिक्स में और इंटरव्यूज में भी। जब आप इंटरव्यू की आंखों में आंखें देखकर अपने बारे में बात करते हैं या जो आपसे सवाल पूछा गया है उसके बारे में बात करते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि आप काफी कॉन्फिडेंट हैं और आप किसी से डरते भी नहीं हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रेजेंटेशन की ये जो स्किल्स हैं और ये जो टिप्स हैं आई कॉन्टैक्ट की और जेस्टर्स की, ये आपको काम आएंगी। और इसी के साथ आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

तो दोस्तों, ये था आज का युवाणी कार्यक्रम। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो अब समय आ गया है कि हमने जो दो प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर आपको बता दें। पहला प्रश्न था कि किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, और इसका उत्तर है वीनस। और दूसरा प्रश्न था कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसका उत्तर है वन हॉर्न राइनोसेरस। तो मुझे उम्मीद है आपके दोनों उत्तर सही होंगे। और इसी के साथ दोस्तों, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जल्द ही आपसे मुलाकात।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे इस विज्ञापन के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: गुरु फिल्म का गीत सुनिए, एआर रहमान, चिन्मयी, मुर्तजा और कादिर की आवाज़ में। बोल गुलजार के हैं, धुन बनाई है एआर रहमान ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा,
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।
4: उस्ताद राशिद खान की आवाज में सुनिए फिल्म जब वी मेट का गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने, धुन बनाई है संदेश शांडिल ने।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा,
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।
0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है।
3: बहुत सुंदर विचार आपने भेजा, धन्यवाद। हम इसे एक पर्यावरण संदेश भी कह सकते हैं
2: जी।
3: आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य जिला बालौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: और रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू जी।
2: जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश और उत्तर भेजने के लिए।
3: स्वागत है आप सबका हमारी मनोरंजक ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विभिन्न मेलों की।
2: जी हाँ श्रोताओ, कुंभ और पुष्कर जैसे मेलों के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं
3: जी,
2: लेकिन आज हम लेकर आए हैं जानकारी कुछ ऐसे मेलों और उत्सवों की जो लोक संज्ञान में कम हैं, लेकिन उनका सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये मेले अपनी अनोखी परंपराओं के कारण बेहद रोचक हैं
2: जी।
3: तो विमलेश जी करते हैं शुरुआत, जरा श्रोताओं को ये तो बताएं कि आज हम किस मेले की चर्चा करेंगे।
2: अजीत जी, आज हम चर्चा करेंगे जॉन बील मेले की।
3: जॉन बील मेला
2: जी,
3: बड़ा अपरिचित सा नाम लगता है। हमारे बहुत सारे श्रोता मित्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद ये नाम सुना भी ना हो
2: जी।
3: तो अब ये तो बताइए कि ये मेला कहाँ लगता है।
2: अजीत जी, ये भी बताती हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ आपसे और हमारे श्रोताओं से भी
3: जी। पूछिए पूछिए।
2: ये बताइए कि जब हम कुछ खरीदने जाते हैं या खरीदारी का माध्यम क्या होता है।
3: ये भी कोई पूछने की बात है। हम मुद्रा या सरल शब्दों में कह लीजिए कि पैसों या रुपयों से खरीदते हैं।
2: बिल्कुल सही, लेकिन अब ये बताइए कि जब प्राचीन काल में मुद्रा नहीं थी तो किस तरह लेन देन करते थे, क्या लेन देन होता ही नहीं था, बताइए बताइए।
3: विमलेश जी, लेन देन तो होता था, लेकिन जब मुद्रा नहीं थी तो एक तरीका था लेन देन का, लेकिन क्या तरीका था आप बताइए ना।
2: अजीत जी, वो तरीका था वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम, यानी किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना या देना, ये बहुत प्राचीन तरीका था
3: जी। बिल्कुल सही, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हम आज के विषय से भटक गए हैं। कहाँ हम बात कर रहे थे मेले की और कहाँ आगे वस्तु विनिमय पर, अर्थशास्त्र पर।
2: अरे नहीं अजीत जी, हम बिल्कुल विषय से नहीं भटके हैं। यही तो हम श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि आज भी उत्तर पूर्वी राज्य असम में एक ऐसा मेला लगता है जिसे जॉन बील मेला कहते हैं। यहाँ आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा लेन देन होता है। लोग बिना पैसे के एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं।
3: अरे वाह, आज की डिजिटल करेंसी के युग में भी वस्तु विनिमय प्रणाली का जीवित रहना सचमुच बड़ी अनूठी बात है
2: जी।
3: विमलेश जी, जरा जॉन बील मेले के बारे में श्रोताओं को विस्तार से बताइए।
2: जी अजीत जी, ये मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। अब आपकी बारी
3: जी। श्रोताओं, इस मेले में असम और मेघालय की टिवा जनजाति सहित कार्बी आंग्लोंग के जनजातीय या आदिवासी समुदाय भाग लेते हैं।
2: जी हाँ श्रोताओं, पहाड़ों की जनजातियाँ अदरक, हल्दी, शहद और बांस के उत्पाद और जड़ी बूटियाँ और अचार इत्यादि लेकर आते हैं,
3: जबकि मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी लोग चावल, मछली, पीठा और अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते हैं, और इन वस्तुओं का आपस में सीधा आदान प्रदान किया जाता है
2: जी।
3: तो अब बात करते हैं विमलेश जी इसके इतिहास की। तो अब आपकी बारी।
2: श्रोताओ, माना जाता है कि जॉन बील मेले की शुरुआत 15वीं शताब्दी में हुई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य व्यापार या लेन देन करना नहीं था,

0: इसमें उत्तर पूर्व की पहाड़ी और मैदानी जनजातियों के मुखिया लोग मित्रता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपने क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए जमा होते थे।
1: लेकिन जब लोगों ने देखा कि उनके मुखिया लोग मोरी गांव में जमा होते हैं, तो धीरे धीरे वे अपने उत्पाद भी वहां लाने लगे।
0: जी, फिर वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगे, जिनमें आदिवासी गीत, संगीत, नृत्य और विशेषकर मोरी गांव की बड़ी झील में मछली पकड़ने की प्रतियोगिता शुरू हुई।
1: बता दें श्रोताओं कि इस मेले का आयोजन तिवा जनजाति के द्वारा किया जाता है। जनजाति के तत्कालीन राजा और आज की तिथि में मुखिया के संरक्षण में ये मेला आयोजित होता है। मेले के अंतिम दिन एक शानदार रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो महाभोज के साथ समाप्त होता है।
0: अब ये विश्व का अकेला मेला है जिसमें अभी भी मुद्रा पूर्व परंपरा यानी वस्तु विनिमय प्रणाली को जीवित रखा गया है। ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक मुद्रा वहाँ नहीं चलती, लेकिन इस मेले का अनूठापन इसकी वस्तु विनिमय प्रणाली ही है।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अनूठे जोनविल मेले की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: जोनविल मेला कहाँ और कब मनाया जाता है?
1: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए श्रोताओं सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है सांकेन।
0: हिंदी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत के सुरम्य राज्य अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों द्वारा मनाए जाने वाले बौद्ध नववर्ष के त्योहार सांकेन के बारे में मनोरंजक ढंग से जानकारी देता है।
1: सांकेन।
2: आज बल्लरी बहुत उत्साहित है, क्यों? हाँ, ये जानते हैं।
3: यमन भैया, यमन भैया, कहाँ हो भैया?
4: यहीं दूसरे कमरे में। क्या हुआ,
3: चिल्ला क्यों रही हो? बड़ी खुश नजर आ रही हो। भैया, खुश होने की बात तो है ही, पता है पापा का ईमेल आया है।
4: अच्छा, क्या लिखा है?
3: उन्होंने हम सबको अरुणाचल प्रदेश बुलाया है, कितना मजा आएगा। माँ को बताती हूँ। माँ, माँ।
5: साथियों, वल्लरी के पिता वन विभाग में अधिकारी हैं। पिछले दिनों उनका स्थानांतरण अरुणाचल प्रदेश के चौखाम में हो गया था। उन्होंने वहाँ जाकर अपना कार्यभार संभाला और सब कुछ नियोजित करने के बाद अपने परिवार को थोड़े समय के लिए चौखाम बुलाया है। टिकट भी भेज दिए हैं।
2: वल्लरी, यमन और उनकी माताजी पूरे जोश खरोश के साथ चौखाम जाने की तैयारी कर रहे हैं।
3: भैया, मैं तो ये कपड़े लेके जाऊंगी।
4: मैं भी कुछ गर्म कपड़े रख लेता हूँ।
5: अरे बच्चों, वहाँ इतने अधिक कपड़ों की जरूरत नहीं होगी। कुछ रख लो। चौखाम का मौसम अप्रैल मई महीने में सुखद और हल्का गर्म होता है। हाँ, कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है। तो चलो बच्चों, जल्दी से तैयारी पक्की कर लो, कल हमारी उड़ान है।
2: नई दिल्ली से उन्होंने भरी उड़ान और पहुँचे डिब्रूगढ़।
5: उन्होंने डिब्रूगढ़ से टैक्सी ली और पहुँच गए चौखाम। टैक्सी स्टैंड पर पिताजी ने सबका स्वागत किया।
2: अरे बेटा वल्लरी, यमन, आजा आजा आजा आजा।
3: नमस्ते पापा।
2: नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे हो बेटा आप लोग?
3: ठीक है।
2: और कैसा सफर रहा दिल्ली से डिब्रूगढ़ तक का?
3: बड़ा मजा आया।
2: चलो अब यहाँ और मजा आएगा। चलो सामान उठाओ अपना, टैक्सी पे चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चौखाम पूर्वोत्तर भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो अपनी संस्कृति, बौद्ध परंपरा और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये असम राज्य की सीमा पर है।
5: कहां दिल्ली की भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें और बसें, लोगों की लंबी लंबी कतारें, और कहां चौखाम का खुला वातावरण। जिधर देखो

0: हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। यहाँ के लोग बहुत विनम्र और हंसमुख हैं।
1: शाम होने में अभी थोड़ा समय था। पूर्वोत्तर में वैसे ही सूरज जल्दी ढल जाता है। वल्लरी के पिताजी के एक मित्र चाउतान जी ने उन्हें सपरिवार अपने घर बुलाया था। उनकी माँ अपनी एक मित्र श्रीमती चौहान से मिलने चली गई थी। जब वे घर पहुँचे तो चाउतान जी ने उनका स्वागत किया। अरे भाई चाउतान जी घर पर हैं क्या?
2: अरे आइए आइए वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते।
3: नमस्ते अंकल।
2: नमस्ते। अरे वाह, आप यमन और आप वल्लरी है ना?
1: बिल्कुल ठीक पहचाना।
2: आइए, स्वागत है आप सबका।
1: धन्यवाद।
2: आपके परिवार को देखकर हमको बहुत अच्छा लगा।
1: अरे भाई हमें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा।
3: अंकल हमारा यहाँ आने का बहुत मन था। बड़ी सुंदर जगह है।
2: थैंक यू।
4: हमारा मन खुश हो गया यहाँ आकर।
2: ओहो वर्मा जी, मैं आपसे कहता था ना
1: जी,
2: एक बार परिवार को यहाँ बुला लीजिए, जाने का मन नहीं करेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा।
2: अच्छा तो पहले थोड़ा जल पान कर लीजिए, मैं कुछ लेकर आता हूँ।
1: अरे
2: तुम लोग बहुत अच्छे समय पर आए हो, आज हमारा सांखकेन का पर्व जो है।
1: अरे वाह, फिर तो बड़ा मजा आएगा।
3: अच्छा तभी मैं सोच रही थी कि आज इतनी चहल पहल क्यों है।
1: चौतान जी, मैं भी तो यहाँ नया आई हूँ। सांकेन पर्व के बारे में कुछ और बताइए ना।
2: अरे बताता हूँ वर्मा जी, बताता हूँ, पहले आप लोग नाश्ता तो कीजिए।
4: वाह वाह, कितने स्वादिष्ट है अंकल। ये पकवान तो हमारे लिए बिल्कुल नए है। ये किन चीजों से बने हैं?
2: बेटा ये जो आप मिठाइयाँ देख रहे हो ना, ये हैं चावल की मिठाइयाँ। और ये पकौड़े, ये हैं बैम्बू शूट्स के पकौड़े। और ये है भाप में पकाई हुई सब्जियों की करी। और ये जो है, ये है अरुणाचल की खास चाय। ये सांकेन त्योहार के विशेष पकवान है।
1: अरे वाह वाह वाह, भाई मैं तो चाय पीऊंगा।
3: यह तो बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया।
2: थैंक यू।
1: अरे भाई चौतान जी, आप तो हमें सांकेन त्योहार के बारे में बताने वाले थे।
2: हाँ हाँ वर्मा जी, सांकेन बौद्ध नया साल है जो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच मनाया जाता है।
1: अच्छा
3: अंकल, क्या क्या होता है इस उत्सव में?
2: बेटा इस उत्सव को ना जल उत्सव भी कहते हैं।
1: जल उत्सव क्यों?
2: वो इसलिए कि आज के दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं को पवित्र जल से नहलाया जाता है।
1: अच्छा।
2: इस दिन हम लोग अपने घरों को खूब सजाते हैं, जैसा कि आप इस घर में भी देख रहे हो।
1: हाँ।
2: और हम लोग नए कपड़े भी पहनते हैं।
1: जी।
4: अरे ये तो बहुत बड़ी शोभा यात्रा है, कितनी भीड़ है।
2: हाँ बेटा, ये शोभा यात्रा पास के बौद्ध विहार जा रही है।
3: तो हम भी चले?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो आ जाओ।
3: चलो चलो चलो।
0: थोड़ी देर में शोभा यात्रा बौद्ध विहार के पास पहुँची। वहाँ की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियाँ लगाई गयी थी और खोस खोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे।
1: बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़ते हुए मूर्तियों को पालकियों से उतारा और उन्हें विहार में रख दिया और उन पर जल चढ़ाने लगे। हंसी खुशी के इस वातावरण में वल्लरी ने देखा कि लोग एक दूसरे पर बाल्टियां भर भर कर पानी डाल रहे हैं।
0: वे एक दूसरे के चेहरों पर चावल का आटा भी लगा रहे हैं। वल्लरी को होली की याद आ गई। उसने चाउतान जी से कहा,
3: अंकल लगता है हम लोग होली का त्योहार मना रहे हैं।
1: इतने में किसी ने चाउतान जी, वर्मा जी और यमन पर एक बाल्टी पानी उंडेल दिया।
2: अरे।
0: फिर तो लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे और सांकेन मनाते रहे। चाउतान अंकल ने बताया कि सांकेन 3 दिनों तक इसी तरह मनाया जाता है।
2: बच्चों, तीसरे दिन बौद्ध भिक्षु इन मूर्ति

0: को पालकियों में रखकर बौद्ध विहार ले जाएंगे।
1: अच्छा।
0: वहाँ वो मंत्र पढ़ पढ़कर इन मूर्तियों को इनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर देंगे।
1: जी अंकल।
0: गांव के लोग तीसरे दिन बौद्ध विहार जाएंगे और बौद्ध भिक्षु उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहेंगे, खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी। क्या बोलेंगे?
2: खेती फले फूले तुम्हारी, ना हो तुम्हें कोई बीमारी।
0: हाँ, और फिर कहेंगे, हिलमिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
2: हिलमिल कर सब नाचें गाएं, नए साल में खुशी मनाएं।
3: उत्सव समाप्त हो गया था। वल्लरी, यमन और उनके पिताजी घर वापस जा रहे थे। बच्चे सोच रहे थे, कितना सुंदर है हमारा देश। तरह तरह के त्योहार, भाषाएं, संस्कृतियां और लोग, सचमुच विविधताओं का संगम है हमारा भारत।
4: अभी आपने सुनी कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति। अब आपके लिए कुछ करने को। पूर्वोत्तर भारत में मनाए जाने वाले अन्य जनजातीय त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। ये पता कीजिए कि सांगकेन मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, और साथ ही साथ सांगकेन त्योहार पर चावल से बने पकवान एवं मिठाइयों के नाम भी मालूम कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज और राजेश काम्बोज, बाल कलाकार वान्या और सोहम, आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण अरशद अहमद। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सांगकेन। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, और अगला कार्यक्रम है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर।
5: देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये गीत है, जिसे भारत के स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आम जनता द्वारा जलूसों में गाया जाता था। इस गीत के द्वारा देश के करोड़ों लोगों को आजादी की लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरणा मिली।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। जी हाँ श्रोताओ, ये गीत आज भी हमें जीवन के प्रति एक नए उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है।

0: जी हाँ, जन जन होगा अब साक्षर उल्लास के साथ। आइए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के इस अभियान में बटाएं हाथ उल्लास के साथ। उल्लास भारत सरकार की एक अनूठी पहल।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल।
2: ये कार्यक्रम बच्चों को सुंदर गीत और संगीत के माध्यम से रोचक गतिविधि कराता है। कार्यक्रम में बच्चों को व्यायाम के महत्व से भी खेल खेल में परिचित कराया गया है और विनम्र व्यवहार का महत्व भी समझाया गया है।
3: क्लैप एंड स्माइल।
4: हेलो फ्रेंड्स।
5: हेलो।
4: आई नो यू डोंट वॉन्ट टू बी सैड। इवन आई डोंट वॉन्ट यू टू बी सैड। So, we will sing the happy song again, but with a difference.

0: clap and smile.
1: Friends, you were just listening to this song. We hope you enjoyed it.
2: Concept and coordination by Dr. R. Meghanathan. Sung by Neha and Children. Recorded by Buddy Langlingdo. Produced by Ajit Horo. This song is presented to you by CIET-NCERT, New Delhi, India.
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम क्लैप एंड स्माइल. और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अब अजीत,
4: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
3: कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना
4: और मंजू जी के साथ फिमलेश को आज्ञा दीजिए.
3: नमस्कार.
5: उमंग उमंग उमंग उमंग.
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग. आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है.

0: पैर की। अब इतना पानी कहाँ कि पानी के साथ खेला जाए।
1: पानी के छींटे व्यर्थ में ना उड़ाएं।
0: पानी का उपयोग सजगता के साथ करें।
1: ब्रश करते समय, दाढ़ी बनाते समय नल खुला न रखें।
0: सीधे नल के नीचे बर्तन न धोएं।
1: कपड़े धोते समय जमा पानी का ही उपयोग करें।
0: शावर के बजाय बाल्टी के पानी से नहाएं।
1: सब्जी फल धुले और पोछा लगे पानी को गमले में डालें।
0: जितनी प्यास हो ग्लास में उतना पानी ही लें।
1: अपने वाहन को पाइप से न धोएं।
0: शौचालय में फ्लश के बजाय बाल्टी के पानी का प्रयोग करें।
1: घर के टपकते नल को तुरंत ठीक करवाएं।
0: सार्वजनिक नल को बहता देख आगे न बढ़ जाएं।
1: उसे बंद कर अपना दायित्व निभाएं।
2: कभी कभी बातें तेरी अच्छी लगे।
1: कभी कभी नहीं, रोज ही रखें इन बातों का ध्यान।
0: समय है पानी बचाने का,
1: पानी का मोल समझने और समझाने का।
0: पानी बचाएं, भविष्य सजाएं।
3: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। सुगम संगीत में पेश है श्रुति साडोलीकर का गाया ये भजन।

0: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित हो रहा है शाम 6 बजे।
1: लीजिए सुनिए एक और भजन, कलाकार हैं श्रुति साडोलीकर।

सुगम संगीत में आज आप सुन रहे थे श्रुति सांडोलीकर के गाए भजन। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। लोक संगीत में प्रस्तुत है गीता पराग और साथियों के गाए मालवी लोकगीत।

लोक संगीत में आज आप सुन रहे हैं गीता पराग और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। लीजिए प्रस्तुत है एक और मालवी लोकगीत। कलाकार हैं गीता पराग और साथी।

0: लोक संगीत में आज आप सुन रहे थे गीता पराग और साथियों के गाए मालवी लोकगीत। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
2: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
1: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
2: अरे काहे का मजा,
1: क्यों, क्या हुआ?
2: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
1: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
2: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
1: ये हुई ना बात।
0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। समाचार कुछ ही पल।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की

0: कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगी। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी, महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड एनएचपीसी ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित एनएचपीसी तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। एनएचपीसी ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। एनएचपीसी ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:05 हुए हैं, वक्त है कार्यक्रम विवरण का। तो आइए अब आपको हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 7:20 से कार्यक्रम खेती गृहस्थी सुनिएगा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 8:35 से। चित्रगीत 9:15 से सुने जा सकते हैं। 9:30 से उर्दू कार्यक्रम कहकशा हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे से श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन भावन प्रसारित किया जाएगा। रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा कृष्ण मोहन भट्ट के सितार पर बजाए राग हेमंत का। तो ये थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आइए अब आपको हमारे कल अर्थात बुधवार 22 जुलाई को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कल सुबह 6:05 से सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:35 से खेती की बातें में कृषि वानिकी का महत्व बताया जाएगा। श्री रामचरित मानस गान का पाठ होगा 6:40 से। 7:20 से कार्यक्रम आपका पत्र में श्रोताओं के पत्रों के उत्तर देंगे असीम कैथवास। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 8:30 से। 9:00 से लोक संगीत में लक्ष्मण गोपाल और मंडली के गाये लोकगीत होंगे। 9:15 से सुगम संगीत में लुत्फ लीजिएगा जगजीत सिंह की गायी गजलों का। 9:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा पंडित सतीश व्यास के संतूर पर बजाए राग वसंत मुखारी का। 10:05 से सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन में हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। हमारी कल दिन की सभा में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 11:00 से सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। 12:00 से फिल्म संगीत। 12:30 से संग्रहालय से। 1:00 से महिला कार्यक्रम। 1:30 से लोक संगीत। 1:45 से सुगम संगीत। 2:00 से फिल्म संगीत और 2:30 से चित्रपट संगीत। तो ये थे हमारी कल दिन की सभा के आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले होने वाले कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विवरण। हमारी कल की सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी रोज की तरह युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी के साथ संध्या 5:00 से। 5:45 से सुनिएगा फिल्म संगीत। 6:00 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग प्रसारित किया जाएगा। 6:30 से सुगम संगीत में आप सुन सकते हैं जगजीत सिंह की गायी गजलें। 6:45 से लोक संगीत में लक्ष्मण गोपाल और मंडली के गाये लोकगीत होंगे। 7:20 से कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी में टीकाकरण का महत्व बताएंगे रणजीत सिंह बोध। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं 8:35 से और 9:15 से चित्रगीत में। कार्यक्रम चर्चा का विषय है रात 9:30 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। 10:00 से सुनिएगा रूपक शीश कटे रुख बचे तो भी सस्ता जान। रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत में आनंद लीजिएगा पंडित सतीश व्यास के संतूर पर बजाए राग यमन का। तो ये थे हमारे कल अर्थात बुधवार 22 जुलाई को प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तरी मैसेडोनिया दौरे में व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। विधानसभा में भारी हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता बिल पास। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 7,765 करोड़ रूपये से अधिक का अनुपूरक

0: बजट पेश किया। कल होगी विस्तृत चर्चा और दो से तीन हफ्ते की सुस्ती के बाद प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, 30 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया के दौरे पर हैं। स्कोपजे में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित अपने संबंधों को और मजबूत किया है। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, आईटी, कृषि, फार्मास्यूटिकल, पर्यटन और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। इस मौके पर स्कोपजे संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का संयुक्त रूप से अनावरण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र खासतौर पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दे रहा है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान का एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज योजना सस्ती फाइनेंसिंग टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और मार्केट लिंकेज के जरिए छोटे उद्यमों को औपचारिक रूप दे रही है। मंत्री चिराग पासवान ने अपने लेख में बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से अधिक क्रेडिट मंजूर किए जा चुके हैं। विधानसभा में आज मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में भारी हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पास हो गया। विपक्ष के नेताओं ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने यह मांग खारिज कर दी। इसके बाद कांग्रेस विधायक सदन के बीच में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्ष के वॉकआउट के प्रयासों के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही जारी रखी और सरकार ने बहुमत के बल पर बिल पास करा लिया।
1: महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां 1 से ज्यादा विवाह करने में अपराध होगा। केवल विवाह नहीं, उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाह कर संबंध बनाने के लिए लिविंग इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा।
0: विधानसभा के मानसून सत्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 7,765 करोड़ रुपए से अधिक का यह बजट प्रस्तुत किया। इस पर कल सदन में विस्तृत चर्चा होगी। बजट में सबसे अधिक 3,000 करोड़ रुपए नर्मदा घाटी विकास विभाग को सिंचाई परियोजनाओं के लिए दिए गए हैं। वहीं सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग को 1,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। किसानों को राहत देने के लिए भावांतर योजना के लिए 313 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा, पर्यटन, पुलिस आधुनिकीकरण और परिवहन सेवाओं के लिए भी अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मंजुल शरद शाह से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान कंपनी ने प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना स्थापित करने के लिए 6,200 करोड़ रुपए के निवेश की मंशा व्यक्त की। इस परियोजना से प्रदेश में करीब 2,500 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इस भेंट के दौरान मध्य प्रदेश शासन और कंपनी के बीच निवेश संबंधी सहमति पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़वानी में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में किसानों को संबोधित किया। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इसी के तहत अलग अलग जिलों में कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। इस महोत्सव में किसानों को आधुनिक खेती, ड्रोन तकनीकी, जैविक खेती और स्मार्ट सिंचाई के बारे में जागरूक किया गया। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान जल संरक्षण का शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान बारिश के जल के संचयन को बढ़ावा देना है। इस अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों, कुओं और बावड़ियों के जीर्णोद्वार तथा रिचार्ज पिट और चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी विषय पर कल सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी के खास कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में सुनना न भूलें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं जल संरक्षणवादी उमाशंकर पांडे रहेंगे। भोपाल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला को प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम केवल राशन वितरण की योजना नहीं बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानपूर्वक जीवन देने का सामाजिक न्याय का माध्यम है। उन्होंने यह भी बताया कि आपका

राशन आपके द्वार योजना के तहत राशन की गाड़ी सीधे गांवों में जाकर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन ने प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में अपना नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को जबलपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। नटराजन आज जबलपुर पहुंची और निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा के भीतर चुनाव याचिका दाखिल की। उनका आरोप है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने बिना किसी ठोस कानूनी आधार के उनका नामांकन पत्र रद्द किया था। 9 जून को फॉर्म 26 में कथित जानकारी छिपाने का हवाला देकर उनका नामांकन रद्द किया गया था, जिसके बाद चुनाव निर्विरोध हो गया था। वहीं दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन 2026 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान कर्मियों, 283 माइक्रो ऑब्जर्वरों और महिला मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला गया और असामाजिक तत्वों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मतदान दिवस पर दतिया विधानसभा क्षेत्र और उससे लगे 3 किलोमीटर के दायरे में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। अनूपपुर जिले में कल से अमृत हरित महाअभियान और एक पेड़ माँ के नाम योजना के तहत बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान की शुरुआत होगी। जिले की 10 नगरीय निकायों में करीब 1,15,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसके अलावा वन विभाग की ओर से 3 लाख से अधिक पौधे अलग से रोपित किए जाएंगे। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने बताया कि 24 जुलाई तक चरणबद्ध तरीके से अमरकंटक, जैथरी, अनूपपुर, बिजुरी और कोटमा सहित सभी नगरीय निकायों में पौधरोपण किया जाएगा। इंदौर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत एक बड़ा आयोजन किया गया है। यहां पर 8,534 लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले इंदौर पुलिस के नाम ही 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड दर्ज था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने यह प्रमाण पत्र पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह को सौंपा। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने नशे से दूर रहने की शपथ भी ली। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में 2 से 3 हफ्ते की सुस्ती के बाद अब मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटों में भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर समेत प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 4.1 इंच बारिश राजगढ़ में हुई है, जबकि रायसेन में 2.5 इंच और उमरिया में 2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। उज्जैन में आज से 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। यह सम्मेलन सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में आईआईटी इंदौर के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जिसका विषय भविष्य की तकनीकी और उन्नत पदार्थ विज्ञान है, जिसमें देश विदेश के कई वैज्ञानिक और शिक्षाविद हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में नैनो टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल विज्ञान पर विशेषज्ञ व्याख्यान होंगे। प्रतिभागियों को आईआईटी इंदौर की प्रयोगशालाओं का भ्रमण भी कराया जाएगा। वहीं खेल के समाचार में चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणॉय का अभियान पहले ही दौर में समाप्त हो गया। चांगझोऊ में आज खेले गए मुकाबले में एचएस प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाओ ने 21-10, 21-14 से हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से अब लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी अपनी चुनौती पेश करेंगे। महिला सिंगल्स में भारत की खिलाड़ी पीवी सिंधु का मुकाबला कल पहले दौर में उन्नति हुड्डा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ग्राम झागर की गौशाला में अमरूद, जामुन और बेलपत्र जैसे पौधों का रोपण किया गया। गुना जिले के शासकीय आईटीआई राधोगढ़ में 22 जुलाई को जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस खरगोन में युवाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडला के शासकीय उत्कर्ष विद्यालय में बाघ और वन्यजीव संरक्षण के महत्व पर संवाद कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को वन्यजीव संरक्षण की जानकारी दी गई। खंडवा के नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में नए विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन सत्र का आयोजन किया गया। झाबुआ पुलिस के द्वारा जिले भर में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और धार जिले में दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत उपसंचालक डॉ राकेश सिंह सिसोदिया ने पशुपालकों से संवाद किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तरी मैसेडोनिया दौरे में व्यापार और निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति। विधानसभा में भारी हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच समान नागरिक संहिता का बिल पास। प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 7,765 करोड़ रूपये से अधिक का अनुपूरक बजट पेश किया और 2 से 3 हफ्ते की सुस्ती के बाद प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय, 30 से अधिक जिलों में अच्छी बारिश। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनवा वाला सगलाज किसान भाई बहनों के अनुराधा की राम राम। भाई बहनों देखो, अपना बच्चा उनकी चिंता अपने हमेशा लगी रहे, उनकी पढ़ाई लिखाई की, उनकी नौकरी चाकरी की, उनको खुद को कोई काम हो, कोई व्यवसाय शुरू करना के मन में है तो उनकी चिंता कि कहाँ से पैसों आएगा, कैसा करागा। बच्चा उन आगे बढ़ने का मन भी रखे पर पैसा उनके कारण कभी कभी ऐसा हो जाए कि भाई कहाँ सी व्यवस्था होगी। पर अब ऐसा है कि देखो, भारत सरकार, अपन केंद्र सरकार ने राज्य सरकार सभी मिली के ऐसी अलग अलग योजनाएं बनाए जेका में क्या है, अपना देश का जो युवा शक्ति है नी, उनकी चिंता कम हो जाए। एक वास्ते केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने अलग अलग तरह की योजनाएं बनाई है और एक ऐसी योजना है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। आज अपन की बात करा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जी है वे राज्य सरकार की योजना है। देखो, और राज्य सरकार को ये मानना है कि युवा होने के नाते उनके यदि अपनों खुद को स्वरोजगार शुरू करना है, कोई व्यवसाय शुरू करने के बच्चाओं के मन है तो उनके लिए ये बहुत अच्छी पहल है। और इन्हीं योजना में देखो, खुद को उद्योग स्थापित करना है या कोई सेवा व्यवसाय को भी बारह में बच्चा होना अपना सोच ही रहा है अपना युवा, तो उनके 10 लाख से लगई के 2 करोड़ रुपया तक को ऋण या वित्तीय सहायता में सब्सिडी का प्रावधान है इन योजना में। ब्याज अनुदान की बात करा तो अपना बेटा होन के 5% तक ने, बेटी होन का लिए 6% की दर से अधिकतम 7 साल का लिए ब्याज की छूट मिलेगी। और बैंक लोन का लिए युवा होन के कोई भी तीसरा पक्ष के गारंटी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो फिर गारंटी देगो कौन? 7 वर्ष तक की ऋण गारंटी या फीस गारंटी की बात जी है भी राज्य सरकार वहन करेगी। तो ऐसा में कही है कि अब हमारा जो युवा है, बेटा बेटी है, उनके आगे बढ़ने को मौको मिल रही है, अवसर है उनका लिए। पर उका में भी कई कई भाई जी भी योजना है उका में पात्रता तो रहे कि कौन व्यक्ति आवेदन करी सकेगा कौन नहीं करी सके। तो देखो, यदि अपन पात्रता की बात करें तो सबसे पहली पात्रता तो ये है कि भाई इनाज राज्य को होनो चाहिए। जो भी बच्चों है, बच्ची है, अपना योजना को यदि उनके फायदे चाहिए तो वो इना राज्य का रहने वाला हो और 18 से 40 वर्ष का बीच की उनकी उम्र होनी चाहिए और कम से कम 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण होए, क्योंकि उनको खुद को उद्योग शुरू होएगा, खुद को व्यवसाय शुरू होएगा, कोई सेवा की जी या योजना उनका मन में छे वो शुरू होगी। तो इका वास्ते उनके कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब कोई भी योजना में आप जब आवेदन हो तो उका में बहुत सारा दस्तावेज भी लगानू पड़े, आवश्यक दस्तावेज रहे। तो सबसे पहली जी आवश्यक दस्तावेज है वो है जो भी बच्चा हो अपना काम शुरू कर रहा है उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कभी कभी हमारा भाई बहनों उनके बच्चा उनके समझ में नहीं आया कि कई बनानू उका में, तो भाई बहुत आसान। देखो, ये समझने की बात है कि हमारा युवा बच्चा होने जो भी व्यवसाय शुरू करने का बारे में विचार करी हो उसके बारे में पूरा ब्योरो होना चाहिए। कहाँ शुरू करेगा, कितनी लागत लगेगी, कई मिलेगो, सब पूरी जानकारी इना प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आई जाएगी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनके जमा करनी पड़ेगी। इका साथ अपनों खुद को आधार कार्ड और समग्र आईडी। फिर भाई जिना भी प्रदेश में वो आवेदन कर रहा है तो उना प्रदेश को मूल निवासी प्रमाण पत्र, जैसे अपना मध्य प्रदेश में का है, वो मध्य प्रदेश का बच्चा हो ना यदि आवेदन कर रहा है तो उनके

0: निवासी प्रमाण पत्र की आवश्यकता रहेगी और जन्म तिथि प्रमाणित करना का वास्ते उनके 10वीं की अंक सूची भी इका साथ लगानू पड़ेगा और साथ में एक पासपोर्ट आकार को फोटो। अब ये तो है कि कई कई दस्तावेज है, किनके अप्लाई करनू है, किनके आवेदन करनू, ये सब जानकारी, पर आवेदन करनू कहाँ है, किना तरीका से करनू है। तो भाई आवेदन देखो अब बहुत आसान हो गया है, आवेदन की पूरी प्रक्रिया जी है वी ऑनलाइन है। तो हमारे बच्चा हो घर बैठे के भी आवेदन करी सके या उनके लगे कि थोड़ा सा कठिन पड़ रही है तो वे एमपी ऑनलाइन का माध्यम से भी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में अपनो आवेदन दे सके और इका माध्यम से अपनो खुद को व्यवसाय, अपनी खुद की सेवा प्रदाता समिति या कोई भी काम शुरू करी सके। तो बच्चा उनके आगे बढ़ने को अवसर है, उनको एक लाभ लेना चाहिए। और अपन देखो खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपन भी आगे बढ़ांगा, पर उनका पहला सुना ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: भाई बहनों इना संदेश का बाद अब अपन सुना एक वार्ता। सोयाबीन में खरपतवार और कीड़ा उनका नियंत्रण का लिए अनुशंसित रसायन का बारे में ये जानकारी है, जानकारी दे रहा है भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का डॉक्टर बी यू दुपारे।
3: नमस्कार साथियों, आज मैं एक अलग विषय लेकर आपके साथ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। खरपतवार लगते हैं या कीड़े लगते हैं उसके लिए भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान द्वारा अनुशंसित जो उपयुक्त रसायनों का प्रयोग करें। तो सोयाबीन की फसल के ऊपर कौन कौन से खरपतवार नाशक है जिनको कि भारत सरकार के सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा पंजीकृत किया गया है। तो जहां तक सोयाबीन फसल की बात है, आप सभी जानते हैं तीन प्रकार के खरपतवार नाशक सोयाबीन में अनुशंसित की गए। मोटे तौर पर इसके प्रकार है, पहला प्रकार ऐसे है कि सोयाबीन की बोनी के पहले उपयोग किए जाने वाले जो खरपतवार नाशक है। दूसरा प्रकार है बोनी के तुरंत बाद उपयोग किए जाने वाले खरपतवार नाशक है। और तीसरा जो प्रकार है खड़ी फसल में यानी सोयाबीन की बोनी के बाद में, जब हमारी फसल 10 दिन के आसपास हो जाए तो उसके बाद में कौन कौन से खरपतवार नाशक अनुशंसित किए गए। तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं सोयाबीन की फसल में प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन यानी सोयाबीन की बोनी से पहले ऐसे कौन से रसायन हैं जिनको कि अनुशंसा की गई है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन यानी बोनी के पूर्व उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, इसमें इस साल एक ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पेंटीमिथिलीन और इमेजिथाइपायर। ये प्री मिक्स फॉर्मुलेशन है, पूर्व मिश्रित फॉर्मुलेशन है पेंटीमिथिलीन प्लस इमेजिथाइपायर। आपको शायद मार्केट में ये वेलर या परसुट प्लस के नाम से मिलेगा और इसकी जो मात्रा होती है 2.5 से 3 लीटर प्रति हेक्टर। और ये आपको दोनों प्रकार के खरपतवार यानी कि चौड़ी पत्ते वाले या सक्रिय पत्ते वाले, इसके नियंत्रण के लिए काम में आ जाएगी। तो ये हो गया बोनी पूर्व उपयोगी खरपतवार नाशक पूर्व मिश्रित है। अब दूसरा प्रकार जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोनी के तुरंत बाद उपयोगी जो खरपतवार नाशक है, इसमें क्या है कि जितने भी मैं आपको नाम बताऊंगा वो सभी दोनों प्रकार के खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए काम में आते हैं, यानी कि चौड़ी पत्ती वाले या सक्रिय पत्ती वाले। और सबसे पहला इस सूची में नाम सेंट्रल इंसेक्टिसाइड की बोर्ड की जो लिस्ट में जो दिखाई देता है डाइक्लोसुलम 84WDG, ये बाजार में आपको मिलेगा स्ट्रॉन्ग आर्म के नाम से या दबोच के नाम से भी मिलता है और इसकी जो मात्रा लगती है 26 से 30 ग्राम प्रति हेक्टर। दूसरा जो यहाँ पे सूची में दिख रहा है आपको सल्फेंट्राजोन 39.6 SC अथॉरिटी के नाम से यह बाजार में मिलता है, मात्रा इसकी लगती है 0.75 लीटर मतलब 750 मिलीलीटर। तीसरा जो है क्लोमोजोन 50 CC कमांड के नाम से आपको बाजार में मिलेगा, 1.5 से 2 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा है। पेंटीमिथिलीन सबसे बहुत पॉपुलर ये यहाँ पे खरपतवार नाशक है जो कि बाजार में स्टाम्प के नाम से मिलता है, टाटा पनीरा, पेंडेमैक्स, ये कई नामों से कई कंपनियां अलग अलग इसमें बाजार में बना रही है। 2.5 से 3.25 लीटर इसकी मात्रा लगती है। पेंडीमिथिलिन के दो फार्मुलेशन है, दूसरा अन्य फार्मुलेशन है 38.7 CS, 1.5 से 2.25 लीटर प्रति किलोग्राम इसकी मात्रा है, ग्रैनुलर है ये। पेंडाकिल, पेंडीलाइन प्लस इस नाम से बाजार में मिलता है। अगला जो खरपतवार नाशक है फ्लूमी ऑक्साजिन 50 SC, बाजार में सुमीमैक्स के नाम से, फ्लूमेट सुलम के नाम से मिलता है। 0.25 लीटर इसकी मात्रा लगती है प्रति हेक्टर। अगला जो है मेट्रीबुजिन 70 WP, मेट्राजिन, तनोशी, टाटा मेट्री, वैरियर के नाम से ये मिलता है। ये 750 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम इसकी मात्रा लगती है प्रति हेक्टर। अगला जो है सल्फेंट्राजोन और क्लोमोजोन, ये दोनों का मिला जुला स्वरूप है, पूर्व मिश्रित ये खरपतवार नाशक है। बाजार में आप इसको मिलेगा अथॉरिटी NXT के नाम से, 0.25 लीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा लगती है। और इसमें पायरोक्सा सल्फोन 85 WG नाम का एक और खरपतवार नाशक है, ओकीरा या मोमोजी के नाम से मिलता है। 150 ग्राम प्रति हेक्टर इसकी मात्रा है। और अंतिम इसमें बोने के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशकों की सूची में आप देख रहे हैं मेटलाक्लोर एमिकस के नाम से बाजार में मिलता है।
0: भाई प्रणाम, अभी अपन सुनी रहा था ये वार्ता सोयाबीन में खरपतवार ने कीड़ा उनका नियंत्रण का वास्ते अनुशंसित रसायन का बारे में जानकारी दे रहा था भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान का डॉक्टर BU दुपारे। कार्यक्रम में एक लोगी सुनांगा, पर उनका पहला सुनांगा ये संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: मैं बहनों, अब कार्यक्रम में सुना एक लोकगीत संतोष अष्टाया को गाए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: भाई बहनों, इना संदेश का पहला अपन ने सुनियो थो लोकगीत संतोष अष्टाया को गायो। अब कार्यक्रम में सुना एक भेंट वार्ता। जलवायु परिवर्तन को कृषि पर कई प्रभाव पड़ी रियो है, उका बारा में जानकारी दे रिया है डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, जी की सेवानिवृत्त प्राध्यापक है कृषि महाविद्यालय इंदौर में, और उनका से बातचीत करी रही है सुनीता पंडित। तो भेंट वार्ता को विषय एक बार फिर से बताई दूँ, जलवायु परिवर्तन पे को कृषि पे प्रभाव।
3: किसान भाइयों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक कुमार शर्मा, और हम इनसे जानेंगे जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या प्रभाव है इस विषय पर। लेकिन सबसे पहले चौपाल पर करते हैं उनका स्वागत और कहते हैं राम राम।
4: राम राम किसान भाइयों, राम राम।
3: सर, जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो खेती है वो वर्षा आधारित है या कहें मौसम पर आधारित है, और अगर मौसम में थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो हमारी कृषि बहुत प्रभावित होती है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं, शुरुआत हम अपनी चर्चा की यहीं से करें कि मौसम एवं जलवायु का हमारी खेती के संदर्भ में बात करें तो क्या पारस्परिक संबंध है।
4: सुंदर जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत फायदे की बात रहेगी। मौसम एवं जलवायु के तत्वों के संबंध में ये बता देना आवश्यक है कि ये पारस्परिक रूप से संबंधित होते हैं। इन सभी तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आधारभूत तत्व वायु का तापमान होता है, क्योंकि इसमें होने वाले परिवर्तन अन्य तत्वों में तत्काल परिवर्तन ला देते हैं और इसी के फलस्वरूप मौसम की उत्पत्ति होती है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। कृषि की अगर हम बात करें, कृषि और जलवायु की अगर हम बात करें, तो अमूमन अगर हम बात करें तो ये होता है पानी अच्छा होता है तो कहते हैं फसल अच्छी होती है, या सीधा सीधा संबंध वर्षा से होता है, आर्द्रता से होता है। तो जलवायु का कृषि पर और किस तरह से संबंध होता है, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे।
4: किसान भाइयों, हम जानते हैं कि कृषि को प्रभावित करने वाले कारणों में जलवायु का विशेष महत्व है। प्राकृतिक वनस्पति की भांति फसलों के लिए भी तापमान, जल और प्रकाश की आवश्यकता होती है
3: जी।
4: उसके अंकुरण, विकास, फूल एवं फल के लिए होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों में फसलों के विभिन्न रूप प्राप्त होते हैं। फसलों के विकास एवं उनके प्रकार को निर्धारित

0: थोड़ी सी बदलती है या उसमें परिवर्तन होता है, तो वो क्यों होता है या किस तरीके से होता है, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं।
1: ये एक सुनीता जी आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मौसम एवं जलवायु के घटकों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब मौजूदा जलवायु से काफ़ी दीर्घकालीन विचलन होने लगता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं,
0: जी
1: है ना। जलवायु परिवर्तन के बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी की चक्रीय गति,
0: जी
1: सौर प्रणाली की भिन्नता, महाद्वीपों के क्षेत्रीय विस्तार, ये सब प्राकृतिक कारण होते हैं। अब मैं आपको मनुष्यकृत कारणों के संबंध में जानकारी देता हूँ।
0: जी
1: मनुष्य की औद्योगिक और प्रौद्योगिक गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का सांद्रण बढ़ता जा रहा है। साथ ही जंगलों, घास के मैदानों की आगजनी और पेट्रोल, डीजल आदि ईंधनों के जलने से भी वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 325 ppm हो गया है। एवं अगर ये गतिविधियां नहीं सुधारी गई तो इस सदी के अंत तक 700 ppm तक हो जाने की संभावना वैज्ञानिक मानते हैं।
0: और कार्बन डाइऑक्साइड हम जानते हैं कि अगर वातावरण में ज़्यादा हो जाएगी तो न सिर्फ हम फसलों की बात करें बल्कि मानव जाति के
1: जी
0: लिए भी ये खतरनाक
1: सही
0: होता
1: कह
0: है,
1: रहे
0: या
1: हैं,
0: कहें कि जीवन का हम सोच भी नहीं सकते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: सही कह रहे हैं
0: और हम देख भी रहे हैं इसके परिणाम।
1: आप।
0: तो हमें इसके बारे में सोचना तो ज़रूर चाहिए और कार्य भी करना चाहिए।
1: जी
0: एक बहुत ही शब्दावली जो सुनने में आती है वो थी ग्रीन हाउस प्रभाव। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है और ये हमारी खेती को किस तरीके से हानि पहुंचा रहा है, या ये कहें कि हमारे मानव जीवन को किस तरीके से
1: जी
0: ये हानि पहुंचा रहा है।
1: ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफोरोकार्बन, मीथेन आदि गैसों के बढ़ते स्तर से भूमंडल के गर्म होने के फलस्वरूप तापमान में वृद्धि होती जा रही है। लघु तरंग विकिरण
0: जी
1: वायुमंडल से आसानी से धरती पर आ जाता है, परंतु धरती से वायुमंडल में जाने वाली विकिरण बाधित हो जाती है
0: जी
1: और इसी के परिणाम स्वरूप इसकी ऊष्मा संरक्षित होने लगती है और इस प्रकार तापमान में वृद्धि होने लगती है। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल आदि जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग, वृक्षों की कटाई, अपघटित होने वाले वस्तुओं तथा प्लास्टिक आदि का अधिकतम प्रयोग, कृषि में उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग आदि बहुत सारे कारण हैं।
0: बिल्कुल सही बताया कि कहीं न कहीं हमारे ऐसे कृत्य हो रहे हैं,
1: जी
0: इन्हीं की वजह से हमको आज ये तकलीफ हो रही है। तो हम अपने सुनने वाले किसान भाइयों से जरूर कहेंगे कि वृक्षों की कटाई हरगिज न करें,
1: जी
0: बल्कि जितना हो सके
1: लगाने का
0: वो
1: कार्य
0: वृक्ष
1: करें।
0: लगाने का प्रयास करें। हम तो ये कहेंगे कि एक व्यक्ति एक वृक्ष जरूर से लगाएं, कोशिश करें और उसको बढ़ने दें। और इसके साथ में आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि प्लास्टिक का जो अधिकतम उपयोग हो रहा है,
1: वर्तमान में बढ़ता गया है।
0: बिल्कुल सही
1: जी
0: है, तो उसका भी हम कम से कम उपयोग करें, और जो पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली प्लास्टिक है उसका तो हम हरगिज उपयोग
1: उपयोग नहीं
0: न करें।
1: करना
0: आपने
1: चाहिए,
0: बहुत अच्छी
1: बिल्कुल
0: जानकारी दी हमें, हमारे श्रोताओं को।
1: जी
0: जलवायु परिवर्तन की अगर हम बात करें तो और ऐसे कौन से प्रभाव हो सकते हैं जो पड़ रहे हैं आज हमारी खेती पर और हम पर।
1: जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मानव पर ही नहीं बल्कि प्रगति प्रकृति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
0: जी
1: 19वीं सदी के बाद पृथ्वी की सतह के सकल तापमान में 0.3 से 0.6 सेल्सियस तक बढ़ोतरी आंकी गई है और इसके प्रभाव स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण में बढ़ोतरी और इसी के कारण धरती का तापमान में वृद्धि होती जा रही
0: जी
1: है ना। फसलों का उत्पादन मौसम में परिवर्तन पर काफी निर्भर होता है। जलवायु का कोई भी परिवर्तन फसल की उपज और उत्पादकता को दोनों को भारी रूप से प्रभावित करता है।
0: जी बिल्कुल
1: अन्य तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि पौधों की जैविक प्रक्रियाओं पर जैसे श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, फसल वृद्धि, प्रजनन, जल प्रयोग को प्रभावित करती है।
0: जी
1: धान की खेती के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी के कारण अधिक कल्ले निकलते हैं। डंठल दाने दोनों की उपज में वृद्धि देखी गई है, परंतु उष्ण उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होने से उपज में भारी कमी देखी जाती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव मौसम पर भी पड़ता है। गर्म मौसम वर्षा का चक्र भी प्रभावित होता है जिससे बाढ़ सूखा पड़ने की संभावना बलवती होती है। ध्रुवीय ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र के जल

0: स्तर में वृद्धि की संभावना होती है। अतः जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की समुचित जानकारी रखकर वैज्ञानिक किसानों को फसल प्रबंध का समुचित मार्गदर्शन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि फसलों का चयन कैसे किया जाए, बुआई कब की जाए, सिंचाई कब व कैसे करें, ताकि जोखिम और कम कर अधिक उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर हमें अधिक उत्पादन करना है तो जलवायु के परिवर्तन के जो प्रभाव है उसको ध्यान में रखकर ही हमारी जो कृषि कार्यमाला है उसको निर्धारित करनी पड़ेगी। कहा जाता है कि 1-2 महीने वर्षा का स्तर भी आगे बढ़ गया, जब पानी गिरना चाहिए अभी हमने महसूस किया तब उस समय में पानी नहीं गिर पाया था, तो हमारे बुवाई का क्रम करें या आगे हमारी जो भी कृषि कार्यमाला है उसको अगर हम उसी के अनुसार रखेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सके।
0: सही कह रहे हैं आप।
1: उसी के हिसाब से अगर हम फसलों का चयन भी करेंगे, उसी के अनुसार अगर हम अपनी पूरी जो कृषि को है उसको निर्धारित कर लेंगे तो हमें जो आर्थिक स्तर पर कृषि का नुकसान हो रहा है वो हमारे किसान भाई नहीं उठा पाएंगे, बल्कि हम अपने आप को मौसम पर आधारित कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, हम अधिक उत्पादन भी ले पाएंगे। डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, आप हमारे बीच आए और हमारे किसान भाइयों को जलवायु परिवर्तन का कृषि पर खासकर क्या प्रभाव है और उस अनुसार अपनी खेती को किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं, इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों अभी अपन सुनी रहा था ये भेंट वार्ता, जलवायु परिवर्तन को कृषि पर कई प्रभाव पड़ रहे हो उसके बारे में अभी अपन ने बहुत विस्तार से बताया डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा ने, जिनकी सेवानिवृत्त प्राध्यापक है कृषि महाविद्यालय इंदौर में। उनका से बातचीत कर रही थी अपनी बहन सुनीता पंडित। और अब देखो हमारा हाथ में जो है कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव आ गया है। मैं किसान भाई बहनों के पहले वो बताई दूं, आज सोयाबीन को भाव जो न्यूनतम शुरू हुए थो वो तो 4,300 रुपया प्रति क्विंटल को, और उसके बाद अधिकतम भाव 7,380 रुपया प्रति क्विंटल पे जाई के सोयाबीन बिकी। वहाँ जो मॉडल भाव थो 7,280 रुपया प्रति क्विंटल। गेहूँ की बात करें तो गेहूँ की शुरुआत आज हुई थी न्यूनतम भाव 2,430 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से, और अधिकतम भाव 3,061 रुपया पे जाई के प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकया। वहाँ जो मॉडल भाव थो 2,500 रुपया प्रति क्विंटल। चना देसी 4,220 रुपया न्यूनतम भाव का साथ प्रति क्विंटल का हिसाब से शुरू हुआ था बिकनू। वहाँ जो अधिकतम भाव थो 8,280 रुपया प्रति क्विंटल को, मॉडल भाव रहे 4,930 रुपया को। डॉलर चना की बात करा 5,700 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से न्यूनतम भाव से शुरुआत हुई थी और अधिकतम भाव 9,115 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकया। मंजे को मॉडल भाव थो 8,500 रुपया प्रति क्विंटल। मक्का 2,006 रुपया का हिसाब से शुरू हुई थी न्यूनतम भाव पर और अधिकतम भाव 2,100 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकी, और मॉडल भाव भी 2,006 रुपया प्रति क्विंटल। तो तुअर की बात करें तो तुअर 6,500 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से न्यूनतम भाव से शुरू हुई और 7,125 रुपया अधिकतम भाव का हिसाब से बिकी। वहाँ जी को मॉडल भाव रहे 6,500 रुपया प्रति क्विंटल को। मूँग की बात करा, मूँग 4,705 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से शुरू हुई थी सवेरा न्यूनतम भाव का साथ, अधिकतम भाव 6,995 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से बिकी। वहाँ जी को मॉडल भाव थो 5,505 रुपया प्रति क्विंटल को। सरसों की बात करा तो 6,240 रुपया प्रति क्विंटल को एक न्यूनतम भाव थो और अधिकतम भाव रियो 7,265 रुपया को, मॉडल भाव भी वो थो 4,240 रुपया प्रति क्विंटल को। मसूर आज एकज भाव बिकी 4,950 रुपया प्रति क्विंटल का हिसाब से। तो ये तो था कृषि उपज मंडी समिति इंदौर का आज का भाव। मैं बहनों आप रस्तों देख ही रहा हो सुंदरकांड को, मंगलवार को दिन हमारा भाई बहन सब सुनेगा, हम भी सुनांगा मुकेश ने उनका साथी को गायो सुंदरकांड।

भाई बहनों, अपन सुन ही रहा था सुंदरकांड, मुकेश और साथियों को गायल कार्यक्रम में। देखो घड़ी कह रही है कि कल का कार्यक्रम का बारे में बात कर ला। कल सवेरा खेती की बात होन कार्यक्रम में, कृषि वानिकों का महत्व जानागा। संजा का खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आज की बात सुकन्या समृद्धि योजना का बारे में होगी, और साथ में लोकगीत होएगा, और भेंट वार्ता है टीकाकरण नौ के महत्व का बारे में। डॉक्टर RS बाग से प्रियंका की बातचीत भी सुनागा। तो काल बैठांगा, बात करांगा खेती गृहस्थी कार्यक्रम में। आज अनुराधा के दो आज्ञा, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। संसद समीक्षा कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप मुनीश शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज किए जाने का मुद्दा छाया रहा और इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण उच्च सदन में आज शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने के बाद हंगामे के कारण इसे दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दोपहर 12 बजे बैठक फिर शुरू होने पर भी सदन में वही नजारा देखने को मिला और बैठक 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा थमा नहीं और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर कार्यवाही संचालित करने के लिए आसन पर आए उपसभापति हरिवंश ने सदन में एक विधेयक पेश करने को कहा। सदन की संशोधित कार्यसूची के अनुसार आज गृहमंत्री अमित शाह को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करना था। इस विधेयक में 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। इस बीच कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य

अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और शोरगुल करने लगे। विरोध कर रहे सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए हरिवंश ने कहा कि आप जानते हैं कि सदन में आज जो भी कामकाज सूचीबद्ध है उसी पर आप बात कर सकते हैं। उन्होंने सदस्यों से कहा कि वे यदि इसी प्रकार का व्यवहार करते रहे तो फिर सदन कैसे चलाया जा सकता है। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थानों पर बैठने और सदन में चर्चा शुरू करने की अपील की। श्री हरिवंश ने कहा कि सदन में चर्चा के लिए प्रक्रियाओं के नियम आपने ही बनाए हैं, उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने दीजिए। उन्होंने कहा कि सदस्य यदि किसी विषय पर चर्चा के लिए सभापति से अनुमति चाहते हैं तो इसके लिए भी नियमों में प्रावधान दिए गए हैं। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि वे सदन में निर्धारित कामकाज होने दें और सदन की मर्यादा का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि यदि आप इसी तरह से अपने स्थानों पर खड़े होकर शोरगुल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते नहीं कि सदन में कामकाज हो। हरिवंश जिस समय अपील कर रहे थे उस समय विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारेबाजी और हंगामा कर रहे थे। इस दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्यों को भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विपक्षी सदस्यों का विरोध करते देखा गया। सदन में हंगामा थमते न देख उपसभापति ने महज एक मिनट के भीतर ही बैठक को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सुबह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन की जानकारी देते हुए उन्हें पूरे सदन की ओर से शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घ स्वस्थ और खुशहाल जीवन की कामना की। श्री राधाकृष्णन ने कहा, मुझे विश्वास है कि उनका नेतृत्व युवाओं और नेताओं के लिए संविधान, लोकतंत्र और देश की अखंडता के प्रति भरोसा रखने के लिए प्रेरणास्पद मिसाल बनेगा। जिस समय सभापति उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे थे उसी समय श्री खड़गे अपने स्थान पर खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर सभी सदस्यों का अभिवादन किया और आभार व्यक्त किया। सदन के नेता जेपी नड्डा, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा अन्य नेताओं ने मेजें थपथपाकर श्री खड़गे को बधाई दी। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि संसद टीवी पर सदस्यों के जन्मदिन की जानकारी नियमित तौर पर दी जाती है। श्री राधाकृष्णन ने इसके बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक सदस्य को नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति दी। श्री नड्डा ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि एम्स अधिनियम के तहत सदन के किसी भी सदस्य को एम्स भुवनेश्वर में नियुक्त करने के बारे में सभापति को अधिकृत करने के लिए वो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता मोहंता के 2 अप्रैल 2026 को सेवानिवृत्त होने के बाद एम्स भुवनेश्वर में ये रिक्ति बनी हुई थी। सदन ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को भी ध्वनिमत से मंजूरी दी। इस प्रस्ताव में संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 संबंधी संयुक्त समिति में उच्च सदन की सदस्य सागरिका घोष और मनमोहन सामल को सदस्य बनाने का प्रावधान है। सभापति ने सदन को सूचित किया कि मनोनीत सदस्य पीटी उषा ने ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय दल का नेतृत्व करने के अपने दायित्व को पूरा करने के मकसद से इस सत्र में 20 जुलाई से 4 अगस्त तक अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है। सदन ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। बाद में श्री खड़गे ने कुछ कहना चाहा और सभापति ने उन्हें अपनी बात रखने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने कहा कि नीट पीपर लेक को लेकर कल राजधानी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जो उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। उनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने भी हंगामा शुरू कर दिया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और शून्यकाल नहीं हो पाया। 12 बजे बैठक शुरू होने पर शोरगुल के बीच ही राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने लोकसभा का एक संदेश सदन में पढ़कर सुनाया। उन्होंने सदन को बताया कि लोकसभा ने कल अपनी बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर राज्यसभा

0: लाभ के पद संबंधी संयुक्त समिति में दो सदस्यों के निर्वाचन की सिफारिश की है। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू हुआ था और नीट पेपर लीक सहित विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण कल भी सदन में कोई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज नहीं हो पाया था। लीजिए अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद और वाचिका हैं जया भारती।
1: नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा आज दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए नियम 377 के तहत सदस्यों से अपने विषय सदन के पटल पर रखने को कहा तो विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। श्री सैकिया ने हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि आप लगातार दूसरे दिन सदन के बीच आकर कार्यवाही बाधित कर रहे हैं, जिससे सदन का कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कई बार सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने की अपील की, लेकिन हंगामा थमने के बजाय और तेज हो गया, जिसके बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, एसपी तथा अन्य विपक्षी दलों ने सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। श्री बिरला ने प्रश्नकाल चलने देने में सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों के लिए सरकार से जवाब मांगने का महत्वपूर्ण अवसर होता है, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर से शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर सदन के बीचों बीच पहुंच गए और नारेबाजी जारी रखी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटकर शून्यकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शून्यकाल में सदस्यों को अपने क्षेत्रों की समस्याएं उठाने का अवसर मिलता है और पूरा देश सदन की कार्यवाही देख रहा है। इसके बावजूद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा जारी रखा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत स्थानीय सरकार होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाना चाहिए। संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्यों ने अपने अलग अलग पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका का आकलन करने के लिए मंत्रालय ने फरवरी 2025 में राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग 2024 नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करने और पंचायती राज संस्थाओं में अधिक स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की केंद्रीय प्रायोजित योजना को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू किया है। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं का समर्थन करना है, जिससे ग्राम पंचायतें सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में लोकसभा में कहा कि 10 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि विनिमय चालू कर दिया गया है। इसमें त्रिपुरा के अगरतला और श्रीमंतपुर, असम के दारंगा और सुतरकंडी, उत्तर प्रदेश के रुपईडीहा, बिहार के रक्सौल और जोगबनी, पश्चिम बंगाल के पेट्रोपोल, मेघालय के डाउकी और पंजाब के अटारी में आईसीपी शुरू किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूनिफाइड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और गुड्स एंड सर्विस सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत और भविष्य की सभी एकीकृत जांच चौकियों पर कार्यप्रणाली के प्रबंधन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं, बाजार की संभावनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अपनी विनिर्माण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा क्षमता संवर्धन करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कंपनी ने अपनी सुविधाओं के विस्तार, आधुनिकीकरण तथा क्षमता संवर्धन के लिए 671 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय किया है। उन्होंने बताया कि BHEL ने नाभिकीय ऊर्जा, रक्षा एवं एयरोस्पेस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी विविधीकरण किया है। BHEL द्वारा अब तक 5.4 गीगावाट क्षमता की नाभिकीय विद्युत इकाइयों के लिए उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है। BHEL भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण रक्षा तोपों का भी नियमित आपूर्ति करता है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी यूरोप के तीन देशों मोल्डोवा, नॉर्थ मैसेडोनिया और रोमानिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। कल मोल्डोवा की यात्रा के बाद आज श्रीमती मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया पहुंची। दोनों ही देशों में किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की ये अब तक की पहली आधिकारिक यात्रा है। इसके बाद वे रोमानिया जाएंगी, जो 30 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय राष्ट्रपति की यात्रा होगी। इन यूरोपीय देशों से हमारे द्विपक्षीय संबंधों और समूचे यूरोप के साथ हमारे संबंधों के लिए इस यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, पूरी आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: एम्बेसडर सज्जनहार, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने जो तीन राष्ट्रों की यात्रा है उसके दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया गईं और उन्होंने आज मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों ने प्रेस ब्रीफिंग भी एड्रेस की। वहां के जो पार्लियामेंट को एड्रेस किया द्रौपदी मुर्मू जी ने। सो आप हमें बताएं कि इस पूरी विजिट को आप कैसे देखते हैं और

0: वर्तमान परिदृश्य में इसका महत्व क्या है?
1: मोल्दोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया है, ये दोनों देश आजाद हुए थे जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद इनको स्वतंत्रता मिली और तब से भारत हमेशा इनके प्रगति के लिए, इनके विकास के लिए इनके साथ काम करता रहा है, परंतु कोई ऐसी उच्च स्तरीय यात्रा दोनों तरफ से कहीं नहीं हुई है। परंतु दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो रोमानिया तो यूरोपियन यूनियन का एक सदस्य है, 2007 से वो सदस्यता उसको मिली हुई है, और ये जो दोनों देश है, मोल्दोवा है और नॉर्थ मैसिडोनिया है, ये दोनों जिनको कहा जाता है कैंडिडेट कंट्री, मतलब ये यूरोपियन यूनियन का जो एक बड़ा गुट है उसमें 27 देश शामिल हैं और बहुत तरीके से ये साथ में मिलकर काम करते हैं, और उसमें कैंडिडेट कंट्रीज ये हैं मोल्दोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया, मतलब इनकी बातचीत शुरू हो गई है और ये कुछ सालों में ये सदस्यता भी उनको प्राप्त हो जाएगी। और ये सभी को ज्ञात है जो इस साल के शुरू में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार समझौता हुआ है, ट्रेड डील हुई है, जिसको जब वहां की यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट भारत में आई थी तो उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर देखा जाए यूरोपियन यूनियन की करीब 21-22 ट्रिलियन डॉलर की उसकी अर्थव्यवस्था है, भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर अर्थव्यवस्था है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोनों मोल्दोवा और नॉर्थ मैसिडोनिया और रोमानिया के लिए तो है ही, क्योंकि रोमानिया तो अब पहले ही ये इसका सदस्य हो चुका है। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है 2014 में, हमने एक जो इतना महत्व यूरोप को नहीं दिया जाता था पहले जितना कि दिया जाना चाहिए था, और अब हम देख रहे हैं जो उसको महत्व दिया जा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो या विकास का क्षेत्र हो या आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उनके साथ हम काम कर रहे हैं, और देश चाहे छोटा हो या बड़ा हो या इतना ज्यादा बड़ा नहीं हो, सभी के साथ हम अपने संबंधों को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं।
0: और वहाँ की जो प्रेसिडेंट है गॉर्डाना सिल्यानोस्का दावकोवा, उन्होंने अपना जो एड्रेस था, प्रेस ब्रीफिंग थी, उसमें उन्होंने कहा कि भारत हेरिटेज और एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर का बहुत ही अच्छा संगम है, और उन्होंने भारत को 21st सेंचुरी की सक्सेस स्टोरी बताया। ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है और कितना आपको स्कोप दिखाई देता है आपसी सहयोग का, जैसा आप कह रहे थे ट्रेड में या इन्वेस्टमेंट में, जो भी इकोनॉमिक का कोऑपरेशन है उसमें कितना आपको स्कोप दिखाई देता है?
1: जी, मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे आपने कहा नॉर्थ मैसिडोनिया की जो राष्ट्रपति जिन्होंने इसके बारे में कहा, तो हमारा तो अब पिछले 10-12 साल से हमारा जो फोकस रहा है सोनू जी, वो ये रहा है जो 3 T's जिसे कहा जाता है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म। टूरिज्म हो गया, मतलब उसमें पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी हो गए, लोग एक दूसरे के देश में जाएंगे, उनकी मुलाकात होगी, उनके संबंध और अच्छे होंगे, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी बनेगी, और इससे व्यापार को भी सहारा मिलेगा, व्यापार को भी नई ऊर्जा और नई शक्ति मिलेगी। भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है, पूरे विश्व में अगर हम देखें तो उसे कहा जाता है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और पिछले अगर 5-6 साल में देखा जाए सोनू जी, पूरे विश्व में बहुत आपदाएं आई हैं, बहुत विपदा आई है, अगर आप कोविड-19 पेंडेमिक से देखें तो पूरे विश्व में बहुत त्राही त्राही मच गई थी, बहुत असंतुलन हो गया था, असमानता आ गई थी, बहुत आर्थिक तरीके से बहुत देशों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था, परंतु फिर भी भारत ने, चाहे वो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हो, चाहे वेपनाइजेशन सप्लाई चेन कर रहा हो, सबके साथ जूझते हुए भारत की अर्थव्यवस्था आगे अच्छी तरीके से बढ़ती रही। उसके बाद हमने देखा है रूस यूक्रेन का युद्ध आया, हम एनर्जी पर कितना बाहर से ऊर्जा लाने में, तेल गैस लाने में हम कितना डिपेंडेंट हैं, क्योंकि 85-90% तेल हमारा बाहर से आता है, फिर भी हमने अपनी सारी जो हमारी जरूरतें थी उसे पूरा किया और अपनी आर्थिक व्यवस्था को कहीं चरमराने नहीं दिया। और यह बात अभी भी हुई जब ईरान और अमेरिका और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो इसमें अगर देखा जाए चाहे कितना उथल पुथल रहा हो पूरे विश्व में, और भारत के लिए भी ये जो हालात थे वो इतने सामान्य, कुछ इतने अच्छे नहीं थे, परंतु फिर भी भारत बहुत ही तेजी से आगे अग्रसर करता रहा, और भारत ने ये कहा है जो जब हमारा विकास होगा तो हम सभी विकासशील देशों को अपने साथ लेकर चलेंगे
0: जी।
1: तो इसीलिए उनको ये एक बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, जो भारत के साथ अगर वो काम करेंगे, भारत के साथ अगर अपने

0: संबंधों को आगे ले जाएंगे तो ये बिल्कुल ही विन विन सोल्यूशन होगा जिसमें उन देशों का फायदा बहुत ही अच्छी तरीके से होने वाला है।
1: इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अभी बायलैटरल ट्रेड 133 मिलियन डॉलर्स है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी अपने संबोधन में कहा, और इसको दोगुना करना है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। बहुत सारे जो फोकस एरियाज जो डिस्कस हुए, क्या लगता है आपको कौन से सबसे ज्यादा प्रमुख ऐसे सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के जहां पर आपको लगता है कि आपसी जो कोऑपरेशन है और ट्रेड है वो बढ़ सकता है?
0: देखिए, दो तीन चीजें मैं इसमें आइडेंटिफाई करना चाहूंगा। एक तो मैं समझता हूँ जो फार्मास्यूटिकल्स का एक एरिया है, क्योंकि हर देश को दवाइयां चाहिए। भारत चाहे, मैंने कोविड-19 का जिक्र किया तो उसमें हम पूरे विश्व की फार्मेसी तो बने हुए थे, पूरे विश्व की हम वैक्सीन कैपिटल भी बनकर उभरे उस समय। तो इसीलिए अब हमारे यहाँ से चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो या कोई भी देश हो, हमारे दवाइयां बहुत मात्रा में जाती हैं, जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना ब्रांड वैल्यू लेकर इन दवाइयों के दाम बढ़ा देते हैं, जिससे कि दवाइयां वो जो आम मर्रा के जो लोग होते हैं उनके पहुंच से वो बाहर हो जाती हैं। तो भारत ने बहुत ही हाई क्वालिटी रीजनेबली प्राइज्ड जेनेरिक मेडिसिन प्रोड्यूस करने शुरू किए हैं और बहुत ही मात्रा में हम बहुत देशों में इसका निर्यात कर रहे हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स तो मैं एक समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा। दूसरा एग्रीकल्चर। हालांकि देखिए, नॉर्थ मैसिडोनिया एक पहाड़ी देश है, ज्यादा वहां पर जिसे कहा जाए एरेबल या कल्टिवेटेबल लैंड नहीं है, परंतु फिर भी वहां पर एक जो एग्रीकल्चर है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हम दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं
1: जी।
0: और तीसरा मैं समझता हूँ हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज का जो हुआ, आजकल जो चल रहा है क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रोबोटिक्स का, इसमें भारत नए कदम उठा रहा है, नई ऊंचाइयां पा रहा है। और जो ये देश है जहां पर कि ज्यादा एग्रीकल्चर को नहीं किया जा सकता और टेक्नोलॉजी में ये देश आना चाहते हैं, तो मेरे विचार से उस क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भारत योगदान कर पाएगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा था टूरिज्म का, क्योंकि टूरिज्म एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंटरप्राइज है, इंडस्ट्री है, क्योंकि वहां और यहाँ पर मैं इसके आसपास के देशों में सोनू जी गया हूँ, मैं मॉन्टेनेग्रो में गया हूँ, क्रोएशिया में गया हूँ, और वहां का जो टूरिज्म है बहुत ही अच्छा उन्होंने डेवलप किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से भारत के जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न देशों में जाते हैं टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, तो यहाँ भी बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है।
1: एक सस्टेनेबिलिटी पर भी काफी बल दिया गया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो भारत का है या हमारा जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, डिजास्टर रेजिस्टेंट क्लाइमेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको ज्वाइन करने की बात हमारी राष्ट्रपति ने कही और उन्होंने कहा कि हम ज्वाइन करेंगे, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है? आपको लगता है कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में भी एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल अपनाता नजर आ रहा है?
0: जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, दो चीजें मैं इसमें कहूंगा, एक तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और पूरे पर्यावरण की संरक्षण करना, ये तो एक पूरे विश्व के लिए जिसे कहा जाए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर उभरा है
1: जी, जी।
0: जो सभी देशों को ये करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमको ये पूरा विश्व रोहर में मिला है
1: जी।
0: ये फिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ठीक नहीं छोड़ पाएंगे, तो इसीलिए इसके बारे में तो मिलकर बात करना, सहयोग करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है
1: जी।
0: दूसरा है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो भारत एक लीडर के रूप में, नेता के रूप में उभरा है, क्योंकि अगर आप देखते हैं जो COP21 जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था 2015 में, जब भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस लॉन्च किया था, और अब उसमें करीब 100 से ज्यादा देश जुड़ गए हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा जो नॉर्थ मैसेडोनिया या मोल्डोवा या रोमानिया, इसी प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील देश हैं, जैसे कि देश आप अफ्रीका में या एशिया में मिलते हैं, परंतु फिर भी ये वाली जो तकनीक है, ये वाली बहुत नई नई तकनीकें बनकर उभर रही हैं, और इसमें भारत ने अपने जो कमिटमेंट्स हैं पेरिस अकॉर्ड में, 2015 के पेरिस अकॉर्ड में, हमने अपने समय आने से पहले ही हमने उनको पूरा कर लिया। हमारे जो सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स थे जो हमें 2030 तक प्राप्त करने थे, उसको हमने पहले ही प्राप्त कर लिया है। और ये ISA हुआ या फिर CDRI, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये करने में दोनों देशों का बहुत फायदा होगा। और अगर नॉर्थ मैसेडोनिया मल्डोवा इसमें ज्वाइन करते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा।
1: जो उन्होंने पीस की बात करी, मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा देने की बात करी और यूनाइटेड नेशंस की जो बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उनने रिफॉर्म्स की बात की, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट पहलू लगता है?
0: जी सोनू जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्योंकि हमने देखा है एक तो यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पूरे विश्व में योगदान है वो एकदम बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि कोई संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं सुनता है, क्योंकि देशों के पास वीटो पावर है। वहां पर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है तो रूस के पास वीटो पावर है, यहाँ पर अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है तो अमेरिका के पास वीटो पावर है, तो कोई भी नहीं सुनता है। और आजकल हम देख रहे हैं यूनिलैटरलिज्म का जमाना आ गया है, माइट इज राइट का जमाना आ गया है, और मल्टीलैटरलिज्म के बारे में कोई ध्यान नहीं करता है। तो उसके बारे में बातचीत करना, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इससे जैसे भारत ने हमेशा कहा है, जब तक मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पर्टिकुलरली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिक्योरिटी काउंसिल में जब तक उसका सुधार नहीं होता, उसको आज की रियलिटी में नहीं लाती, क्योंकि वो 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था, संयुक्त राष्ट्र संघ बना था, तो तभी के जो हालात थे उसी के ऊपर वो निर्धारित है, परंतु आज के हालात बहुत बदल चुके हैं। तो उसको जिसे कहते हैं मूविंग द टाइम्स, उसे करना चाहिए, वो अभी उसने नहीं किया है। और इसी के लिए अगर ये दोनों देश और उसके साथ साथ और भी देश साथ मिलकर आते हैं तो उससे पूरे दुनिया का इसमें कल्याण होने वाला है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सज्जन हार, आप हमारे साथ जुड़े और पूर्वी यूरोपीय यात्रा जो हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही हैं उसके अहम पहलुओं पर हमें जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया यात्रा और द्विपक्षीय संबंधों के नए अध्याय पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विधानसभा समीक्षा। विषय है आलेख रवि अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।
1: प्रस्तुत है विधानसभा समीक्षा, आलेख रवि अवस्थी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन राजनीतिक टकराव, जनहित के मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब और समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पर ऐतिहासिक फैसले के कारण पूरे दिन चर्चा में रहा। सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई, जहां कई मामलों में सरकार को जवाब देना पड़ा। इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं में किसानों के भुगतान और औद्योगिक दुर्घटना जैसे मुद्दे उठे। हालांकि दिन चढ़ने के साथ पूरा सदन यूसीसी विधेयक पर केंद्रित हो गया। सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप, नारेबाजी और बार बार स्थगन के बीच आखिरकार सरकार ने बहुमत के आधार पर यूसीसी विधेयक पारित करा लिया। इस तरह विधानसभा का दूसरा दिन राजनीतिक और विधायी दोनों दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। सबसे पहले धार जिले की बदनावर उद्वहन सिंचाई परियोजना में हो रही देरी का मामला उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि तय समय सीमा के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि कोरोना महामारी सहित कई तकनीक कारणों से परियोजना प्रभावित हुई, लेकिन अब कार्य में तेजी लाई गई है। सरकार ने 2027 तक परियोजना पूरी करने और वर्ष 2028 से किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने नर्मदा आधारित परियोजनाओं की भौगोलिक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए पार्वती काली सिंध नदी जोड़ो परियोजना को भविष्य का समाधान बताया। इसके बाद संविदा कर्मियों और चाइल्ड केयर लीव का मुद्दा उठा। सरकार ने कहा कि संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए नीति लागू है, लेकिन चाइल्ड केयर लीव केवल नियमित कर्मचारियों के लिए है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद ध्यानाकर्षण सूचनाओं पर चर्चा हुई। अनुपूरक बजट पेश होने के बाद सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा। इस विधेयक के आते ही विपक्ष ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग रखी, जबकि सरकार का पक्ष था कि ये जनता से मिले व्यापक सुझावों पर आधारित विधेयक है। यूसीसी पर चर्चा शुरू होते ही सदन का वातावरण गर्म हो गया। कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष विधेयक पर चर्चा करने की अपनी मांग करता रहा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष से कई बार अपनी सीटों पर लौटकर चर्चा में भाग लेने की अपील की, लेकिन गतिरोध नहीं टूटा। बढ़ते हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 10 मिनट और उसके बाद दो बार 15-15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक पूरे दिन जारी रही। यूसीसी पर चर्चा के दौरान भाजपा नेताओं ने इसे महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता और समान नागरिक अधिकारों की दिशा में बड़ा कदम बताया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह सरकार का नहीं बल्कि जनता के सुझावों का विधेयक है और करीब 10 लाख लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबरानी, संजय पाठक और अन्य सदस्यों ने भी कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 29 का हवाला देते हुए अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का मुद्दा उठाया। बहस के दौरान मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सरकार का पक्ष विस्तार से रखा। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता और समान नागरिक अधिकारों को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में सभी विवाहों का पंजीयन अनिवार्य होगा और एक पति या पत्नी के रहते दूसरा विवाह मान्य नहीं होगा। उन्होंने दावा किया कि यूसीसी पर प्रदेश के 93% लोगों ने समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान भी विपक्ष की नारेबाजी लगातार जारी रही, लेकिन उन्होंने अपना संबोधन पूरा किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद संशोधन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। विपक्ष लगातार विरोध करता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर विधेयक पारित करा लिया। अध्यक्ष ने यूसीसी विधेयक को पारित घोषित किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाले राज्यों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाने वाला राज्य बन गया। यूसीसी पर निर्णय के बाद सदन में मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक सहित अन्य विधेयकों पर चर्चा आगे बढ़ाई गई। कार्यसूची में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उपकर संशोधन, श्रम शक्ति संहिता, धन्वंतरी स्वास्थ्य विश्वविद्यालय और अन्य संशोधन विधेयक शामिल रहे। विधानसभा की विभिन्न समितियों की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई। इस तरह लगातार हंगामे, नारेबाजी और स्थगन के बावजूद सदन ने अंततः अपना विधायी कार्य पूरा किया। वहीं यूसीसी विधेयक पारित होने के साथ विधानसभा के दूसरे दिन की कार्यवाही ऐतिहासिक बन गई। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।
0: आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा, आलेख रवि अवस्थी का था और वाचन स्वर अभिषेक कटियार का।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर को सुनिए फिल्म गाइड में। बोल शैलेंद्र के हैं, धुन बनाई है SD बर्मन ने।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: ममता फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन बनाई है रोशन ने।

0: परेशानियों से।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। समाचार कुछ ही पलों में होंगे।
0: जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमरीका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।

0: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
1: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म्स। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
1: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रूपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
5: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार

0: का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटनास्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ओले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच NDRF की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉ विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रूपये की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
1: पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने हॉर्मूज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमरीका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के खोरमोज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है।

आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है चित्रगीत, रोटी कपड़ा और मकान। इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाज में। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: हरियाली और रास्ता, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

अभी आप सुन रहे थे चित्रगीत, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। उर्दू कार्यक्रम कहकशां कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आदाब दोस्तों, उर्दू प्रोग्राम कहकशां को लेकर हाजिर हूं मैं आपका दोस्त वाजिद खान। इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम कहकशां में महफिले समा के तहत हम आपकी खिदमत में कव्वालियों का नजराना पेश करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे अल्लाह की याद और सुकून कल्ब मौजू पर। सामईन, असर हाजिर को तहकीक व तरक्की और तहजीब व तमद्दुन का दौर कहा जाता है। साइंसी इजादात और इंकिशाफात ने आज के इंसान के हौसले बहुत बुलंद कर दिए हैं। समुन्दर की गहराई से लेकर आसमान की बुलंदियों तक इंसान का सफर अब धीरे धीरे आसान हो गया है, लेकिन इतनी तरक्की करने के बाद भी इंसान के कल्ब को सुकून मयसर नहीं होता। इंसान हर वक्त हर समत सुकून तलाश करता रहता है, लेकिन दुनिया और उसकी तमाम आराइशों में उसे वो मयसर नहीं होता। फिर इंसान दिली सुकून को हासिल करने के लिए जिक्र इलाही का सहारा लेता है, क्योंकि अल्लाह की याद और सुकून कल्ब का आपस में वही रिश्ता है जो रूह का जिस्म से या प्यासे का पानी से होता है। क्योंकि दौरे हाजिर में इंसान किसी न किसी उलझन, जहनी तनाव और बेचैनी का शिकार है।

और बिलाशुबा ये तमाम उलझने और परेशानियां सिर्फ और सिर्फ जिक्र इलाही से ही दूर की जा सकती हैं। कुरान पाक की सूरह राद में अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जिसका मफहूम है, सुनो, अल्लाह की याद ही से दिल चैन पाते हैं। इंसान का जिस्म मिट्टी से बना है, इसलिए उसकी मादी जरूरतें पानी और गजा जमीन से ही पूरी होती हैं। लेकिन हमारी रूह हमारे रब्बी है, यानी अल्लाह के हुक्म से है, इसलिए रूह को सुकून तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो अपने खालिक से न जुड़े। जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो दरअसल हम अपनी रूह को उसकी असल गजा दे रहे होते हैं।

सामीन, अभी आप कव्वाल असलम साबरी की आवाज में कव्वाली समात फरमा रहे थे और कलाम था जहीर आलम का। सामीन, किसी भी इंसान का सुकून कल्ब उस वक्त छिनता है जब इंसान को माजी का पछतावा हो या मुस्तकबिल का खौफ। जब इंसान अल्लाह की याद में गुम होता है तो उसके अंदर तवक्कुल यानी भरोसा पैदा होता है। उसे यकीन हो जाता है कि जो हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी और जो होगा वो मेरा रब बेहतर करेगा। ये यकीन दिल से सारे खौफ निकाल देता है और इसी का नाम सुकून कल्ब है। अल्लाह को याद करने का मतलब सिर्फ तस्बीह हाथ में लेना नहीं बल्कि हर नेमत पर अल्लाह का दिल से शुक्र अदा करना है। मुश्किल वक्त में अल्लाह से दुआ मांगना और तौबा करना, ये अमल भी अल्लाह को बेहद पसंद है। इस दुनिया के खालिक व मालिक ने इस दुनिया की तख्लीक कैसे की? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों के साथ कितनी रहम दिली का सलूक करता है? और जब बंदा इस बात की फिक्र करता है कि मेरा रब मुझसे कैसे राजी होगा, उस वक्त इंसान का उठना, बैठना और सोचना अल्लाह की याद से जुड़ जाता है। तो दुनिया के बड़े बड़े तूफान भी उसके दिल का सुकून नहीं छीन सकते। जब इंसान ये जान लेता है कि नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, तो हर हाल में इंसान अल्लाह पर तवक्कुल रखता है, क्योंकि हकीकी और दायमी सुकून ना तो दौलत में है और ना ही मनसब में, बल्कि खालिक कायनात के साथ ताल्लुक जोड़ने और उसके जिक्र में है। दिलों की खेती को सिर्फ और सिर्फ याद इलाही के पानी से ही सरसब्ज और मुतमईन किया जा सकता है।

दोस्तों, अभी आप कव्वाल जानी बाबू से कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था फरीद टोंकी का। सामीन, एक जगह इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत उस्मान मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह से उनके एक मुरीद ने अर्ज किया, कभी कभी ऐसा होता है कि दिल की रगबत के बगैर भी मेरी जबान से अल्लाह ताला का जिक्र जारी रहता है। उन्होंने फरमाया, ये भी तो शुक्र का मकाम है कि तुम्हारे एक उज्व यानी जबान को अल्लाह ताला ने जिक्र की तौफीक बख्शी है, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह ताला के जिक्र में नहीं लगता उसे बाज औकात शैतान वसवसा डालता है कि जब तेरा दिल अल्लाह ताला के जिक्र में नहीं लगता तो खामोश हो जा कि ऐसा जिक्र करना बेअदबी है। इस शैतानी वसवसे से बचना चाहिए। अल्लाह के नाम का विर्द और उसकी नेमतों का ध्यान इंसान के दिल से मायूसी और खौफ को मिटाता है। इंसान के दिल में ये यकीन पैदा होता है कि कायनात का हर जर्रा अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, जिससे नाउम्मीदी खत्म होती है, क्योंकि खुद अल्लाह के रसूल का ये मामूल था कि मुश्किलात और परेशानियों के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर नमाज और जिक्र इलाही की तरफ मुतवज्जा हो जाते थे। दोस्तों, कसरत से इस्तग़फार करने से रिस्क की तंगी दूर होती है, मुसीबतें टलती हैं और वहाँ से मदद आती है जहाँ से इंसान का गुमान भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। जब बंदा मुसीबत में अपने रब को पुकारता है तो अल्लाह उसके लिए आसानियां पैदा

बाप के मरने से दुश्मन की जो है बत छाई, डर के झाड़ी में छुपे जाके वो दोनों भाई। हाय इस

दोस्तों, अभी आप कव्वाल मोहम्मद रफी से उनकी कव्वाली समाअत फरमा रहे थे और कलाम था शबाब मीनाई का। सामीन, हासिल कलाम यह है कि दिल एक मुसाफिर की तरह है और उसकी मंजिल मकसूद अपने खालिक की याद है। जब तक ये दिल अल्लाह ताला की याद से जुड़ा रहता है, ये पुरसकून रहता है, और जब गफलत में पड़ता है तो घुटन और बेचैनी का शिकार हो जाता है। लिहाजा हकीकी और दायमी सुकून के लिए हमें अपनी जिंदगियों को जिक्र इलाही से मुनव्वर करना चाहिए, तभी हमारे कल्ब को सुकून मयसर होगा। सामीन, इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम कहकशां यही खत्म होता है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपने खतूत के जरिए हमें जरूर मुत्तला करें। हमारा पता नोट कीजिए, उर्दू प्रोग्राम कहकशां मार्फत स्टेशन डायरेक्टर आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, पिन 462002। अब आपके दोस्त वाजिद खान को दीजिए इजाजत। आदाब।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुरु फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और उदय।
1: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भावन सुनने वालों को आसिफ अली का नमस्कार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति है फिल्म पत्थर के सनम से। आवाज है मुकेश की, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं कंवर कॉलोनी पढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति और मीनूराज श्रीमाली। सोमानी नगर इंदौर से बीआर नामदेव, राजश्री, रौनक, दिव्यांशी, रोशनी, धीरज और उनके परिवार के सदस्य। पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश साजवानी, हनी, दियाना, जिमी, अमिता और जियांश मटाई। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। गुमास्ता नगर स्कीम नंबर 71 इंदौर से अनिल कौचाले, नेहा फणसे, सीमा, सबिया फजल, पूजा नेनावा, सुषमा और स्मिता। ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल, शीला और गायत्री धनजे। मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा, नीतू वेद। संस्कृति नगर इंदौर से

बबलू केशरी, छाया, हर्ष, मितांशी, सोमवती बाई और उनके परिवार के सदस्य। आइए इन सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म पत्थर के सनम का गीत मुकेश की आवाज़ में।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिर कब मिलोगी, इस फिल्म का गीत सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन बनाई है राहुल देव परमन ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद, मोहम्मद तस्लीम शेख, मुजफ्फर अयान, फैजान, सुमेरा, कशिश, सायमा, हसनैन और खुशी। प्रमीलागंज आलोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। ग्राम मोहत से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी, रोजुबाई, परु, मुबारक, विलास, मनोहर ठाकुर और तैमूर पारे। रावेर से अरशद तड़वी, आरिश अरसलान और यूनुस तड़वी। मोहत से ही मुशर्रफ खान तड़वी, जरीना, मुबारक, परवेज, रोजमीन और तैमूर तड़वी। जरूड़ वरूड़ से बाबा साहब वड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी कानीरे, कार्तिक और युवराज। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित और हैप्पी राय, प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय, अवधेश, प्रीति और नवनीत राय। सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। गांधी चौक रोपड़ से हरदेव मीका, बलविंदर विरक, चेतक और मीका विरक। मोरीगेट से कन्हैया

लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। हिंगोली से रामचंद, धोड़ीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू, रामाबाई, सुरेंद्र, मयूरी, सुरभि, मंजूषा, गौतम इंगोले, नामदेवराव शिंदे पाटिल, विलास शिंदे पाटिल, सुनील जबड़े, दीपाली, राजू ठोके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित, सोनू, मोनू ठोके, छकुली इंगोले, देव इंगोले, छोटू दादा और महेंद्र चौरसिया। इन सब की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म फिर कब मिलोगी का गीत, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

मेला फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत की फरमाइश भेजी है लाबरिया भैरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम, सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और समस्त बामनिया परिवार ने। वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। सुदामा नगर इंदौर से अनिल भंडारे, ऊषा भंडारे, समता, चित्रा और निशा। भाटापारा दतरंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार और छावेंद्र कुमार वर्मा। रणथंभौर से मोहम्मद यूनुस, रूबीना, मुकेश नारोलिया, मान्यता, हसन भाई, अकबर, मॉरिस, जानकीलाल वर्मा, न्याजू भाटिया, आवेश और उनके साथियों ने। लक्सर से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। ब्रह्मपुरी कॉलोनी इंदौर से दिनेश आडिया, ज्योति राहुल, सिपिका, अंजू, वर्षा रानी, अवधि, दिव्यराज और हेमंत आडिया। बेमेतारा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र व्रजकांत सारथी, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा। नानखेड़ वाशिम से अशोक चुमले, दिनेश, रूपेश, लीलाबाई चेताली और प्रीति चांदने। इन सब की पसंद पर सुनिए मेला फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कुमार की आवाज में। बोल साहिर लुधियानवी के हैं, संगीत है रवि का। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शास्त्री नगर खंडवा से रमेश पंचोली, बीनू देवी, प्रकाश, उर्मिला, दीपक, दीपिका, नंदिनी, निखिल, गौरांश, नीलकंठ, मीरा देवी, शिवानी, पिंकी और राधा। कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, संत ताजबानो, उबैद, रजिया, जुनेद, अलीना, मुआज और आयत मंसूरी। उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, राही, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, सिद्धांत, प्रणीता, वैशाली, श्वेता, ध्वनि गवाणकर। वंदना नगर इंदौर से पूजा, बबीता, शोभा, रेखा, स्वाति, प्रयाग चौधरी, परी, ललिता, गणेश, कार्तिक, नारायण खर्चे। सरोच्चो कमरावती से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा, हदिया, असमा, शोएब, मुस्तवा, सादिक और शाहिद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भवन, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत में प्रस्तुत है कृष्ण मोहन भट्ट का सितार पर बजाया राग हेमंत।

0: शास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे कृष्ण मोहन भट्ट का सितार पर बजाया राग हेमंत। तबले पर संगत कर रहे थे भरत तिवारी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉ जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की। प्रवर्तन कार्यबल की बैठक के दौरान आयोग ने बताया कि उसने उड़न दस्तों ने पहली से 13 जुलाई के बीच 175 निरीक्षण किए। इनमें निर्माण और विध्वंस स्थलों, औद्योगिक इकाइयों तथा डीजल जनरेटर सेट से संबंधित गतिविधियों का निरीक्षण शामिल है। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देशभर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं में भारत के राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास, विकास, महत्व और गरिमा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि